0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आपने डॉक्टर मुज्तबा हुसैन का राग नट भैरव में बांसुरी वादन सुना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:59 हुए हैं। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की DNA प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर DNA प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। DNA प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त DNA प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा।

0: इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Indian Space Research Organisation ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahtab, Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th August gave nod for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has sent two more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation Mahabir Pun.

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी इसी दिव्य उद्देश्य से हुआ। मथुरा की कारागार में जन्मे कान्हा यशोदा मैया की गोद में पले और पूरे गोकुल के दुलारे बन गए।

जी हाँ दोस्तों, यशोदा मैया की गोद में पले, उनके दुलार में पले कान्हा का बचपन ही अपने आप में एक उत्सव था। कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को सताना, तो कभी अपनी मधुर बांसुरी से सबका मन मोह लेना। कृष्ण की हर लीला में प्रेम और आनंद छिपा है, और शायद यही वजह है कि आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो चेहरे पर मुस्कान और मन में भक्ति अपने आप उतर आती है।

जी हाँ दोस्तों, कान्हा का नाम लेते ही राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। राधा हो मीरा हो, राधा कृष्ण का प्रेम केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। और भाई इस जन्माष्टमी पर हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने और प्रेम सत्य करुणा और सद्भाव के प्रकाश को जगाएं।

0: भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, परिवार में प्रेम हो और हर कदम पर कान्हा का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज की चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता। विषय है गीता में योग का बहुआयामी अर्थ। वार्ताकार हैं श्याम शंकर शुक्ल।
2: गीता का योग आसनों की कोई सूची नहीं है, यह कोई ध्यान साधना की तकनीक नहीं है, यह है जीवन को जोड़ने की एक अद्भुत दिव्य कला। योग का अर्थ केवल ध्यान में बैठ जाना नहीं, अपितु आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कर्म को समर्पण से जोड़ना, ज्ञान को विवेक से जोड़ना और भक्ति को निर्लेप प्रेम से जोड़ देना। यह जोड़ केवल शरीर और मन का नहीं, यह है अपने भीतर बैठे मैं को गलाकर किसी बड़े सत्य से जोड़ देना। पहले 6 अध्याय गीता के कर्म योग के बारे में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, मन को योग में स्थित कर और निष्काम भाव से कर्म कर। कर्म तब तक बंधन है जब तक वह फल की इच्छा से और आसक्ति से किया जाता है, पर जब वही कर्म समर्पण भाव से किया जाता है तब वही मुक्ति का और परम कल्याण का माध्यम बन जाता है। जब कर्म शुद्ध हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है और हमारी दृष्टि अंतर की तरफ मुड़ जाती है।

श्री कृष्ण कहते हैं, यत्रोपरमते चित्तम पश्यन आत्मनि तुष्यति। जहां मन विषयों से हटकर आत्मा में टिक जाए, वहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। इसके बाद की 6 अध्याय में गीता हमें भक्ति की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी।

यह है अपनी सारी सिद्धियों को, यहाँ तक कि अपनी भक्ति को भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। अंत के 6 अध्याय में भगवान ज्ञान योग का परिचय देते हैं, जहां आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, जो शोक नहीं करता है, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं, वह सम है, शांत है, मुक्त है। गीता का योग कोई एक मार्ग नहीं, संपूर्ण जीवन की साधना है। जब कर्म तप बन जाए, ज्ञान सेवा में बदल जाए, भक्ति समर्पण में बह जाए और ध्यान प्रेम की गहराई में उतर जाए, तब प्रकट होता है गीता का बहुआयामी योग। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब सब मार्ग, सब प्रयास, सब मैं गल जाए तो केवल समर्पण शेष रह जाता है, योग पूर्ण हो जाता है। इसलिए योग कोई अभ्यास नहीं, यह जीवन का सौंदर्य है, जहां कर्ता अकर्ता बन जाता है और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। यही है गीता का योग, बहुआयामी, बहुगुणी और अनंत कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 38।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 38। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

हेलो सर, मैं स्टूडियो 5 से।

0: भावानां विषये विचारविनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटनदिवसे विभिन्नानां न्यायिकप्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपालदेशस्य जलाप्लावप्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धारकार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धारसामग्रीः समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धारसामग्र्यः नेपालस्य विज्ञानप्रौद्योगिकी नवोन्मेषमन्त्रिणे महावीर पुन इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय स्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनांकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जाँच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में

0: क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anucha Kumar. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. This is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartuhari Mehtab, Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th of August gave nod for referring the bill to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has sent 2 more aircraft with relief material to Nepal to support the ongoing relief and rescue efforts in the flood-affected areas. External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation, Mahabir Pun. The Ministry of Home Affairs will make available services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and Laboratories of the National Forensic Sciences University for DNA profiling of first-degree biological relatives of missing persons from India following the flash flood in Nepal. Ministry of External Affairs said first-degree biological relatives residing in India may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification, subject to the technical requirements communicated by the Nepali authorities. The helpline number in this regard is प्लस

इस कृष्ण भजन के साथ ही आज का संगीतिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम, जिसमें हम भक्ति गीत लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे और जय श्री कृष्ण। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। आज की सुबह है कुछ खास, क्योंकि आज हम याद करेंगे उस प्यारे से नटखट कान्हा को, जिसकी मुस्कान में यशोदा मैया का वात्सल्य है, जिसकी बांसुरी में प्रेम की धुन है और जिसके नाम में ही मन को सुकून देने वाली शक्ति है। तो क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत करें श्री कृष्ण के मधुर फिल्मी भक्ति गीत के साथ। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

लव मास्टर फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। दोस्तों, कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, कान्हा ने भी कभी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे कंस का अत्याचार हो या कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ दिया, और यही आज की सुबह का ये जो संदेश है हमारा, यही है कि मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं लेकिन आपके हौसले को नहीं रोक सकती। फिलहाल सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में।

कान्हा का बचपन माखन की मटकी, गोकुल की गलियां और गोपियों की शिकायतें, लेकिन इन शरारतों में भी एक ऐसी मासूमियत थी कि जिसने कृष्ण को हर दिल का प्रिय बना दिया। कभी-कभी जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना भी जरूरी है। एक मुस्कान अपनों के साथ कुछ पल और मन से निकला भगवान का नाम, यही तो जीवन की असली दौलत है। चलिए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम से ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

श्री कृष्ण का एक रूप बाल गोपाल का है तो दूसरा रूप है एक महान मार्गदर्शक का। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हुए तब कृष्ण ने उन्हें कर्म का संदेश दिया। कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। आज की सुबह हम भी यही संकल्प लें, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, मुश्किलों से घबराएंगे नहीं और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म गोपाल कृष्ण से हेमलता और साथियों की आवाज़ों में।

जी हाँ दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी की धुन सिर्फ गोकुल को ही नहीं बल्कि सदियों से हर कृष्ण भक्त के मन को आकर्षित करती आई है। कहते हैं जब मन परेशान हो तो कृष्ण का नाम लीजिए, जब रास्ता समझ ना आए तो कृष्ण को याद कीजिए, और जब खुशियाँ मिले तो सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिए।

और अब गीतों भरे गुड मॉर्निंग के इस कृष्णमयी सुबह में एक छोटी सी बात, बीता हुआ कल हमें अनुभव देता है, आने वाला कल हमें उम्मीद देता है और आज का दिन हमें अवसर देता है। इसलिए आज को पूरे उत्साह से जिए, कान्हा पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए।

फिल्म गोकुल का चोर से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में। और भाई ये गीत अगर नहीं चलाते तो भाई कुछ अधूरा अधूरा सा लगता।

0: राधे राधे कहिए, कृष्ण का नाम लीजिए और मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और भाई हमें दीजिए इजाजत, इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदार

0: दारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update rahe, aage rahe. X पर एट AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एनरी सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN 2-0 in

0: चीनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वहीं प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-0

0: 5 on board GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of T20 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खबरें। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV F-17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजवित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ 2 और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और ख्वातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV F-17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। 27 घंटे की उल्टी गिनती के बाद सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV F-17 को सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से रात देर गए 2:55 पर छोड़ा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को इसके छोड़े जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतालिका मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और ये जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाए जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट भी है। ये सैटेलाइट कम वक्त में ही वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा, जिससे कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने वाले डेटा का इस्तेमाल ज़राअत, कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने में मुआवनत के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट कुदरती आफात की सूरत में बरवक्त जानकारी फराहम कर सकेगा और इस तरह मुतालिका हुकाम को इमरजेंसी सूरतेहाल से निमटने की खातिर फौरी तौर पर इकदामात करने में मदद भी मिलेगी। इधर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इस मिशन से कुर्रे अर्श का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी और मुतालिका खिदमात की फराहमी में बेहतरी आ सकेगी। इस मिशन से अंदरून मुल्क तैयार की गई खलाई रॉकेट की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की भी अक्कासी होती है। अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिनाकदर कामयाबी और मुल्क के लिए एक फख्रिया लम्हा करार दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएसएलवी F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत भारत की खलाई सलाहियत नई बुलंदियों पर पहुंचने का

0: उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए मथुरा और वृंदावन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश मथुरा में हजारों मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इनमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मथुरा और वृंदावन जय श्री कृष्ण के नारों की जाप के साथ भक्ति के माहौल से सरशार हैं। पूरे शहर में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ब्रिज मंडल और रियासत के दीगर हिस्सों में भी जन्माष्टमी पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन बड़ी तकरीब मथुरा वृंदावन में हो रही है, जहाँ आधी रात के जश्न के लिए सभी मंदिरों को फूलों, पत्तियों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। इस मौके पर लाखों अकीदतमंद पहले ही भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को देखते हुए पूरे मथुरा शहर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: गुजरात में भी जन्माष्टमी का त्योहार पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण जी के बड़े मंदिरों में मजहबी तकरीबात और खुसूसी रसूम का सिलसिला जारी है। इनमें आलमी शोहरत याफ्ता द्वारिकाधीश, डाकोर और श्यामला जी मंदिर शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद पवित्र शहर द्वारका में जमा हो रहे हैं ताकि जन्माष्टमी की तकरीबात में शिरकत कर सकें। आज सुबह सवेरे पवित्र मंगल आरती के साथ मजहबी रसूमात का आगाज हुआ, जो दिन भर खुसूसी दर्शन और रिवायती कीर्तन के साथ जारी रहेगी। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर को रोशनियों और फूलों से सजाया गया है और जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। मकामी इंतजामिया और मंदिर के अहलकारों की जानिब से अकीदतमंदों की भीड़ के बंदोबस्त और बिला रुकावट दर्शन को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफे को मानवीयत अता की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के रूहानी पैगामात से बेलोस खिदमत की तरगीब मिलती है, जिसने हमेशा इंसाफ इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। उन्होंने दुआ की कि भगवान श्री कृष्ण की अकीदत का ये मौका हर किसी की जिंदगी में मुस्बत तवानाई लेकर आए और सबको कुव्वत फराहम करे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियो चांसलर सीपी राधा कृष्णन आज चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया SAIFCIL में जदीद इंस्ट्रूमेंटेशन मरकज का इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर पंजाब यूनिवर्सिटी तकनीकी इख्तराई फोरम का भी आगाज करेंगे, जो यूनिवर्सिटी की तहकीक, इख्तरा और स्टार्टअप इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की जानिब एक अहम कदम होगा।

0: सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। इस फोरम में ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट्स के सुदूर और आला जुडिशियल रहनुमा शिरकत करेंगे। मजकूरा फोरम के जरिए इंसाफ की फराहमी, बैन अवी तनाज़ात के तस्वीर, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मामला पर तबादले ख्याल का मौका फराहम होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पहले दिन जुडिशियल वफूद के सरबराह के साथ कई दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मुतहदा अरब अमारात, बेलारूस, कजाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के जुडिशियल रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के आला चुनाव अफसर के दफ्तर ने ये जानकारी दी है कि जो राय दहिंदगान 30 जून से 17 अगस्त तक की मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करा सके, वो दावों और एतराजात दाखिल करने की मुद्दत के दौरान अपना नाम शामिल कराने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं। ये सहूलत इस महीने की 30 तारीख तक दस्तियाब रहेगी। कमीशन ने कहा है कि राय दहिंदगान हतमी वोटर फहरिस्त में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं, जो इस साल 4 नवंबर को शाये की जाएगी। भारत ने नेपाल के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और राहत की कार्रवाइयों में मदद फराहम करने के लिए इमदादी सामान के साथ मजीद 2 तैयारे भेजे हैं। वजारती खारजा ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर दोनों C-130J तैयारे काठमांडू में उतरे हैं। इमदादी सामान नेपाल के साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तरा के वजीर महावीर पुन के सुपुर्द किया गया। वजारत खारजा नेपाल में अचानक आए सैलाब के पेश नज़र भारत से ताल्लुक रखने वाले लापता अफराद के बराह रास्त हयातियाती रिश्तेदारों के DNA प्रोफाइलिंग की खातिर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज, रियासती फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरीज और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरियों में खिदमात दस्तियाब कराएगी। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत में रिहाइश पजीर फर्स्ट डिग्री हयातियाती रिश्तेदार मखसूस मराकज पर अपने हयातियाती नमूने जमा करा सकते हैं और DNA प्रोफाइल तैयार करा सकते हैं। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,259 हो गई है, जबकि इस सानहे के एक हफ्ते से ज्यादा गुजरने के बाद 5,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक चितवन में सबसे ज्यादा तादाद में 355 लाशें बरामद की गईं। वजीर आजम बालिंद्र शाह ने कहा है कि सानहे से मुंसलिक आबोहवा की तब्दीली का मामला बैन अक्वामी बिरादरी के साथ लाजमी तौर पर उठाया जाना चाहिए। खवातीन क्रिकेट में कल रात दुबई में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का निशाना मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और 2 गेंद में महज 56 रन पर आउट हो गई। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए खवातीन की भारतीय टीम ने मुकर 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 64 गेंदों में शानदार 124 रन बनाकर कई आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के लगाए। मंधाना खवातीन के बैन अक्वामी क्रिकेट में मिथाली राज को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। बैडमिंटन में आज शेंजेन में भारत के बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत चाइना मास्टर सुपर 750 टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चिक यू का सामना करेंगी। श्रीकांत ने कल आलमी नंबर 9 खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को 21-18, 21-19 से हराया था। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्जुमन।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हम मनसब बाद दी वेवर से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मुलाकात में तजारत व सरमायाकारी, बहरी उमूर और काबिल तजदीद तवानाई समेत कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। रोजनामा इनकलाब ने वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आलमी सतह पर जारी रुकावटों और मुतादित चैलेंजों के बावजूद भारत दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बना हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की

0: 20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरगंगा। स्वरगंगा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विजय कुमार जी से बांसुरी पर राग गुजरी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विजय कुमार से बांसुरी पर राग गुजरी तोड़ी सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है शिक्षा और शिक्षकों पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।
1: गांधी जी मानते थे कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षर होना नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ है चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भर बनना और मानवता की सेवा करना। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा का विरोध किया और बुनियादी शिक्षा तथा नई तालीम का विचार दिया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। उनका मानना है शिक्षा व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा के बाद व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए काम करे। वे कहते थे यदि हम देश को आजाद करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी। बच्चों को अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। 7 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और उनकी शिक्षा अनिवार्य की जाए। पढ़ाई के साथ साथ कोई हस्तशिल्प, कताई बुनाई, खेती बाड़ी भी सिखाई जाए। गांधी जी कहते थे हाथ और दिमाग साथ चले। स्कूल अपने खर्चे का कुछ हिस्सा बच्चों द्वारा बनाए गए सामान को बेचकर निकाले। गांधी जी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता मानते थे। उनके अनुसार एक आदर्श शिक्षक जैसा करेगा छात्र वैसा ही सीखेगा। आप जो उपदेश दें उसे पहले खुद जिए। शिक्षक का काम पैसा कमाना नहीं सेवा करना है। कम वेतन में भी काम करने का जज्बा हो। शिक्षक को भी कताई बुनाई आनी चाहिए ताकि वो बच्चों को सिखा सके। वे कहते थे शिक्षक को सादा जीवन, उच्च विचार वाला होना चाहिए। छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, डंडे से नहीं प्रेम से पढ़ाना चाहिए। कक्षा में भी सत्य बोलना और किसी से नफरत न करने की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक गांव में जाएं, लोगों को साक्षर बनाएं और सफाई सिखाएं। गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि आज के बच्चे टॉपर तो बन रहे हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन रहे। गांधी जी कहते थे पहले चरित्र फिर डिग्री। डिग्री लेकर भी बच्चे बेरोजगार हैं क्योंकि हमने हाथ का काम सीखना छोड़ दिया। गांधी जी की स्किल डिग्री वाली सोच आज सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत बोझ है। गांधी जी खेल, कला और प्रकृति के साथ शिक्षा चाहते थे। गुरुजन सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते, भविष्य गढ़ते हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर शिक्षक अपने छात्र से ये 3 सवाल पूछे। पहला, क्या तुम सच बोलते हो? दूसरा, क्या तुम अपने हाथ से कुछ काम कर सकते हो? और तीसरा, क्या तुम कमजोर व्यक्तियों की मदद कर सकते हो? अगर इन 3 सवालों के जवाब हाँ है तो समझिए आपकी शिक्षा सफल है। महात्मा गांधी ने शिक्षक को केवल साक्षरता न मानकर बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगिक विकास का माध्यम माना। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के जरिए शिक्षा को स्वदेशी हस्तशिल्प से जोड़ने और शिक्षकों को नैतिक मार्गदर्शक व चरित्र निर्माता के रूप में स्थापित किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि छात्र सहजता से सीख सके। पढ़ाई के साथ किसी उत्पाद हस्तशिल्प जैसे बुनाई, कृषि आदि से आत्मनिर्भर बने। गांधी जी शिक्षा को मानव के सर्वांगिक विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगिक विकास से है। उनका मानना था कि केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है बल्कि यह इंसान की भीतरी शक्तियों को बाहर लाने का साधन है। महात्मा गांधी ने विद्यालय और महाविद्यालय दोनों स्तरों पर सभी शिक्षकों से छात्रों को

0: नैतिकता और सदाचार को उचित शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। इस संबंध में शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश सुझाते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों में उच्च नैतिक मूल्यों और मजबूत चरित्र का विकास करना शिक्षा का कर्तव्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। उनका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना था और उन्होंने बच्चों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए गतिविधि केंद्रित शिक्षा की वकालत की। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का आधार भारतीय संस्कृति है, जो प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति धर्म का ख्याल किए बिना मिलनी चाहिए। वास्तव में यह शिक्षा बच्चे को बुनियादी आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों से घनिष्ठ संबंध रखती है। शिक्षा बच्चे के भविष्य में होने वाली प्रवृत्तियों और संभावनाओं का भी ख्याल रखती है। जिस समाज में बच्चा पैदा हुआ है, उस समाज की बुनियादी जरूरतों का ध्यान शिक्षा ही रखती है। वास्तव में शिक्षा देश की जनता और साधारण आदमी के लिए बनाई गई है, क्योंकि देश का साधारण आदमी ही देश की नींव होता है। शिक्षा का अर्थ बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का सबसे अच्छा विकास करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र और नैतिक मूल्य पैदा करना है। विद्यालय ऐसा हो जहां बच्चा पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनना सीखे। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके और बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास कर सके। बालक के सर्वांगिक विकास हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सके। गांधी जी ने शिक्षा को सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं माना। उनके लिए शिक्षा का मतलब था सर्वांगिक विकास, शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास, बिना जाति धर्म के, भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा। उनका शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना था। शिक्षा को सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि कारीगरी, स्वास्थ्य, सफाई, नैतिकता भी सिखानी चाहिए। कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे बहुत ही बड़े शिक्षक और दार्शनिक और विद्वान हुए हैं। गांधी जी ने शिक्षा को बाजार नहीं, मंदिर माना। उन्होंने शिक्षा को नौकर नहीं, राष्ट्र का निर्माता माना। आज हमें अंग्रेजी और डिग्री के साथ साथ गांधी जी की नई तालीम को भी अपनाना होगा, तभी हम साक्षर भारत के साथ साथ संस्कारी भारत और आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। सच्ची शिक्षा वो है जो बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करे, समाज का उपयोगी सदस्य बनाए और देशभक्त इंसान बनाए। शिक्षक वो कुम्हार है जो मिट्टी जैसे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाता है। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ। अगर इमारत है देश तो नींव है शिक्षक। जीवन की हर मुश्किल का समाधान है शिक्षक। बिना गुरु के जीवन अधूरा सा लगता है, क्योंकि ज्ञान का सच्चा वरदान है शिक्षक।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था शिक्षा और शिक्षकों पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से

0: पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी GE एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Nina Rakel. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F-17 rocket

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद। फिल्म

संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बांसुरी की धुन पर जो दुनिया को नचाता है, बांसुरी की धुन पर जो दुनिया को नचाता है, प्रेम का सही अर्थ जो जग को सिखाता है, छोड़कर सारे गिले शिकवे, आइए मिलकर झूम लें। आज फिर से माखन चोर इस जमी पर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण जमी पर हैं और हर तरफ कृष्णमय माहौल है, और आप सभी को भी कृष्ण जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।

जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान और आनंद का वो अटूट समंदर है जहाँ पहुँचकर हर भटका हुआ मन अपना किनारा पा लेता है। और दोस्तों, आप सभी की भी फरमाइशें और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पास आ रही हैं, और शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों से। ये हमारे पास मेल आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। और ये फरमाइश हमारे पास आई है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक, और ये चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा। इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी हमारी ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दाऊद सराय सहारनपुर से हैं अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजफ्फिर और जरीफ अंसारी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, कैथल हरियाणा से हैं जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। और हमारे पास अगली फरमाइश आई है तुलसी मस्कीन की। इन्होंने भी हमें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भेजी हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आपकी फरमाइशें हमारे पास लगातार आ रही हैं और आज मैं देख रही थी कि 10 बजे से ही शुरू हो गई आपकी फरमाइशें आनी, और बड़ा अच्छा लगता है कि आपको हमारा प्रोग्राम इतना पसंद आता है। और ये हमारी फरमाइश आई है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाज़ार रोड, मुंगी सापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना, यश मंसूरी और प्यारा नवासा नुमैर मंसूरी। इन्होंने हमें जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, देवशंकर तामूरिया।

अजय देवता, मूरिया तुषार देव, डोली बेबी, पूजा राधिका और प्रभा देवी बालोद छत्तीसगढ़ से, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, घनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, और कई हमारे जो साथी हैं वो फरमाइशें अपनी बार बार भेज रहे हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि एक या दो बार ही अपनी फरमाइश भेजें ताकि हम आप सबकी फरमाइशों को शामिल कर सकें। धानोरा विटाली, तहसील नादूरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल, मानसरोवर गार्डन से हैं विशंबर मेहंदीरत्ता जी, सरोज, सुखविंदर, प्रीति, निक्की और उनके सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर कहना हो वहाँ थोड़ा नटखटपन और माखन चोरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मटकी भी टूटी, माखन भी टूटा और दिल भी हार गए। मटकी भी टूटी, माखन भी टूटा और दिल भी हार गए। गोपियाँ शिकायत भी करें तो किससे, वो अपनी अदाओं से सबको मार गए। और हमारे पास हमारे श्रोताओं की अगली फरमाइश

आ रही है। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशव, रसीद वारसी किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुमन ख़ान, और इन्होंने हमारा शुक्रिया किया है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनते हैं और उस पर फिर अपने कमेंट्स भी देते हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किसान किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। गंज डुंडवारा से हैं शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान। सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु पटियाला पंजाब से हैं। अलीका डब्वाली से हैं बसंत सिंह चतर, राजकुमार, कुलदीप गांधी। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन। डीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और ये हमारे पास मेल आया है गुलाबदास मानिकपुरी का। इन्होंने लिखा है, अर्चना दीदी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आपको भी। प्रेम की प्रतीक है नंद के लाला, चारों ओर हैं उनके ही बोलबाला। आज है जन्मदिन लाला का, मेरे कन्हैया प्यारा का। छत्तीसगढ़ से ये हमारे पास मेल आया है, तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। तो शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों से। तो ये हमारे पास मेल आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का। अर्जिंदर सिंह भाटिया का ये हमारे पास मेल आया है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र टीकमगढ़ से हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष। धर्मेंद्र छीपा, इन्होंने हमें जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि आप बेहतरीन प्रस्तुति दे रहे हैं और बेहतरीन नगमे भी सुनवा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया। मंडी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। सतप्रकाश सनोठिया हैं रोहिणी से और ये हमारे पास फरमाइश आई है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। जामा मस्जिद से हैं हाजी इसहाक मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी। और ये हमारे पास अगली फरमाइश है सतप्रकाश गोयल, रेनू गोयल, इन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। सर सनावन मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। और दोस्तों जहाँ पर कृष्ण जी हैं और अगर वहाँ राधा ना हो तो कैसे काम होगा, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम तो जग जाहिर है। राधा कृष्ण का प्रेम किसी परिचय या रिश्ते का मोहताज नहीं, ये तो दो शरीरों में धड़कती हुई एक ही आत्मा का नाम है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, कृष्ण जी का ये संदेश तो आप सभी ने ही सुना होगा कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो हम भी अपना कर्म करते हैं और आपके मेल पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारे पास अगला मेल आया है ज़िला मुरादाबाद से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, सनावन मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मोसा भाईजान, भाई राजकुमार, और ये हमारे पास फरमाइश आई है नर्मदा पार्क मंगल वेढ़ा से। मास्टर अंतिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल की। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, संदीप मक्कड़, ज्योति।

मकड़, मन्नत मकड़, भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक जालंधर से, और पंजाब से हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। और ये हमारे पास फरमाइश आई है राजी शर्मा की, आदर्श नगर पंजाब से, मीना शर्मा, योगेश, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा की। इन्होंने कहा है नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार, कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ हमारे मैसेज को शामिल करें। तो हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। सहारनपुर से हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोज़ी, पर्ल और विलिस डी कैस्ट्रो। नागपुर महाराष्ट्र से हैं अनिल, छाया और प्रियांश। महाराष्ट्र से ही हैं संतोष खट से और विनोद खट से। सिद्धार्थ गोडाने से हैं हीरामन शेंडे, अर्चना, प्रणय और प्रतिभा। छत्तीसगढ़ से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। हनुमानगढ़ से हैं समीम बेगम, इमरान खान, इरतान खान और जिशान खान। मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

ना दौलत की चाहत ना शोहरत की आस है, ना दौलत की चाहत ना शोहरत की आस है, बस कान्हा की कृपा बनी रहे यही सबसे बड़ा एहसास है। बिल्कुल दोस्तों, आप सब पर कान्हा की कृपा हमेशा बरसती रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें यही कामना करते हैं। और इसी के साथ अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। नमस्कार।

0: अभी आप फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
4: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404 IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO Chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging

अभी आप रूना लैला की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें आज आप सुनेंगे लावण्या आंबडे का सितार वादन राग वाचस्पति में।

नमस्कार। आज मैं राग वाचस्पति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस राग के आरोह और अवरोह इस तरह से हैं। आरोह में नीसा गामा

दिशा अवरोहों में सा नी ध प म ग रे सा। इसमें निषाद कोमल तीव्र मध्यम, और इसका प्रस्तुत करने का जो प्रहर है वो द्वितीय प्रहर है, दिन का द्वितीय प्रहर। धन्यवाद।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप लावण्या आंबडे का सितार वादन सुन रहे थे राग वाचस्पति में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी

0: अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

हर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.9।

1 MHz पर साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 KHz पर। और आप सभी को प्रेम उल्लास और भक्ति से भरे पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन है उस नट खटकाने के स्वागत का जिसने अपनी बांसुरी से प्रेम का संदेश दिया, अपनी मुस्कान से हर मन को मोह लिया और गीता के अमर ज्ञान से पूरी मानवता को जीवन जीने की राह दिखाई। इस जन्माष्टमी हम भी अपने जीवन में प्रेम, करुणा, उत्साह और निष्काम कर्म का दीपक जलाएं। और दोस्तों, आज का सवाल भी जन्माष्टमी स्पेशल है, यानी भगवान श्री कृष्ण की कौन सी सीख आपको लगता है कि आज के समय में सबसे प्रासंगिक है, रिलेवेंट है? निष्काम कर्म, धैर्य, प्रेम या जीवन को मुस्कुराकर जीने की कला? अपने विचार हमें भेजिए इस ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। तो भक्ति, संगीत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का ये खास जन्माष्टमी स्पेशल शो घर आंगन।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म शागिर्द से, और आज का सवाल एक बार फिर से दोहरा दूं कि भगवान श्री कृष्ण की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आज के समय में वो सबसे प्रासंगिक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई। और दोस्तों, आज का दिन भक्ति का है, उल्लास का है, प्रेम का है और विश्वास का है। मंदिरों में सजी मनमोहक झांकियां, कान्हा के मधुर भजन, फूलों की सुगंध, झूलों में विराजे लड्डू गोपाल और राधे राधे की गूंज, पूरा वातावरण जैसे आनंद और भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो हर हृदय में स्वयं नंदलाल विराजमान हो। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं है दोस्तों, बल्कि उस दिव्य चेतना का उत्सव है जिसने संसार को प्रेम, करुणा, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण का अवतार हमें ये विश्वास दिलाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नई सुबह जरूर आती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, मुस्कान कभी नहीं छूटनी चाहिए। बचपन की नटखट शरारतों से लेकर जीवन के सबसे कठिन निर्णयों तक उन्होंने हर भूमिका को सहजता, बुद्धिमानी और प्रेम से निभाया। शायद इसलिए श्री कृष्ण हर उम्र के अपने लगते हैं। बच्चों के लिए नटखट कान्हा, युवाओं के लिए सखा, माता पिता के लिए आदर्श पुत्र और जीवन की उलझनों में भटकते मन के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक। माखन चुराने वाले कान्हा, गोपियों के प्रिय वही श्याम और महाभारत के रणक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनकर जीवन का अमूल्य ज्ञान देने वाले भी वही श्री कृष्ण। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य प्रेम में है, सबसे बड़ी शक्ति धैर्य में है और सबसे बड़ी विजय अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करने में है। जब मन में करुणा हो, व्यवहार में विनम्रता हो और कर्म में ईमानदारी हो, तब हर दिन एक उत्सव बन जाते हैं। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास है, जहाँ निस्वार्थ सेवा है, जहाँ विश्वास है, वहीं सच्ची भक्ति है, वहीं सच्ची जन्माष्टमी है।

अभी हम सुन रहे थे हेमलता को फिल्म गोपाल कृष्णा से। और आइए अब चलते हैं भारत की एक ऐसी यात्रा पर जहां जन्माष्टमी के अनेक रंग है लेकिन भाव सिर्फ एक, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। तो शुरुआत करते हैं मथुरा वृंदावन से, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को जैसे ही 12 बजते हैं, मंदिरों में शंखनाद, घंटियां और नंद के आनंद भयो की गूंज सुनाई देती है। लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाया जाता है, पालना झुलाया जाता है और भक्त नंद के घर आनंद भयो गाते हुए प्रसाद बांटते हैं। अब चलते हैं गुजरात की द्वारका नगरी, जहां श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। यहां उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पूजा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष ध्वजारोहण होता है, इसकी भव्यता बस देखते ही बनती है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी का अर्थ है दही हांडी, ऊंची मटकी, मानव पिरामिड और गोविंदा आला रे का उत्साह। यह केवल खेल नहीं बल्कि सहयोग, साहस और विश्वास का प्रतीक है। गुजरात के कई हिस्सों में जन्माष्टमी की रात रास और गरबा का आयोजन होता है। उड़ीसा में लोग इसे भगवत गीता का इस दिन पाठ करते हैं। कई स्थानों पर पूरी रात भजन कीर्तन चलता है और अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर की जन्माष्टमी अपनी दिव्य रास लीला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ वैष्णव परंपरा के अनुसार शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मणिपुरी नृत्य शैली का अनमोल स्वरूप माना जाता है। दक्षिण भारत में भी जन्माष्टमी का उत्साह देखते ही बनता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में घर के आंगन में चावल के आटे से नन्हे नन्हे पद चिन्ह बनाए जाते हैं, मानो बाल गोपाल स्वयं घर में प्रवेश कर रहे हो। केरल के गुरुवायूर मंदिर में श्री कृष्ण को गुरुवायु रप्पन के रूप में पूजा जाता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, विशेष पूजा अर्चना होती है। तो कितनी अद्भुत बात है ना, कि कहीं वे कान्हा है, कहीं गोपाल, कहीं द्वारकाधीश, कहीं श्रीनाथ जी, तो कहीं गुरु वायूरप्पन। नाम बदल जाते हैं पर प्रेम नहीं। यही तो है भारत, अनेक भाषाएं, अनेक परंपराएं, अनेक रंग, लेकिन भाव सिर्फ एक, श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा।

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म ब्लफ मास्टर से। और चलिए, मेल्स हमारे पास आ चुके हैं और अनिल मेहता जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की निष्काम कर्म की सीख आज के भाग दौड़ और प्रतिस्पर्धा भरे दौर में सबसे अधिक प्रासंगिक है। चरणदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्नेही रूप बहुत अच्छा लगता है, उनकी लीलाओं में बहुत शिक्षा मिलती है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, सिद्धांत अपनाकर हम सभी काम करते हैं। और ये पूछ रहे हैं कि क्या आप वही मंजुला जी हैं जो शनिवार को आधाकाश प्रोग्राम में आती थी? जी हाँ, मैं वही हूँ, बिल्कुल सही पहचाना। और आदित्य मुद्गल जी लिखते हैं कि मेरे अनुसार निष्काम कर्म आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। और रमीशा जैन जी लिखती हैं कि मेरे विचार से आज के समय में भगवान श्री कृष्ण की निष्काम कर्म की सीख सबसे अधिक प्रासंगिक है। आज मनुष्य अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहता है, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या प्राप्त होगा। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये संदेश कि कर्म करना हमारे हाथ में है, उसके फल पर हम

0: अधिकार नहीं है, मन को एक अद्भुत शांति देता है। बहुत ही खूबसूरत। और अनन्या श्रेष्ठा जी लिख दिए कि मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म की सीख आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। और ऐना लिखती हैं कि मुझे लगता है आज के तनावपूर्ण जीवन में श्री कृष्ण के जीवन को मुस्कुराकर जीने की कला सबसे अधिक प्रासंगिक है। परिस्थितियां हमारे अनुसार रही होंगी, लेकिन मुश्किलों के बीच में भी सकारात्मक रहना, रिश्तों को प्रेम से निभाना और जीवन का आनंद लेना हमें भीतर से मजबूत बनाता है। बहुत ही खूबसूरत। गौरी शंकर वर्मा जी लिखते हैं कि आपकी पूरी टीम को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में इंसान की पूरी जिंदगी की सच्चाई कह दी है। अच्छाई बुराई दोनों के बारे में समझ में नहीं आ रहा, उनके बारे में क्या कहें, एक एक शब्द सुनने लायक है। इंसान इस पर अमल करे तो पूरी जिंदगी खुशी से गुजरती है। बहुत ही खूबसूरत लिखा आपने। प्रमोद मिश्रा जी लिखते हैं कि मेरे लिए निष्काम कर्म सबसे अधिक प्रासंगिक है। परिणाम की चिंता त्याग कर संपूर्ण निष्ठा से कर्म का प्रतिपादन ही श्रेयस्कर है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हमारा अधिकार कर्म कर पर है, फल पर नहीं। बहुत ही अच्छा लिखा आपने। सुदर्शन मुखी जी भी लिखते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ऐसे जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया बात। और श्री पाल गोयल जी लिखते हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा भी जन्मदिन है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे के लिए भी और जन्माष्टमी के लिए भी। बहुत ही अच्छे मेल्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबके जो विचार हैं उसको जानकर यही लगा कि निष्काम कर्म पर आप सबका भरोसा है, तो इसी तरह भरोसा बनाए रखिए और जन्माष्टमी का उत्सव अच्छी तरह से मनाइए।
1: तत् मुरलिक धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाद दिग नाद दिग दिग दिग धो दिग दिग धो दिग दिग राम तत्

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म थी परिवार। और दोस्तों, त्योहार ये केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, बल्कि घर आंगन में बिखरी खुशी, रिश्तों की गर्माहट और यादों की ऐसी पोटली होते हैं जो उम्र के हर पड़ाव पर साथ चलती है। समय बदला है, जीवन की रफ्तार बदली है, लेकिन त्योहारों की खुशबू आज भी वही है। अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछें कि पहले जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती थी, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। कई दिन पहले से ही घर की साफ सफाई शुरू हो जाती थी, कान्हा के लिए छोटा सा झूला सजाया जाता, नए वस्त्र पहनाए जाते और मंदिर को फूलों से सजाया जाता। रसोई में दिन भर तैयारियां चलती थी, श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए उनके प्रिय माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर, पेड़े, लड्डू और घर में बनी तरह तरह की मिठाइयाँ बड़े प्रेम से बनाई जाती थी। आधी रात तक पूरा परिवार जागकर कान्हा के जन्म की प्रतीक्षा करता था और जैसे ही 12 बजते, शंखनाद, घंटियों की गूंज और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता था। और सबसे सुंदर बात यह थी कि त्योहार सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहते थे, पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे। कोई प्रसाद लेकर आता था, कोई घर की बनी मिठाई, बच्चे जो हैं वो झांकियां देखने निकल पड़ते थे, तो महिलाएं भजन कीर्तन में मगन हो जाती थीं। दरवाजे हमेशा खुले रहते और दिल भी। आज तस्वीर थोड़ी सी अलग है, ऑनलाइन विशेज हैं, डिजिटल निमंत्रण है, तैयार मिठाइयाँ हैं और व्यस्त दिनचर्या भी। सुविधाएं बढ़ी हैं, समय की बचत भी होती है, दूर बैठे लोग अपने वीडियो कॉल पर अपनों से जुड़ जाते हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, वो है त्योहारों का असली अर्थ, वो है अपनों के साथ बिताया गया समय, प्रेम, सम्मान और अपनापन। हमारे वरिष्ठ जन इस बदलते दौर के सबसे सुंदर साक्षी हैं। उन्होंने मिट्टी के दियों की रोशनी भी देखी है और आज की जगमगाहट भी। उन्होंने हाथ से बने भोग और प्रसाद का स्वाद भी चखा है और आज की आधुनिक सुविधाओं को भी अपनाया है, इसलिए उनकी यादें हमारे लिए अनुभवों का अनमोल खजाना है। तो आइए बदलते समय का स्वागत करें, लेकिन अपने जड़ों से जुड़ाव भी बनाए रखें, क्योंकि नए रंग तभी सबसे सुंदर लगते हैं जब उनमें पुराने जो यादों हैं उसकी खुशबू घुली होती है।
1: वाह,

अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म खानदान से। और दोस्तों, आज के दौर में भी क्यों प्रासंगिक है गीता का ज्ञान। जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है, मन में एक साथ कई रूप उभर कर आते हैं। माखन चुराने वाले नटखट कान्हा, रास रचाने वाले बांसुरीधारी, सुदामा के सच्चे मित्र और महाभारत के महान रणनीतिकार। लेकिन इन सभी रूपों से ऊपर है उनका एक दिव्य स्वरूप, भारत की सनातन संस्कृति के नायक योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर अर्थात वो जिसने जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संबंध और प्रत्येक परिस्थिति को योग बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन शब्दों से ऐसा प्रकाश दिया जिसमें केवल अर्जुन ही नहीं पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया। वही अमर संदेश है श्रीमद् भगवद गीता। अक्सर लोग गीता को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये जीवन जीने की सबसे व्यवहारिक पुस्तक है। आज के तनाव, प्रतिस्पर्धा, असफलता, रिश्तों की उलझन और मानसिक दबाव के दौर में गीता पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम परिणाम को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि कर्म का आनंद ही भूल जाते हैं। परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर परिवार, यदि हम अपना बहुत अच्छा देते हैं, बेस्ट देते हैं और परिणाम को सहजता से स्वीकार करें, तो जीवन कहीं अधिक संतुलित हो सकता है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भय, यही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। तो इन्हें जीत लें, वही सच्चा विजेता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए उन्होंने समत्व का संदेश दिया। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही योग है। शायद यही कारण है कि गीता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रही। आज दुनिया के बहुत बड़े प्रबंधन संस्थान, नेतृत्व विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और प्रेरक वक्ता भी गीता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समय बदलता है लेकिन सत्य नहीं। इस जन्माष्टमी पर यदि हम श्री कृष्ण से एक सीख अपने जीवन में उतार लें, तो वो ये होना चाहिए कि कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें, मन को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहे। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है और यही एक सफल, शांत और सार्थक जीवन की कुंजी भी है।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अमर प्रेम से। और आज 4 सितंबर का दिन हमें दो महत्वपूर्ण अवसरों की याद दिलाता है। पहला, भारत के महान चिंतक अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजू की जयंती, और उनका जीवन हमें सिखाता है ज्ञान और तर्क भी बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बन सकते हैं। और आज ही है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। हमारे जंगल, नदियाँ और वन्य जीव केवल प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि जीवन के संतुलन की आधारशिला हैं। और दोस्तों, वृंदावन की गलियों में जब भी कहीं बांसुरी की मधुर तान गूंजती है तो मन अपने आप ही शांत होने लगता है। और शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सजी बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि प्रेम, शांति और जीवन का प्रतीक मानी जाती है। तो जन्माष्टमी के इस अवसर पर जानते हैं कि बांसुरी केवल संगीत नहीं बल्कि एक तरह का थेरेपी भी है। और रोचक बात यह है कि बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति केवल संगीत ही नहीं रचता बल्कि अनजाने में एक प्रकार का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो भी करता है। लंबी और नियंत्रित सांसें फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, मन को स्थिर रखने और शरीर को सहज बनाने में मदद करती है। यही कारण है कि कई लोग इसे ध्यान और योग के साथ भी जोड़ते हैं। तो श्री कृष्ण की बांसुरी का आध्यात्मिक संदेश भी उतना ही सुंदर है। बांसुरी भीतर से पूरी तरह से खोखली होती है तभी उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं। मानो वो हमें सिखाती है कि जब मन अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से खाली होता है तभी जीवन में प्रेम, मधुरता और आनंद का संगीत गूंजता है।

अभी हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर को फिल्म गीत से। और जन्माष्टमी पर केवल मंदिर ही नहीं सजते बल्कि मन भी सजता है, और जब मन में कान्हा बस जाए तो श्रृंगार भी केवल फैशन ही श्रद्धा का रूप बन जाता है। तो राधा कृष्ण की प्रेममयी छवि से प्रेरित जन्माष्टमी का श्रृंगार आज परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम बन चुका है। तो अगर आप भी इस बार कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जिसमें भक्ति भी झलके सौंदर्य भी, तो चलिए कुछ सजेशंस हम देते हैं। सबसे पहले रंगों की बात, इस दिन पीला, केसरिया, मोरपंखी, हरा, नीला, गुलाबी और सफेद रंग सबसे शुभ माने जाते हैं। ये केवल आकर्षक ही नहीं लगते बल्कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उनकी लीलाओं का प्रतीक भी माने जाते हैं। अगर भारी परिधान पहनना पसंद ना हो तो हल्की सूती या रेशमी साड़ी, अनारकली लहंगा या इंडो एथनिक कुर्ता भी बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। अब बात आभूषणों की, इस बार भारी गहनों की जगह टेम्पल ज्वेलरी जो होते हैं उससे खुद को सजाएं। मोतियों की माला, कुंदन के झुमके, चूड़ियां और छोटी सी नथ आपके रूप में पारंपरिक गरिमा जोड़ सकती है। बालों में गजरा, ताजे फूल और मोरपंख से सजा हेयर एक्सेसरीज पूरे श्रृंगार को एक अलग ही पहचान दे सकता है। और हाँ, जन्माष्टमी का श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक माथे पर सुंदर सी बिंदी और उस पे चंदन का तिलक ना हो। तो असली सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं, भाव में होती है। जब मन में प्रेम, आंखों में श्रद्धा और चेहरे पर मुस्कान हो, तब हर स्त्री में राधा का सौंदर्य और हर घर में वृंदावन की झलक दिखाई देने लगती है।

अभी हम सुन रहे हैं आशा भोंसले को, फिल्म लगान से साथ में है उदित नारायण भी। और आज के इस पावन दिन पर बस यही कामना है कि श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, प्रेम, धर्म और करुणा की सीख आपके जीवन को सदैव प्रकाशमय बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: GEO-ORBIT providing important strategic data for our country.
0: नेपाल

0: तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
1: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म का ये सबसे प्रचलित गीत है जो सत्या फिल्म के लिए सबसे हिट साबित हुआ और कई सिने प्रेमियों के दिल में आज भी ये गीत बस

0: ये सच है दोस्तों कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दिल के कोने में हमेशा के लिए बस जाती हैं, जिनका हर सीन कल्ट बन जाता है। इस फिल्म में हमें मनोज बाजपेयी, जीडी चक्रवर्ती, सौरभ शुक्ला, परेश रावल, उर्मिला मातोंडकर, गोविंद नामदेव, मकरंद देशपांडे, शेफाली शाह, नीरज वोरा, सुशांति सिंह जैसे एक्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने अपने रोल में भरपूर अभिनय किया है। और ये फिल्म ऐसी रही जो रिलीज होते ही फ्लॉप साबित तो हुई, लेकिन हफ्ता बीतते बीतते ही अचानक थिएटर्स में मूवी के टिकट ब्लैक में बिकने लगे और आगे चलकर फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बॉलीवुड की बेहतरीन गैंगस्टर बेस्ड क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक ये फिल्म रिलीज के कई साल बाद तक फैन फॉलोइंग के साथ आगे बढ़ती रही। इस फिल्म के बारे में करेंगे आगे और भी बातें, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी।
3: ये
1: चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, वेलकम बैक। आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, आपका शो चल रहा है एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं

रहे हैं 1998 की फिल्म सत्या के बारे में। 90 के दशक में जहां गैंगस्टर फिल्मों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाते थे, वहीं सत्या फिल्म ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का असली चेहरा सामने रखा। फिल्म में किरदारों को आम इंसानों की तरह दर्शाया गया, तो जुर्म की दलदल में फंसे हुए लोगों को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया जैसे जीवन के सामने वो दृश्य चल रहा है। अपराधियों के मानवीय पहलू, जैसे उनका परिवार, उनका सुख दुख और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत करीब से दिखाने की कोशिश है सत्या। इस फिल्म में भीखू मात्रे और उसकी पत्नी प्यारी मात्रे उर्फ शेफाली शाह का किरदार इसके बेहतरीन उदाहरण है। तो फिल्म के बारे में आगे भी बात करेंगे। और सत्या में जो इस फिल्म में सत्या बने थे वो थे मनोज बाजपेयी। रामगोपाल वर्मा ने शुरुआत में मनोज बाजपेयी को मुख्य किरदार सत्या के रोल के लिए साइन किया, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट पर काम बढ़ा उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म के सबसे अहम गैंगस्टर किरदार भीखू मात्रे के लिए एक ऐसे अभिनेता की ज़रूरत है जिसकी हिंदी पर मजबूत पकड़ हो। इसके बाद मनोज बाजपेयी को भीखू मात्रे का आइकॉनिक रोल मिला और मुख्य भूमिका जेडी चक्रवर्ती के पास चला गया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

इस फिल्म के सभी कलाकार, एक्टर्स और इस फिल्म से जुड़े सभी लोग दोस्तों न्यूकमर्स थे, जिन्हें राम गोपाल वर्मा अपने साथ लाए। मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर बेस्ड इस फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि फिल्म के कई सीन सेट पर ही लिखे गए और जिस समय ये फिल्म आई उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, वहाँ के लोग, सारे पहलुओं को निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इस कहानी में पिरोकर बनाई थी सत्या। जानते हैं जिस दिन फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी उस

इस फिल्म की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जिसमें मनोज बाजपेयी द्वारा निभाया गया भीखू मात्रे का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया। उनका संवाद मुंबई का किंग कौन भीखू मात्रे आज भी कल्ट माना जाता है। इस दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो चलिए सुनते रहिए मेरे साथ एक ही फिल्म से में आज सत्या फिल्म का ये सफर।

1998 की रिलीज फिल्म सत्या, राम गोपाल वर्मा की फिल्म की बात हो रही है एक ही फिल्म से के आज के सफर में। और आप सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हम बताना चाहते हैं, ipradiodelhi@gmail.com पर आप बता सकते हैं आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमारा जो हमारी प्रतीक्षा है आपके संदेशों के लिए, और आप सुनते रहिए हमारे साथ इस सफर में आज की कहानी। फिल्म की पटकथा और संवाद अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला ने लिखे। उन्होंने किरदारों की भाषा को मुंबई या टच में रखा, जैसे कल्लू मामा सौरभ शुक्ला ने उस रोल में काम किया, और उनका जो गाना था गोली मार भेजे में, उस गीत ने ये कमाल कर दिया कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में बना था दोस्तों, बिना कोरियोग्राफर के शूट हुए। और जानते हैं इस गीत के फिल्मांकन का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ये रहा कि फिल्म के संपादक अपूर्व असरानी बी रोल शूट करने गए थे, और तब वर्ली में पूनम चेंबर्स की बिल्डिंग गिरी थी, इसलिए पुलिस किसी को वहां जाने नहीं दे रही थी। तब अपूर्व ने स्लम के पीछे वाले रास्ते से चुपके से वहां पर प्रवेश किया और 2 शॉट ले लिए। वही शॉट टाइटल में बम ब्लास्ट के रूप में दिखाए गए और गीत गोली मार भेजे में वो शामिल किए गए। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

इस फिल्म को पसंद करने वाले बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और अमित आहूजा जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जानकारी उन्हें बहुत रोचक लग रही है। बहुत शुक्रिया। और अगला संदेश है हीरामणि वर्मा का दतरंगी भाटापारा से, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जन्माष्टमी की बधाई के साथ एक ही फिल्म से की प्रस्तुति को सुन रहे हैं हमारे श्रोता साथी संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उसी तरह हमारे एक श्रोता साथी हैं, ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, और उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और जानकारी भी अच्छी लग रही है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांतिनगर सोनीपत से और उन्हें भी कार्यक्रम बहुत रोचक लग रहा है। और हमारे साथ हैं प्रेम सागर, शुभ, लता, खजाना गेट अमृतसर से, वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगनिया, नमन ढिंगनिया और अपार ढिंगनिया, और इसी तरह से शाइना हसन, सैयद मसरूर, अक्सा अदीब, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। भंवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन हैं और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कार्यक्रम सुन रहे हैं। और धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद और बेबी आलिया और अयान बाबू सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और जानकारी उन्हें बहुत अच्छी लग रही है और उन्हें ये फिल्म भी पसंद है। जी बहुत शुक्रिया। और आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, एक ही फिल्म से के इस सफर में। और सत्या से जुड़ी बातें, सत्या का संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया, गाने के बोल गुलजार ने लिखे, विशाल भारद्वाज का संगीत और संदीप चौटाला का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान बने। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के थ्रिल को कई गुना बढ़ाने वाला था। फिल्म की शूटिंग के लिए हैंड हेल्ड कैमरों और रियल लोकेशंस यानी मुंबई की जो तंग चौल थी उनका चयन किया गया और वहां ही सारी शूटिंग हुई। और दर्शकों ने यह महसूस भी किया होगा कि खुद उस माहौल को उन्होंने उस फिल्म में भी देखा होगा। सत्या ने बॉलीवुड को जो घिसे पिटे फॉर्मूले थे उससे बाहर निकाला और नए निर्देशकों को, उन्होंने अभिनेताओं को तरक्की के लिए नए रास्ते खोल कर दिखाए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सुन रहे हैं आज कल्ट मूवी सत्या की बातें और फिल्मी समीक्षा। जानते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में गणपति विसर्जन वाला मर्डर स्क्रिप्ट में था ही नहीं, और एडिटिंग में विसर्जन के फुटेज देखकर राम गोपाल वर्मा ने डुप्लीकेट मूर्ति बनवाकर इसे शूट करवाया था। और भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक सत्या ने फिल्मों में यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक ये फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें मनोज बाजपेयी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से उसे नवाजा भी गया था। और इस फिल्म में से सत्या की कहानी और गीत की समीक्षा आप जब सुन रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि इस फिल्म की एक एक रवानी आपके भीतर झूमने लगी होगी, आपको याद आने लगा होगा अगर आपने ये फिल्म देखी है तो। और अगर नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है कि इस फिल्म को ज़रूर देखिए। चलिए फिलहाल सुनते हैं इस जानकारी में आज की अंतिम प्रस्तुति ये गीत।

एक ही फिल्म से कि आज के इस सफर में आप थे मेरे यानी मनीषा के साथ। तो आशा करते हैं आपको आज की जानकारी आई होगी पसंद और इसी फिल्म के इस गीत के साथ एक ही फिल्म से के इस सफर को करते हैं हम समाप्त। अब मुझे यानी आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मनीषा बोस को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही समय में आप समाचार सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: दिल्ली के अंदर तो
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी में खबरों के नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह EOS-05 के सफल लांच को भारत के पुलाड़ खेतर में परिभाषित करने वाली समर्थावां का चिलकारा दस्या। ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम नवी दिल्ली विच शुरू हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस का त्यौहार जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उत्साह मनाया जा रहा है। नेपाल हड़ा तो बाद एक वड्डे बचाव यत्न विच त्रिशूली 3A पनबिजली प्रोजेक्ट विच एक सुरंग विच फसे दो लोगों को 10 दिन बाद जिंदा बचाया गया। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्वी साई राज रणकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी भी भारतीय जोड़ी अशांत सेमीफाइनल भी सांभण लई डेनमार्क की जोड़ी खिलाफ मैदान च उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तो भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह EOS-05 में लेके जान वाले GSLV-F17 के सफल लॉन्च की शलाघा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सफल लॉन्च में भारत के पुलाड़ खेतर में परिभाषित करने वाली महारत नवीनता और बदलिया समर्थावां का चिलकारा कहा। उन्होंने इसरो वल्ले एक शानदार प्राप्ति के देश लिए एक मान वाला पल भी कहा। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन ने अज सवेरे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा विखे सतीश धवन पुलाड़ केंद्र तो GSLV-F17 रॉकेट के EOS-05 धरती निरीक्षण उपग्रह में सफलता न लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत धरती निरीक्षण समर्थावां होर मजबूत करेगा और धरती निरीक्षण सेवावां की डिलीवरी में सुधार करेगा।
3: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट GSLV, मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला

0: सेंटर इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: यहां सिवाय खेती बाड़ी और आफत प्रबंधन वर्ग के खेतर में सहायता लिए असल समय दस्वीर भेजेगा। इसरो के चेयरमैन ने भी कहा कि मिशन भारत धरती निखा समृद्धा वन होर मजबूत करेगा। विज्ञान ते टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यूएस 05 लेके जाने वाले जीएसएलवीएफ 17 के सफल लॉन्च की शलाघा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि यूएस 05 भारत का पहला अत्याधुनिक धरती निरीक्षण और इमेजिंग उपग्रह है जो भू समकालिक पंध तो लॉन्च किया गया। इस दृश्यमान इंफ्रारेड मल्टी स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल माध्यम में तस्वीर खिंचन के समर्थ है। डॉ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरंदेश अगुवाई भारत दलार समृथाव लगातार नवी उचाई पहुंच रही ने जो कि एक विश्वव्यापी पुलाड़ शक्ति वजो भारत की स्थिति होर मजबूत कर रही ने। ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम नई दिल्ली विच शुरू हो गया जिस विच ब्रिक्स मैंबर देशों ते भाईवाल देशों दे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट दे मुखी ते सीनियर न्यायिक प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे। भारत दी सुप्रीम कोर्ट इस फोरम दी मेजबानी कर रही है। अज उद्घाटन दिन भारत दे चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत रूस चीन मिस्र इंडोनेशिया यूएई बेलारूस कजाकिस्तान दक्षिणी अफ्रीका ईरान और उज़्बेकिस्तान के न्यायिक वफदों के मुखियों नाल तवल्ली मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग आपसी न्यायिक हित के मामलों ते सीधी गलबात और विचार वटांदरे वजो काम करेंगे जदों की हिस्सा लेने वाली न्यायपालिका विच शमूलियत और सहयोग होर मजबूत करेंगे। एक तीन दिना फोरम हिस्सा लेने वाली न्यायपालिका न्याय प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय विवाद हल टेक्नोलॉजी और निरंतर रहने योग विकास न संबंधित समकाली मुद्दों ते चर्चा करने लई एक प्लेटफॉर्म वजो काम करदा है ते एक न्यायिक आगुआं विच विचार वटांदरे की सहूलत दिंदा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदाते जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और खुशियां नाल मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में खास तौर पर खुशियां मनाया जा रही ने। पंजाब में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी धूम है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: भगवान कृष्ण की श्रद्धा विच डुबे भगत खुशियां ते चावां नाल जन्माष्टमी मना रहे ने। जलंधर समेत पंजाब भर विच एक विशाल जश्न दियां तैयारियां चल रही ने। सूबे के सारे मंदिरां खास करके कृष्ण मंदिरां नूं फुलां ते होर सजावट नाल सोहनी तरह सजाया गया है। रंग बिरंगियां लाइटां भी लाईयां गईयां ने। वड्डी गिनती श्रद्धालु सवेर तों ही दर्शनां ते पूजा लई मंदिर च पहुंच रहे ने। शाम नूं झांकियां सजाईयां जाणगियां जिथे छोटे बच्चे श्री कृष्ण राधा रानी अते गोपियां ते सखा बन के उस समय दे दृश्य सजाउंदे ने। श्रद्धालुओं का चाह देखदा ही बन रहा है। राजेश बाली आकाशवाणी खबरां जलंधर।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर देशवासियों को निघियां शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान कृष्ण दीआं लीलावां ते संदेश भारतीय सभ्याचार ते दर्शन विच जीवंतता लियांदे ने। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन ते संदेश मनुखता नूं सच धर्म कर्तव्य ते सदाचार के मार्ग ते चलन लई प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण के संदेश जो मनुखता का निरंतर मार्गदर्शन करते हैं विच निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इस मौके सारे नूं शुभकामनावां दिंदिया एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कामना की कि हर घर विच खुशियां दा वास होवे। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਇੰਡਲੇ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਏਆਈਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀ ਜਲੰਧਰ। उपराष्ट्रपति और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्स ऑफिशियल चांसलर सी पी राधा कृष्णन आज पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के दौरे पर हैं। इस मौके पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रहे समारोह में श्री राधा कृष्णन पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और साबका केंद्रीय मंत्री मनीष तिवाड़ी के होर प्रतिनिधि भी शामिल ने। उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी टेक इनोवेशन फोरम का भी उद्घाटन करेंगे जो यूनिवर्सिटी के खोज खाद और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में एक वड्डा कदम है। नेपाल तिब्बत में चाय पियान अखड़ा कारण मरण वाले की गिनती बद के 1282 हो गई है। नेपाल पुलिस मुताबिक चितवन में सब तो वध 359 मौत हुई ने। इसके बाद 89 पूर्व 218 89 पश्चिम 208 नवाकोट 185 रसुआ 140 गोरखा 72 कादिंग 68 तनाऊ 38 मौत हुई ने। कठमांडू अस्पतालों पीड़ित

0: सच्चाई, फ़र्ज़ की अदायगी और नेक अमल अंजाम देने की तरगीब देती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के रूहानी पैगाम से बेलौस खिदमात की तरगीब मिलती है, जिसने हमें हमेशा इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक के लिए मध्य प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मुल्क के शिमाल मशरक़ी इलाके में भी शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और बिजली की सूरत हाल बदस्तूर जारी रहेगी। बलूच लिब्रेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के ज्यारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती दस्तों पर किए गए दो हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों हमलों में फौजी हमले के 25 अफराद हलाक और बहुत से अफराद जख्मी हो गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी के मस्तरूप और AS रस्मुसन की डेनमार्क की जोड़ी से मुकाबला करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-05 सेटेलाइट को कामयाबी के साथ दागने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के खलाई शोबे की बढ़ती हुई सलाहियतों का इजहार होता है। मरकज नेपाल में लापता अफराद के करीब तरीन रिश्तेदारों के लिए DNA की शनाख्त की खिदमत फराहम करेगा। तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,282 हो गई है। ब्रिक्स का चीफ जस्टिस फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जिसमें इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात को हल करने से मुतालिक दौरे हाजिर के मामलात पर बातचीत की जाएगी। आज पूरे मुल्क में भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. And in China Open Badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Danish pair in quarterfinals this evening. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite, from geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services.
2: I am very happy to announce that GSLV F-17 vehicle has successfully and precisely injected the Advanced Earth Observation Satellite 05, the geo-imaging satellite, in the intended and required orbit. And today, we have injected the heaviest satellite, 2,367 kg satellite, using this launch vehicle. Once the Earth Observation Satellite 05 is operationalized, it will become the India's first dedicated imaging satellite from the geo orbit, providing important strategic data for our country.
1: We have more from our correspondent.
3: The rocket lifted off from the second launch pad at 2:55 a.m.

0: are 8 rivers, including the Ganga, are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood-affected areas today. Sabita Parikh, Akashvani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sai Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
7: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव

0: जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा,

0: इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम है कि आपको भी हमारे इस कार्यक्रम एक ही कलाकार का इंतजार रहता है। तो अब इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और लेकर हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर। आज मैं हूं आपके साथ अरुणेश कुमार, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपने सुना जो एक गाना, और ये गाना दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था, और ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग फिल्म दीवाना से था। और आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं, और अगर नहीं समझे तो एक और गाना सुनाते हैं, और इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अंदाजा लगा ही चुके हैं, और इस गाने को सुनकर आपको एक बार और आपका जो अंदाजा है वो पक्का हो जाएगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं।

जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे कलाकार हैं दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर साहब। आज 4 सितंबर है और आज ही के दिन यानी उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और आज हम उनकी 74वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने बतौर अभिनेता 1973 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म बॉबी से अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की।

दोस्तों। और इसके बाद साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में ऋषि कपूर के अभिनय को लोगों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए काजल किरण, तारिक और जीनत अमान जैसे कलाकार। और बात करें अगर साल 1982 की, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई थी प्रेम रोग। इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे के अलावा शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा और राजा मुराद मुख्य किरदार में थे। और इस फिल्म में जो इसकी स्टोरी थी, जो कहानी थी, उसमें विधवा पुनर्विवाह मुख्य केंद्र बिंदु था। तो 1982 में उस तरह की बातें करना और हमारी इस फिल्म के माध्यम से समाज को संदेश देना एक बहुत बड़ा कदम था। और इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले आपको इसी फिल्म से सुनाते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक और अल्ताफ का मैसेज आया है। खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलोफर फातिमा का भी संदेश हमारे पास पहुंच चुका है और इन्होंने लिखा है कि अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में आप बेहद ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गीत सुनकर हमें बेहद आनंद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, भले ही ऋषि कपूर साहब ने डेब्यू किया हो फिल्म बॉबी से 1973 में, लेकिन दरअसल उनकी शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके अलावा अगर उनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं कर्ज, चांदनी, प्रेम रोग और सागर। ये सारी फिल्में उनकी यादगार रोमांटिक फिल्में थीं। इसके अलावा अगर उनकी विविध भूमिकाओं वाली फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अग्निपथ, मुल्क और शर्मा जी नमकीन जैसी फिल्मों में गंभीर और अलग-अलग किस्म के किरदार निभाए, जो दर्शकों को बेहद पसंद आए। और एक फिल्म आई थी दामिनी, इस फिल्म में उनके साथ थे ऋषि कपूर के साथ में थे सनी देओल, अमरीश पुरी, और इस फिल्म से भी ऋषि कपूर साहब को अच्छी खासी पहचान मिली थी और सनी देओल पाजी को भी इस फिल्म से काफ़ी अच्छी पहचान मिली थी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं इसी दामिनी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये बेहद प्यारा सा नगमा।

दोस्तों आपके मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज आया है और इन्होंने श्री जी कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही लिखा है कि ऋषि कपूर पर केंद्रित ये कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। तो जी आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश आया है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में ऋषि कपूर पर फिल्माए गाने आप सुनवा रहे हैं और ये गाने हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। ये संदेश आया है भवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम और जगदीश देवांगन का। इसके अलावा एक और मैसेज आया है जो कि आया है हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार का। और आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम की तारीफ की है तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बात अगर करें ऋषि कपूर साहब की तो ये अपने ज़माने में चॉकलेटी हीरो के रूप में बेहद लोकप्रिय रहे हैं। केवल 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी पहली झलक फिल्मी पर्दे पर दिखी थी। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता राज कपूर साहब के बचपन का किरदार निभाया था और अपनी अभिनय यात्रा में उन्होंने अधिकांश रोल रोमांटिक हीरो वाले किए, लेकिन कुछ हटकर किरदार भी निभाए, जैसे कि अग्निपथ फिल्म जिसमें उनके साथ में साथी कलाकार थे ऋतिक रोशन और भी लोग उस फिल्म में थे। और इसके अलावा एक फिल्म आई थी जिसका नाम है लैला मजनू, और इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने मजनू की भूमिका निभाई थी और इसे बेहद ही एक अलग पहचान मिली थी। अमर अकबर और अंथनी, इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। ऋषि कपूर की ये फिल्म आज भी लोग याद करते हैं और इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। 7 मई 1977 को रिलीज हुई इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने बेहद ही यादगार किरदार अकबर का निभाया था और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी नीतू कपूर। प्रेम रोग फिल्म की बात हम कर ही चुके हैं जिसमें उन्होंने देवधर नाम का किरदार निभाया था। इसके अलावा अपने लंबे फिल्मी सफर में ऋषि कपूर साहब ने एक फिल्म की थी लव आजकल, और इसमें उनके साथी कलाकार थे सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण, और इसमें वे बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में नजर आए थे। तो बात करें अगर अग्निपथ की तो पहली बार उन्होंने दमदार और जानदार शानदार किरदार, निगेटिव किरदार दरअसल निभाया था फिल्म अग्निपथ में, और उनके किरदार का नाम था राउफ लाला। और इसके अलावा 2013 में आई फिल्म डी डे जो मुंबई के माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित फिल्म थी और इसमें उन्होंने दाऊद का किरदार निभाया था। तो आप कह सकते हैं कि

0: कपूर एंड संस, इसमें उन्होंने 90 साल के दादाजी का रोल प्ले किया था और उनके किरदार का नाम था अमरजीत। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए थे सिद्धार्थ कपूर, आलिया भट्ट और फवाद खान। 102 नॉट आउट, इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे, जो कि 2018 में आई थी। और इस फिल्म में उन्होंने 75 साल के बेटे का रोल प्ले किया था, वहीं पर अमिताभ बच्चन ने उनके पिता का किरदार निभाया था, जिनकी उम्र होती है 102 साल। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ऋषि कपूर साहब ने अपनी फिल्मों के किरदार में कितनी विविधता रखी है, और यही दर्शकों को बेहद पसंद आई है। तो एक और सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी चांदनी, जिसमें उनके साथी कलाकार थी श्रीदेवी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं चांदनी फिल्म से श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
1: चांदनी

दोस्तों एक और संदेश आया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट और पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना का। इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। जी बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हुए हैं और हम सारे संदेश को शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, तो अगर कुछ संदेश शामिल ना हो पाए तो आप बिल्कुल ही नाराज मत होइएगा, हम अगले कार्यक्रम में आपके संदेश को जरूर लेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की और एक और गाना सुनते हैं। उनकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और ये काफ़ी डिस्को वाला सॉन्ग है।

दोस्तों, ऋषि कपूर साहब की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फिल्म आई थी मुल्क, जो कि साल 2018 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल अलग सा था। इसमें उन्होंने बनारस के वकील मुराद अली मोहम्मद का ऐसा रोल निभाया था जिसका भतीजा आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है। इस फिल्म में उनके साथ थे तापसी पन्नू और प्रतीक बब्बर। हम आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन वे अपने किरदारों, अपने अभिनय और अपनी फिल्मी दुनिया के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से अपने फैंस के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, फिर आपसे होगी किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात। तब तक सुनते रहिए हमारा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज।

दोस्तों आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

दोस्तों, साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से आप बालकृष्ण और माँ यशोदा के बीच के मासूम संवाद को दर्शाने वाला ये भक्तिमय गीत सुन रहे हैं। और इस गीत में मुख्य

अभिनेत्री जीनत अमान के बचपन का किरदार फिल्माया गया था, जिसे बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाया था। इस प्यारे से गीत के बोल पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखे थे और इसका संगीत दिया था सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज दी लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

दोस्तों, ये गीत जो आप सुन रहे हैं राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म गीत गाता चल से है। ये एक बेहद ही लोकप्रिय और आध्यात्मिक गीत है और इसके रचयिता संगीतकार और इस गीत के पीछे की मूल भावना महान संगीतकार रविंद्र जैन साहब की है और इस अमर गीत को अपनी सुरीली आवाज़ दी है जसपाल सिंह और आरती मुखर्जी ने, जो आज भी कृष्ण भक्तों और संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है और जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल इस गीत को सुना जाता है।

इस गीत के माध्यम से राधा और मीरा के सच्चे प्यार की परिभाषा को समझाया गया है और ये संदेश देता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी एक के नहीं हैं, बल्कि वे हर उस भक्त के हैं

जो उनसे सच्चा प्रेम करता है उन पर श्रद्धा रखता है। और ये गीत फिल्माया गया है बेहद ही ग्रामीण परिवेश में, बेहद ही सादगी और प्रेम के साथ। और पर्दे पर इसे आप सचिन और सारिका पर फिल्माया गया है, जो कि आप फिल्म गीत गाता चल में देख सकते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी के साथ। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस मौके पर हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत कुछ भक्ति गीत। और आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शागिर्द फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

आप जो ये गाना सुन रहे हैं ये 1967 में आई फिल्म शागिर्द से है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। और ये गीत पारंपरिक अर्थों में किसी पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, बल्कि एक भक्त की भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण और विनय की भावना को व्यक्त करता है।

इस गीत के बोल में एक साधारण भक्त की पुकार है जो अपनी कमियों और सीमाओं को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण के द्वार पर शरण मांगता है और भक्त स्वयं को भगवान की प्रिय राधा जैसी उच्च कोटि की प्रेमिका या भक्त नहीं मानते बल्कि वो कृष्ण के

प्रेम और उनकी कृपा की आस रखते हैं और भक्त भगवान से कहते हैं कि भले ही वह उन्हें विशेष स्थान ना दें, लेकिन उन्हें अपना एक मामूली सेवक समझ

दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं 1965 में आई हिंदी फिल्म खानदान का एक बेहद ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कृष्ण भजन। इसे आवाज़ दी है राजेंद्र कृष्ण साहब ने, इसे लिखा है और संगीत रवि जी ने दिया है, और अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने।

यह गाना द्वापर युग में भगवान कृष्ण के प्रति ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के असीम प्रेम और उनके इंतजार को दिखाता है। और इस भजन के अंत में

इस भजन में ये संदेश दिया गया है कि जब जब इस धरती पर संकट बढ़ता है तो भक्त अपने भगवान को पुकारते हैं और कहते हैं कि वे आएं और गीता में दिए अपने वचनों को पूरा करें। इस संकट में है आज वो धरती, पूरा कर दे आज वचन जो गीता में तूने दिया। फिल्म खानदान में ये एक परिस्थिति जन्य प्रेरणादायक भक्ति गीत है जो कि स्क्रीन पर आत्मा की

दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर भगवान भी हैं। उन्होंने गीता में कर्म का संदेश दिया है और कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन दर्शन हम सबको मानवता का संदेश देता है और गलत को स्वीकार नहीं करने की बात भी कहता है, सच्चाई के पथ पर चलने का संदेश देता है। और महाभारत में उनकी भूमिका को अगर हम देखें तो पाते हैं कि वे हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे। और अब अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा एक और भक्ति गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

ये बेहद ही लोकप्रिय गाना 1985 में आई हिंदी फिल्म संजोग का है और इसे लिखा है गीतकार अंजान साहब ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म में इस गाने को फिल्माया गया है फिल्म की मुख्य अभिनेत्री जया प्रदापर।

ये गाना दरअसल एक लोरी की तरह है जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है और उसका अधूरापन और उसकी ममता साफ झलकती है। इस गीत के बोल में यशोदा और उनके नंदलाला यानी कृष्ण कन्हैया के प्रेम का संदर्भ लेकर एक माँ क्या अपने लाल के प्रति असीम स्नेह को दर्शाया गया है। इस गाने में जो जू जू जू जू जू की धुन और ढोलक की थाप इसे वास्तविक और भावुक लोरी का रूप देती है जो सुलाने और जगाने के

दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है और ये हर साल मनाया जाता है। और बात करें अगर पौराणिक मान्यताओं की तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी तिथि को आधी रात को मथुरा के कारागार में माता देवकी और पिता वसुदेव के यहाँ हुआ था। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और रात 12 बजे भगवान के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल के प्रकट होने पर उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में दही हांडी प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं और कृष्ण भक्त अब घरों को और मंदिरों को भगवान के जन्म प्रसंग की सुंदर झांकियों के साथ सजाते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा भक्ति गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गीत 1972 की प्रसिद्ध फिल्म अमर प्रेम का एक बेहद ही भावुक और लोकप्रिय गाना है। इसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: अमर प्रेम इस फिल्म में जब ये गाना अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था तो उनके साथ बाल कलाकार के रूप में थे मास्टर नंटू, और कृष्ण और यशोदा के रूप में इस गाने के जरिए यशोदा मैया और बाल कृष्ण की नटखट लीलाओं को याद किया गया है। ये गीत इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक महिला एक बच्चे को देखकर भगवान कृष्ण के बाल रूप और उनके वात्सल्य प्रेम से जुड़ जाती है। ये गीत दरअसल ममता, पवित्र प्रेम और वात्सल्य रस का अनूठा संगम है। दोस्तों, इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, फिर किसी न किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए बेहद ख्याल। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, हम आज लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम इस प्रोग्राम में किसी ख़ास मौजू पर माहिरीन से उनके ख्यालात जानते हैं और उनसे मुस्तकबिल में होने वाले उसके असरात पर भी गुफ्तगू करते हैं। आज का प्रोग्राम एक ऐसे रिश्ते का नाम है जो सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक महदूद नहीं, बल्कि नस्लों की तामीर, किरदार की तशकील और मुआशरे के मुस्तकबिल की बुनियाद रखता है। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इल्म की फरावानी और मालूमात के शोर में उस्ताद का बदलता किरदार, रहनुमा, मुरब्बी या खुद एक तालिबे इल्म। जी हाँ, योम असाज़ा के मौके पर आज हमने अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया है। कल यानी 5 सितंबर को भारत के दूसरे सदर जमहूरिया और माहिर तालीम सर्वपल्ली राधा कृष्णन के योम पैदाइश के मौके पर योम असाज़ा मुल्क भर में मनाया जाता है। हम तमाम असाज़ा को योम असाज़ा की मुबारकबाद पेश करते हैं, और इसी मुनासबत से आज योम असाज़ा के मौके पर हम बात करेंगे उस्ताद के कि वो उस्ताद जो कभी तख्ती और चाक के साथ इल्म बांटता था, फिर किताब, ब्लैक बोर्ड और प्रोजेक्टर तक पहुंचा, और आज एक ऐसे अहद में खड़ा है जहां तालिब इल्म के हाथ में दुनिया भर की मालूमात चंद सेकंड में मौजूद है। गूगल है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन कोर्सेज है, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल लाइब्रेरियाँ हैं, और अब मस्नूई ज़हानत यानी AI भी मौजूद है, तो जो सवाल पूछने पर चंद लम्हों में जवाब फराहम कर देती है। तो फिर सवाल यह है कि मालूमात हर तरफ मौजूद हों तो उस्ताद की ज़रूरत क्यों बाकी है? क्या उस्ताद अब भी मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया है, या उसका किरदार बदलकर रहनुमा, मुरब्बी, मुशीर और एक ऐसा शख्स बन गया है जो ख़ुद भी हर रोज़ तालिबे इल्म रहने पर मजबूर है? इन्हीं सवालात के गिर्द आज का हमारा खसूसी मुबाहसा है। इल्म की फरावानी और मालूमात के शोर में उस्ताद का बदलता किरदार, रहनुमा, खुद एक तालिबे इल्म, और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन मुअज्जज़ मेहमान। मैं खुश आमदीद करता हूं प्रोफेसर काजिम साहब का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं और तदरीस व तहकीक के मैदान में एक मारूफ नाम है। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: बहुत शुक्रिया जी साहब।
1: हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नदीम अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यूरियमल कॉलेज। आप बराह रास्त तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर नदीम साहब, आपको भी योम असाज़ा के इस खसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद है।
3: शुक्रिया।
1: और हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद अखलाक, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जामिया मिल्लिया से हैं।

0: बेशक आपका सवाल बहुत मौजू है। मालूमात और इल्म में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली मालूमात का मतलब यह है कि शेयर इन्फॉर्मेशन,
1: जी
0: एक फैक्ट, एक सच्चाई। इल्म उस सच्चाई के अंदर रूह पैदा करती है, इल्म उस सच्चाई के अंदर हिकमत पैदा करती है, विजडम पैदा करती है।
1: जी
0: अगर उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इस पैमाने पर उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और तौलते हैं, तब जाके वो इल्म का शक्ल अख्तियार करती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया फ़र्क है इन्फॉर्मेशन में और इल्म में।
1: जी
0: अभी हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, उसमें जो मस्नूई ज़हानत की बात की गई है, इसमें इन्फॉर्मेशन का डिसिमिनेशन, इन्फॉर्मेशन की रीच जो
1: जी
0: है वो बहुत ज़्यादा है आज के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत के दौर में
1: जी
0: बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ उस्ताद अपने बच्चों को सिखा पाते हैं या बता पाते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को इल्म में कैसे आप तब्दील कर
1: तब्दील कर
0: सकते हैं,
1: सकते हैं।
0: कैसे आप उसमें हिकमत अमली इस्तेमाल करके उसको अपने काम के लिए मुफीद साबित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और सोसाइटी एज ए होल,
1: जी
0: इंसानियत के लिए वो कैसे बेहतरीन शक्ल में सामने खड़ी
1: ला
0: हो
1: सकते हैं
0: सकती है। तो
1: बिल्कुल।
0: ये एक नुमाया फ़र्क जो है वो आपको जो बहुत बड़े पैमाने पे दिखती है कि तालीम में और
1: इल्म में
0: इल्म में और इन्फॉर्मेशन में ये एक बड़ा फ़र्क जो है मेरी नज़र में, ये मुझे लगता
1: जी
0: है।
1: शुक्रिया।
0: जी
1: हमारा मौजू है कि इल्म की फरावानी और मालूमात के शोर में उस्ताद का बदलता किरदार, रहनुमा, मुरब्बी या ख़ुद एक तालिबे इल्म। तो अब हम शोर और इल्म के बुहरान पर भी आप हजरात से कुछ जानना चाहेंगे। सामईन कराम, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे मालूमात का दौर कहा जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि मालूमात बढ़ने के बावजूद दुरुस्त मालूमात की तलाश, झूठी खबर की पहचान और मोतबर इल्म तक रसाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो आइए डॉक्टर काजिम साहब से ये जानते हैं कि क्या आज का असल मसला इल्म की कमी नहीं बल्कि मालूमात की ज्यादती है, और क्या उस्ताद का काम अब मालूमात फराहम करने से ज़्यादा मालूमात में दुरुस्त, मोतबर और बामाने चीज़ का इंतखाब करना रह गया है?
2: बिल्कुल। आज का दौर जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और अब तो हवाओं में इन्फॉर्मेशन है,
0: जी
2: और उस इन्फॉर्मेशन में ये एआई ने भी ये जो किया है, एक जुल्म कह लीजिए जो उसके इस्तेमाल करने वाले हैं, कि एआई के जरिए बहुत सी फेक खबरें आपको फैला रहे हैं।
0: जी
2: तो अब उसमें तमीज कर पाना कि कौन सी सही खबर है और कौन सी फेक खबर है,
0: जी
2: ये मुश्किल अमर है।
0: जी
2: अब इस अमर में देखिए कि आप तो आवाज तक क्लोन हो रही है,
0: बिल्कुल
2: तस्वीर तो करते ही थे, अब आवाज भी क्लोन हो रही है।
0: जी
2: तो अब एक आदमी की आवाज में ही उसको सुनाया जा रहा है,
0: बिल्कुल
2: लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको वो हिंट्स देती है
0: देती है
2: कि ये
0: बिल्कुल
2: बनाया हुआ है।
0: जी
2: उस्ताद की जिम्मेदारी फिर ये बढ़ जाती है कि आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, अब आज देख लीजिए कि इतने सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं,
0: जी
2: सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं,
0: बिल्कुल
2: इंफॉर्मेशन तो पूरी है उसमें। अब हर आदमी, पहले जो कम चीजें थी तो हमारे पास करने के लिए ज्यादा वक्त थे,
0: बिल्कुल
2: अब इतना है कि हमारे पास वक्त नहीं है
0: वक्त नहीं
2: कि
0: है।
2: क्या सुने क्या ना सुने, क्या देखें क्या ना देखें।
0: जी
2: ये तमीज कर पाना बहुत जरूरी है। क्या देखना अगर छोड़ भी दें, मैं तो अपनी जिंदगी में जो फलसफा अपनाता हूं कि क्या नहीं देखना है ये जरूर तय कर
0: बिल्कुल
2: लें,
0: ये जरूरी
2: जिंदगी
0: है
2: में क्या नहीं करना है
0: जी
2: ये जरूर तय कर लें, तो नहीं करने का ऑप्शन कम हो जाएगा, करने का ऑप्शन बढ़ जाएगा आपका।
0: जी बिल्कुल
2: लेकिन जनरली हम लोग तय ये करते हैं कि क्या करना है। इंफॉर्मेशन का ज्यादा होना और इन्फॉर्मेशन के जराए का ज्यादा होना, इन्फॉर्मेशन तो वही है उसको पेश करने का तरीका अलग है,
0: जी
2: तो इन्फॉर्मेशन के जराए का ज्यादा होना हमारे लिए ज्यादा परेशानी का बायस है।
0: बिल्कुल
2: और
0: सही कहा
2: वहां पर
0: गया।
2: उस्ताद जो है, फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो जिम्मेदारी बढ़ती है कि उस्ताद अब सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ये नहीं है, असल
0: जी
2: तरबियत है, असल तहजीब है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं कि
0: बिल्कुल
2: हम चीजों को लें और कैसे बात करें, कैसे
0: जी
2: पहुंचाएं, हम उस तहजीब में कैसे डालें। जैसे हमारी जबान भी, जबान तहजीब का नाम है,
0: जी
2: कि नशिश्तो बर्खास्त का नाम है,
0: बिल्कुल
2: गुफ्तगू का नाम है,
0: जी
2: और उस गुफ्तगू में कब कौन सी बात किस जबान में कहनी है, किस लहजे में कहनी है। हम आमतौर पर घरों में भी जब बात करते हैं तो अपने वालिद से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं,
0: बिल्कुल
2: अपने बड़े भाई से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं, अपनी माँ से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं, अपने दोस्तों से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं, और उनकी लफ्जियात मुख्तलिफ होती है।
0: जी
2: उसको कैटेगराइज हमें कर लेना चाहिए
0: बिल्कुल
2: कि कौन कैसी बात कह रहा है, और वो कैटेगराइज करने में उस्ताद मदद करते हैं। इसलिए उस्ताद को 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा।

0: आपने। अब मैं डॉक्टर नदीम साहब की तरफ रुख करता हूँ। आज सोशल मीडिया ने तालिब इल्म को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी है बल्कि राय बनाने का एक तेज़ रफ्तार मशीन भी फराहम कर दिया है। तो एक तालिब इल्म किसी मौजू पर 5 मिनट की वीडियो देखता है और ख़ुद को माहिर समझने लगता है। तो जनाब ये बताएं कि उस्ताद तालिब इल्म में तहकीक और सवाल करने या तनकीदी फ़िक्र की आदत को कैसे बेदार कर सकता है या पैदा कर सकता है?
1: देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और तरबियत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मवाद इस कदर ज़्यादा है कि वो खुद ही इस पशुपेश में है कि क्या सही है और क्या गलत है। और कभी कभी तो असातिज़ा भी इसी पशुपेश में पड़ जाते हैं, उनको भी आजकल इतने ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं कि उन्हें तलाश करनी पड़ती है क्या ये मुस्तनद है या नहीं है। अक्सर मेरे सामने इस तरह के मामले आते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि बच्चे कुछ भी, जैसे मैं सवाल उन्हें देता हूँ या असाइनमेंट देता हूँ, तो उसके जवाब वो लेकर आते हैं जिसका रेलिवेंस ही नहीं होता, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता सवाल के साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब मैं उनसे पता करता हूँ कि ये सोर्सेज आपने कहाँ से लिए, तो वो बताते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं। और अभी भी यानी इतना खुलापन, या इतनी सारी जगहों से चीज़ों को उठाने के बाद मस्नूई ज़हानत के ज़रिए या दीगर इंटरनेट पर मौजूद मवाद को उठाते हुए वो हिचकिचाते हैं ये बताते हुए कि हमने ये सब चीज़ें वहाँ से ली हैं। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो, किताब से अगर पढ़ोगे तो जहन नशीन होगा और करके सीखने में ही फ़ायदा है।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, करके सीखना और फिर उसे करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी इस तरीके से काम करेगा वो एक अच्छा उस्ताद भी बनेगा, अच्छा तालिब इल्म भी बनेगा और सोसाइटी को भी कुछ बेहतर देगा।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही कहा।
1: जहाँ तक बात हो रही है कि नॉलेज क्या है और इल्म क्या है, तो इनमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। देखिए, नॉलेज जो होती है वो इधर उधर से हासिल हो जाती है। नॉलेज का मतलब है जानकारी
0: बिल्कुल।
1: या मालूमात। मालूमात कोई भी दे सकता है और उसके पास वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन इल्म तो मेहनत, मशक्क़त, तजुर्बा, मुशाहिदा, लिख कर, पढ़ कर, बोल कर और उसकी तलाश में सरगर्दा होकर
0: बिल्कुल।
1: हासिल किया जाता है। इल्म बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, मालूमात तो यूं ही मिल जाती है, और आजकल तो मालूमात का ढेर है मार्केट के अंदर। ये मालूमात जो है, ये बच्चों को उनके कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ या दूसरी सिमतों में लगा रही है। वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, ये भी
0: बिल्कुल
1: देखता है, वो भी देखता है, लेकिन किसी एक चीज़ पर वो खास
0: बिल्कुल
1: पकड़ नहीं बना पाता।
0: सही कहा
1: हमें
0: मैं।
1: क्लास रूम टीचिंग के अंदर, कमराए जमात के अंदर जब हम पढ़ाएं बच्चों को, तो इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा जहन और तवज्जो मरकूज होनी चाहिए कि हम बच्चे को यहाँ पर क्या सिखाएं और कैसे सिखाएं, और
0: बिल्कुल
1: फिर इसका अमली तौर पर वो क्या असर कबूल करता है। और फिर
0: यही
1: जब
0: देखने वाली
1: खुद
0: बात होती है।
1: तैयार होता है, यानी जब वो खुद आगे को चलकर उस्ताद बने या एडमिनिस्ट्रेटर बने
0: जी जी
1: या
0: बिल्कुल
1: मुलाजमत के पेशे में जाए या दुकान लेकर बैठे, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है या पेश कर पाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही फरमाया आपने। सामईन कराम, हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे पास जो मेहमान आयान कराम हैं उसमें जो प्रोफेसर काजिम साहब हैं वो मेरे और डॉक्टर नदीम साहब के उस्ताद हैं, और खालिद अखलाक साहब भी हमारी उम्र के ही हैं। तो यानी यहाँ पे दो नस्ल के उस्ताद बैठे हुए हैं, एक हमारी और एक हमारे उस्ताद भी बैठे हुए हैं। और मैं ये यकीन करता हूँ कि ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और आप इससे महसूस भी हो रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे। तो खालिद साहब, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं जनाब, के आज तलबा के सामने मालूमात के हज़ारों दरवाजे हैं, मगर मसला ये है कि वो किस दरवाजे से दाखिल हों और किस रास्ते पर एतमाद करें। आप ये बताएं कि क्या आने वाले वक्त में उस्ताद का सबसे अहम किरदार इल्म देने वाले से ज़्यादा इल्म तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाले का होगा?
2: जहाँ तक उस्ताद के किरदार का सवाल है, ये एक उस्ताद के लिए भी एक चैलेंज है कि उन मालूमात को एक्सप्लोर करें और उसको वेरीफाई करें।
0: जी
2: तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के बजाय इन्फॉर्मेशन वेरीफायर।
0: जी
2: तो अगर हम इन्फॉर्मेशन तलबा को, बजाय इसके कि वो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम
0: बिल्कुल
2: इस चीज़ के लिए उनको माइल करें कि वो इन्फॉर्मेशन को
0: वेरीफाई
2: वेरीफाई कर सकें,
0: बिल्कुल
2: तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया कारनामा होगा उस्ताद की तरफ से।
0: जी।
2: और
0: और जाहिर सी बात है, वेरीफाई करने के लिए उस्ताद के पास ही आना
2: उस्ताद के
0: होगा।
2: पास ही आना
0: जी
2: होगा। दूसरी बात यह है कि अब से पहले
0: जी
2: कुछ हद तक क्लासरूम में जो उस्ताद पढ़ाते थे वो वन वे कम्युनिकेशन से काम
0: जी
2: चल जाता था,
0: बिल्कुल
2: लेकिन अब दौर जो है वो बाहमी मुज़ाकरात का है। वन
0: बिल्कुल
2: वे
0: है,
2: कम्युनिकेशन से आप क्लास में उस्ताद जो है वो नहीं पढ़ा
0: नहीं
2: सकते,
0: पढ़ा सकते।
2: अब उनको अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा,
0: जी
2: अपने स्टूडेंट्स को उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करनी होगी कि वो सवाल करें।
0: बिल्कुल
2: और कोई भी सोसाइटी, कोई भी तहजीब उस वक्त तक कामयाबी के राह पे नहीं चल पाएगी या तरक्की नहीं कर पाएगी
0: जी
2: जब तक वो सवाल करना
0: नहीं सीखते।
2: नहीं सीखे।
0: बिल्कुल सही
2: तो
0: कहा।
2: जब वो सवाल करेंगे तो नई सोच, नई बेदारी

0: उसमें पैदा होती है। तो यहाँ पे उस्ताद का रोल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: दूसरी बात, अब इन सब चीज़ों के लिए उस्ताद को भी तो अपडेट होना
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा,
1: बिल्कुल होना पड़ेगा
0: तो उस्ताद के लिए भी ये ज़रूरी है कि आज के जो तकाजे हैं
1: जी।
0: उन तकाजों के बुनियाद पे अपने आप को वो अपडेट करे और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक दोस्त, एक फिलोसफर, एक गाइड की तरह
1: उनके साथ रहे हैं।
0: उनके साथ

0: जी एंड द ग्रेट टीचर्स इंस्पायर्स. इस दौर में मसनूई ज़हानत के दौर में टीचर का रोल जो है वो ग्रेट टीचर फ्रॉम मीडियोकर टू ग्रेट टीचर वो तब्दील होता जा रहा है.
1: बिल्कुल सही.
0: हम अपने स्टूडेंट्स में खुद एतमादी पैदा करें, हम उनको मोटिवेट करें, हम उनको सीखने समझने की उनमें सलाहियत को पैदा करें ताकि जो भी मालूमात उनके पास आ रही हैं उनको यूज़ करके उनको इस्तेमाल करके वो एक अच्छी समाज की तश्कील दे सके. क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि नदीम सर ने भी कहा कि भाई इल्म का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ से है, हम इल्म क्यों हासिल करना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा मुआशरा जो है तालीम याफ्ता हो.
1: बिल्कुल.
0: तो उसका जो बुनियादी किरदार है वो ये है कि हम समाज में बेहतरी पैदा कर सकें.
1: अगर मसनूई ज़हानत और तालीम की बात ना करें तो शायद हमारी गुफ्तगू बेमाना हो जाएगी, क्योंकि इस मौजू पर पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है. AI के इब्तदाई मराहिल में भी आज तालिबे इल्म मज़मून लिखवाने, तर्जुमा करने, खुलासा बनाने, सवाल हल करने, प्रेजेंटेशन तैयार करने, हत्ता के तहकीक में भी AI का इस्तेमाल कर रहा है. तो सवाल यह है कि AI उस्ताद का हरीफ है या मुआविन. तो मैं आपसे ही खालिद साहब ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप तकनीकी तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, क्या AI मुस्तकबिल में क्लास रूम को बुनियादी तौर पर तब्दील करने वाला है या नहीं?
0: देखिए, किसी भी कोई भी जब भी कोई तकनीक कोई नई चीज़ आती है तो उसके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान आते हैं. तो AI के शक्ल में भी जो हमारे पास चीज़ आई है या जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अपने फ़ायदे और कुछ नुकसान आते हैं.
1: तो उससे हमें बचने की ज़रूरत है या उसके साथ चलने की ज़रूरत है?
0: उससे हमें बिल्कुल बचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा ये अप्रोच होना चाहिए, हमारी ये सोच होनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम AI को अपना हरीफ समझें, हम उसे एक बेहतरीन दोस्त की शक्ल में अपनाएं.
1: बिल्कुल. डॉक्टर नदीम साहब, अगर एक तालिब इल्म AI से अपना मज़मून लिखवा रहा है, सवाल का जवाब हासिल कर रहा है या असाइनमेंट तैयार करवा रहा है, तो उस्ताद के सामने ये एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे जांचे कि तालिब इल्म ने वाकई सीखा है या सिर्फ AI से काम लिया है. क्या इसके लिए इम्तिहान और असाइनमेंट के मौजूदा तरीक़ाकार को बदलने की ज़रूरत है?
2: जी हाँ, ज़रूरत है. दरअसल तालीम देने का हमारा मकसद क्या है कि जो हमारे तलबा हैं उनको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करना, और यही प्रैग्मेटिज्म में बोला है. और जॉन डी भी तो हमेशा इसकी वकालत करता रहे और बताते रहे कि तालीम ज़िंदगी नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने की एक तैयारी का नाम है.
1: जी.
2: तो अगर हमारे तलबा वहाँ से इस तरह का मवाद कुछ उठा लेते हैं और वक्ती तौर पर, जैसा कि अभी मैंने इससे पिछले सेगमेंट में भी बोला कि हमारा काम क्या है, हमारा काम ये होना चाहिए एक उस्ताद का कि हम अच्छे तालिबे इल्म तैयार करें, ऐसे तालिबे इल्म जो समाज में जाकर अपने आप को ये साबित कर सकें कि वो अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हैं, ना कि सिर्फ जानकारियां या मालूमात को लेकर आए हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है. देखिए, मैं तो अपने क्लासरूम टीचिंग के अंदर, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, और मेरा ताल्लुक तो CI से भी रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो जहाँ तक मैंने सीखा और मैंने समझा और फिर मैंने उससे अमल भी किया उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो वो ये देखा है मैंने, हमें प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. बच्चा क्या सीखा, उसने बच्चे ने क्या सीखा और उसे वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है, इस पर बहुत ज़्यादा हमारा जोर होना चाहिए.
1: बिल्कुल.
2: तो अगर हम इस जानिब ज़्यादा जोर देंगे और हमारी तवज्जो रहेगी तो यकीनन हम इस तरह के फैसले लेने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है.
1: शुक्रिया प्रोफेसर काजिम साहब. AI चंद सेकंड में एक मज़मून तैयार कर सकता है, लेकिन क्या वो तजुर्बा, एहसास, इंसानी ताल्लुक, अखलाकी बसीरत और ज़िंदगी की मानवियत भी सिखा सकता है? क्या यही वो मकाम है जहाँ उस्ताद की इंसानी हैसियत मज़ीद अहम हो जाती है?
3: शनावत साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है. मशीन मशीन है, मशीन के पास हिस नहीं है.
1: बिल्कुल.
3: उसके पास, आप कह लीजिए, दिमाग तो है
1: जी,
3: लेकिन महसूसात नहीं है उसके पास
1: जी.
3: और अगर हिस नहीं है तो इन्फॉर्मेशन को एक तरह से बेजान तौर पर पेश करता है, वो उसमें जान नहीं डाल सकता है
1: जी.
3: जिस तरह के इन्फॉर्मेशन आप देंगे, पहले तो आपके पास होने चाहिए उसको इस्तेमाल करने का. जैसे हर चीज़ के कि एक कोई भी चीज़ आपके हाथ में है उसको कैसे इस्तेमाल करें. मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं जानते हैं तो कोई भी किसी भी नाम का किसी भी इसका मोबाइल आप ले लीजिए, हम लोग जैसे आदमी वही फ़ोन करेंगे या व्हाट्सअप देख लेंगे या कुछ और ये कर लेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल इस्तेमाल हमें नहीं मालूम है. तो वो कितना महंगा हम खरीद लें, बेकार है, वही चीज़ है, सस्ता हो या महंगा. उसी तरह से जितनी मसनूई ज़हानत की चीज़ें हैं, जितनी वेबसाइट्स हमारे पास हैं, आपके पास

0: बस कितना इल्म है उसको इस्तेमाल करने के लिए,
1: जी
0: आप उसको क्या फीड कर रहे हैं,
1: जी
0: तो उस तरह से ही वो देगा। तो इसलिए उस्ताद जो है, उस्ताद की जिम्मेदारी बड़ी है और उस्ताद की कमी हमेशा रहेगी और उस्ताद की जरूरत हमेशा रहेगी। और उस्ताद जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो दर्स दिया था, हम उनकी याद में एक तरह से उनको याद कर रहे हैं, और अभी 5 तारीख को उनके उनके हवाले से मतलब हम सब लोग यौम असातिज़ा मनाते हैं, तो वो उस्ताद, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो उसूल दिए थे, जो दर्स दिए थे, वो उस जमाने में AI नहीं था, उस जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन क्या वो बेमानी हो गए हैं आज?
1: नहीं,
0: आज ज्यादा मानवीयत है उसकी, आज वो ज्यादा जरूरत है हमें उन उसूलों की, उन तदरीस के तरीकों की। ठीक है, AI बोर्ड आ गया आपके पास, लेकिन उसको जब फीड करेंगे, उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं आएगा, तो कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे? तो जितनी वो है कि जैसे किताबें हैं, वो पुराने उसूल हैं, पुराने लोग हैं और पुराने असातिज़ा हैं, उनके सारे उसूल आज भी ज्यादा मीनिंगफुल हैं। यानी जब आप बेरारवी के शिकार होते हैं, तब तहजीब की ज्यादा जरूरत पेश आती है।
2: शुक्रिया आपका। चूंकि वक्त इजाज़त नहीं देता, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे, बहुत सारे सवालात हमारे सामईन के जहन में भी बने होंगे, उभरे होंगे, उनके जवाबात हम नहीं दे पाए। चलिए, हम आपसे वादा करते हैं सामईन इकराम कि अगले प्रोग्राम में हम आपके उन सवालों के भी जवाब देंगे जिनके लिए आप हमें लिखते हैं, जिनके लिए हमें पूछते हैं कि हम अपने माहिरीन से उन सवालों के जवाब आप तक पहुँचाएँ, तो उसकी हम भरपाई करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन अब चलते चलते चाहते हैं कि अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम से एक आखिर में कि आज के दौर में आप तालिबे इल्म को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
1: आखिर में मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि AI एजुकेशन के दौर में एक रिवोल्यूशनरी काम कर रहा है
2: जी,
1: तो इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं
2: जी।
1: तो जो भी स्टूडेंट इसको यूज़ करके, जो भी तालिबे इल्म इसको इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, वो एक उस्ताद चुनें जो उनको उस इंफॉर्मेशन में तमीज़ करना सिखाए कि क्या ये सही है या
2: गलत
1: ये
2: है।
1: गलत है।
2: शुक्रिया आपका।
1: और इसके साथ ही हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन वो यूज़ कर रहे हैं वो इथिकली वैलिड हो, इखलाकियात के बुनियाद पे वो सही हो।
2: जी शुक्रिया। नदीम साहब, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे?
3: तलबा को भी सीखना चाहिए
2: जी,
3: और सही और गलत की तमीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा असातिज़ा का भी ये फ़र्ज़ है कि वो तकनीक के साथ और ज़माने के साथ आगे बढ़ें और उन सब चीज़ों को सीखें। आम तौर पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक असातिज़ा हैं हमारे, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं या उन्हें वो चला नहीं पाते हैं, तो उन्हें ख़ुद को भी तैयार रखना चाहिए। और टीचर का तो काम ही है कि उससे वक्तन फवक्तन अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा उस्ताद बन सकता है।
2: जी बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर काजिम साहब, आप उस्ताद के उस्ताद हैं और आपने वो ज़माना भी देखा है जिन असाज़ा के बारे में बात की जाती है, जिन असाज़ा के नक्शे कदम पर लोग चलना चाहते हैं, आप भी उनके मिसाल देते हैं, आपने उनको देखा है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: तो मेरा तो यही मशवरा है कि हम असातिज़ा को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और तालिबे इल्म को, हर तालिबे इल्म की अपनी ज़रूरत है, तो उसकी मुनासबत से पूरी क्लास 80 की है तो या 50 की है, सबको एक ना दें बल्कि आइडेंटिफाई करें। और अब तो ग्रुप एजुकेशन पर भी ये किया गया है, क्लास में भी मॉनिटर के तौर पर 10-10 बच्चों के ग्रुप बना करके उस्ताद, एक एक उस्ताद को दिया गया है कि ये 10 बच्चों की तरबियत आप करेंगे, तो उन 10 में आप आइडेंटिफाई करें, 2 ग्रुप हो जाएगा, 3 ग्रुप हो जाएगा, उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनकी तरबियत करें, उनको सब बता दें कि ये चीज़ें आपके काम की है, ये आपके काम की नहीं है, या यही पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वो ज़रूर इससे हमारी नस्ल जो आगे बढ़ेगी, नस्ल आगे बढ़ेगी न तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारी कौम आगे बढ़ेगी और हम तरह मुल्क दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में जल्द से जल्द शामिल हो जाएंगे।
2: जी शुक्रिया आपका। तो सामईन इकराम, आज की गुफ्तगू से शायद एक बात पूरी तरह वाज़ह हो जाती है कि मालूमात उस्ताद को ख़त्म नहीं करती बल्कि उस्ताद के किरदार को तब्दील करती है। कल उस्ताद मालूमात का अमीन था, आज उस्ताद मालूमात का मुंतखब कुनंदा है। कल वो जवाब देता था, आज वो सवाल करना सिखाता है। कल वो किताब पढ़ाता था, आज वो तालिबे इल्म को ये सिखाता है कि किताब, इंटरनेट और मस्नूई ज़हानत के बेशुमार जवाबों में से दुरुस्त जवाब कैसे तलाश किया जाए। और शायद मुस्तकबिल का सबसे अच्छा उस्ताद वो होगा जो ये कहने में शर्मिंदगी महसूस ना करे कि मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद का अजीम होना इस बात में नहीं कि वो सब कुछ जानता है बल्कि इसमें है कि वो सीखने का शौक भी नहीं छोड़ता। AI मालूमात दे सकती है लेकिन उस्ताद सवाल को सिमत दे सकता है, इंटरनेट जवाब दे सकता है लेकिन उस्ताद जवाब کوئی مانویت سمجھا سکتا ہے۔ مشین

0: लिख सकती है, लेकिन उस्ताद तालिबे इल्म के अंदर सोचने, महसूस करने और इंसान बनने की सलाहियत पैदा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि टेक्नोलॉजी के इस बढ़ रफ्तार ज़माने में भी उस्ताद की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसकी ज़िम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे मोज़ज़ मेहमान आने कराम जनाब डॉक्टर खालिद अख़लाक साहब, डॉक्टर नदीम साहब और प्रोफेसर काजिम साहब, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मुबाहसे में आए और इसमें शरीक हुए और इतनी मालूमात बातें की। इसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की तर्तीब व पेशकश इंतज़ार सैफ़ी की थी। तो सामईन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मौजूआत और मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
1: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों की मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
4: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा हुई। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगा और बरमूडा, इजराइल और

और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, इनमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की किम स्टुअर्ट और एंडर्स स्कारूप रमसेन से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Krishna is being observed across the country with religious fervor today. On the occasion, devotees observe fast, perform ceremonies, and visit temples. Sweets and other foods associated with Krishna are prepared and offered to Lord Krishna. Devotional songs and chanting is performed through the day and often late into the night. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. And at the China Masters Badminton, the Indian pair of Sathvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 4:10 और 12 सेकंड हो चुके हैं। समय है गुमशुदगी से जुड़ी सूचना का। पहली सूचना है आरती के पिता ज्योति प्रसाद, जो ग्राम दरगाहपुर शामली की रहने वाली हैं। अंतिम बार इन्हें 9 जुलाई 2026 के दिन सुबह 4 बजे देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ये महिला हैं और उम्र इनकी 19 वर्ष है। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप थाना झंझाना शामली में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना कुमारी प्रियांजलि की है, जो 22 मई 2026 से ग्राम जमालपुर से लापता हैं। ये ग्राम रजाक नगर थाना झंझाना शामली की रहने वाली हैं। इनकी उम्र तकरीबन 16 वर्ष है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर आप थाना झंझाना शामली में इत्तला कर सकते हैं। लापता व्यक्तियों में अगला जो नाम है वो है रामबीर, सन ऑफ पिता सोहन बीरा का है। ये गांव सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, जो 16 जुलाई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। ये पुरुष हैं, उम्र इनकी 45 वर्ष है। इनसे संबंधित सूचना के लिए आप थाना झंझाना जनपद शामली में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना जिस लापता महिला की है, उनका नाम विनीता है, जो डॉटर ऑफ सुरेश मंडल हैं। ये न्यू पालम विहार गुरुग्राम की रहने वाली हैं। इन्हें अंतिम बार पालम विहार में ही देखा गया था। ये 29 मार्च 2026 से लापता हैं। इनसे संबंधित विवरण इस प्रकार है। इनकी उम्र 14 वर्ष, इनका कद 4 फीट 3 इंच, शरीर इनका पतला है, रंग गोरा है, चेहरा लंबा है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप थाना बजघेड़ा गुरुग्राम में संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदगी में जो अगली सूचना है वो है निधि की, जो वाइफ ऑफ सूरज हैं। इन्हें आखिर बार A59 सरदारपुरी रमेश नगर दिल्ली में 25 मार्च 2026 को दोपहर 2:25 में देखा गया था। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। इनकी उम्र 18 वर्ष है, ये महिला हैं और इनका कद 5 फीट 2 इंच है। शरीर इनका पतला है, रंग गोरा है। इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप थाना कीर्ति नगर नई दिल्ली में संपर्क साध सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों में अगला नाम चंदन कुमार का है, जो स्वर्गीय श्री राम नंदन यादव के पुत्र हैं। ये ग्राम हासनचक पोस्ट बदरावा जिला पटना बिहार के मूल निवासी हैं। इन्हें अंतिम बार सुबह 9 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखा गया था। इनके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है। ये 35 वर्षीय पुरुष हैं, रंग इनका सांवला है। इनकी ऊंचाई 6 फीट है और इनके सीधे हाथ की उंगली में जले का निशान है। ये मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ भी हैं। इनके बारे में सूचना देने वाले को 10,000 नकद इनाम भी दिया जाएगा। इनसे संबंधित सूचना के लिए थाना नई दिल्ली में आप संपर्क

कर सकते हैं। अंतिम सूचना गुमशुदगी की जो है वो एक मृतक व्यक्ति की है जिनका नाम अज्ञात है। ये नारायणा विहार दिल्ली के पास C-52 में देखे गए थे। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है, इनकी उम्र लगभग 35 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, शरीर सामान्य रंग गेहुआ, बाल काले व मध्यम लंबाई के, मूछ व दाढ़ी काले रंग के। इनके बाएं हाथ में हार्ट का टैटू बना हुआ है जिसमें एरो का निशान है और अंदर आनंद और रेणु लिखा हुआ है। अज्ञात अवस्था में ये मृत पाए गए हैं। इनसे संबंधित सूचनार्थ आप थाना नारायणा नई दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ गुमशुदगी की सूचना समाप्त होती है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब समय है युवा श्रोता साथियों के कार्यक्रम युव वाणी का।

0: एक नन्हा सा कान्हा, हाथ में माखन, आंखों में शरारत और चेहरे पर वो मुस्कान, जिसने बचपन कुछ ऐसा जिया कि सदियां बीत गई, पर आज भी भारत की हर माँ अपने बेटे को प्यार से कान्हा कह देती है।
1: जिसने युवा अवस्था में इतना रास रचाया कि आज भी प्रेमियों के लिए जुबान से निकलता है, देखो तो उसे बड़ा कन्हैया बना फिरता है।
0: जिसने युद्ध में मार्गदर्शन दिया तो ऐसा कि 5 निर्वासित भाइयों को एक विशाल सेना के सामने विजय तक पहुंचाया।
1: जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा, जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं।
0: तो आप समझ ही गए होंगे ये पंक्तियां किसकी ओर इशारा कर रही हैं।
1: जी बिल्कुल, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके जीवन को, उनके आदर्शों को और उनके ज्ञान को, जिसकी शरारतों में प्रेम था और जिसकी बांसुरी में पूरा संसार बसता था।
0: पता नहीं उनकी बांसुरी के सुरों में ऐसी क्या बात है। कृष्णा का नाम ना भी लिया जाए, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर आंखों के सामने आ ही जाती है। और शायद इसीलिए कृष्णा सिर्फ हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, कविता हो या सिनेमा, भारतीय कला के हर रूप में कृष्णा हमें किसी ना किसी अंदाज में मिल ही जाते हैं।
1: और इससे बेहतर शुरुआत आज के दिन की हो भी कैसे सकती थी। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:17।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का युववाणी में, आकाशवाणी इंद्रप्रेस के इस खास युवा मंच पर। मैं हूं अनुषा
1: और मैं हूं दीपांशा। आज का सफर थोड़ा और खास है क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्मोत्सव।
0: और अगले कुछ पलों में हम कृष्णा को सिर्फ एक धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि कहानी, कविता, संगीत, कला और हमारी कल्चरल मेमोरी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे।
1: और जो कि आज है कृष्ण जन्माष्टमी और साथ ही साथ फ्राइडे, मतलब बॉलीवुड स्पेशल। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आज की बात शो के फर्स्ट सेगमेंट में लौटेंगे बचपन के उस कृष्णा की तरफ, जिसे हम कहानियों और टेलीविजन पर देखकर बड़े हुए।
0: चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की शो की फ्रॉम द फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम,
1: लता जी की आवाज में यशोमती मैया से।

0: वेलकम बैक दोस्तों। दीपांशा, जन्माष्टमी की बात होती ही मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज़ याद आ जाती है, वो है बचपन।
1: एंड वाई सो?
0: घर में छोटी छोटी झांकियाँ, कृष्णा जी के नन्हे पैर बनाना, मटकी, मोर पंख और टेलीविज़न पर कृष्णा की कहानियाँ देखना। तुम्हारी कोई ऐसी मेमोरी है?
1: इस सवाल का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता था, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड रहती थी कि उससे एक रात पहले खुशी से मुझे नींद ही नहीं आती थी। और बचपन से याद आया, साल 2008 में एक डेली सोप आता था, जय श्री कृष्णा, जिसमें कृष्ण जी का बाल रूप अदा करने वाली धृति भाटिया, उनका वो मुख आज भी आंखों के आगे आ जाता है, वो चंचलता, मासूमियत, उफ, दैट्स रियली नॉस्टैल्जिक। और उसका एक डायलॉग आज भी मेरे जहन में है, मैया मैंने माखन नहीं खाया मैया।
0: क्या बात है दीपांशा। और मेरी जनरेशन के बहुत सारे लोगों के लिए लिटिल कृष्णा भी चाइल्डहुड मेमोरी का हिस्सा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, माइथोलॉजी हमें बचपन में फिलॉसफी की तरह नहीं मिलती, पहले वो हमें कहानी बनकर मिलती है। माखन चुराने वाले कृष्णा, कालिया नाग पर नृत्य करने वाले कृष्णा, सुदामा के दोस्त कृष्णा, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसी कैरेक्टर के बिल्कुल नए लेयर्स हमें समझ आने लगते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। बचपन में कृष्णा की शरारतें याद रहती हैं और बड़े होकर उनकी बातें, जैसे उनकी बाल लीलाएं, ये सिखाती हैं कि सफलता सिर्फ अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ आगे चलने में है। और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण अपनी शरारतों से हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में अनुशासन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आनंद भी। जीवन से आनंद गायब हो जाए तो फिर वो जीवन कैसा?
0: और मुझे कृष्णा के कैरेक्टर की यही बात सबसे फैसिनेटिंग लगती है। एक ही पर्सनालिटी को देखिए, कहीं वो बचपन की मासूमियत है, कहीं मित्रता, कहीं प्रेम, कहीं डिप्लोमेसी, और कहीं भगवद्गीता में जीवन के सबसे मुश्किल सवालों पर बात करते हुए। और दोस्तों, आज का सवाल

0: आपसे भी। अगर कृष्णा की कहानी से आपको सिर्फ एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर चलनी हो, मित्रता, साहस, प्रेम, कर्म या उनकी मुस्कुराहट, तो आप क्या चुनेंगे? सोचिएगा ज़रूर।
1: और इसी बचपन और कृष्णा की चंचलता को थोड़ा और महसूस करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।
2: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: और अब वक्त है मन से माइक्रोफोन तक का। कर्म योगी श्री कृष्ण का जीवन एक उदाहरण है। उनके जीवन से युवाओं को सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं पर आधारित हेमंत द्विवेदी जी की ये वार्ता।
1: युवा साथियों नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी की अनंत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। युवा साथियों, आज के दिन इस पावन पर्व पर मैं आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण की गीता में उद्धृत एक दो श्लोक एवं उनके जीवन में घटित एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, जो कि युवा मन के जीवन में सकारात्मकता और उनको यथोचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे युवा साथियों, आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे भारतीय समाज में इस प्रकार रच बस गए हैं कि हर माँ चाहती है उसकी संतान भगवान श्री कृष्ण जैसी हो। मित्रों, उनका जीवन जितना रहस्यमयी है उतना ही उनके श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की रहस्यमय परतों को उघाड़ती है। मेरे युवा साथियों, जैसा आप जानते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। छात्र जीवन में अनुशासन एक मजबूत आधारशिला है जिस पर एक उज्ज्वल और सफल भविष्य का निर्माण होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना, समय का सदुपयोग करना, आत्मनियंत्रण रखना और शारीरिक रूप से मजबूत रहना है। विद्यार्थियों के लिए यही कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग भी यही कहता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखहा। दुखों का नाश करने वाला कर्मयोग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। कर्मयोग विच डिस्ट्रॉयज ऑल सोरोस इज अटेंड ओनली बाई वन हु इज बैलेंस्ड इन ईटिंग एंड रिक्रिएशन, बैलेंस्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस एंड रेगुलेटेड इन स्लीपिंग एंड वेकिंग। युवा साथियों, अगर आप इस प्रकार कर्मयोग का पालन करेंगे तभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है उसको साकार कर पाएंगे। युवा साथियों, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत सरल नहीं था। जन्म हुआ जेल में, बचपन बीता दूसरी माता यशोदा की गोद में। उस अवधि में कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों से अपनी रक्षा करना और उनका वध करना। मेरे युवा साथियों, अब मैं उनके जीवन में घटित एक प्रकरण का उल्लेख करना चाहूँगा। कंस के वध के बाद उसका ससुर मगध नरेश जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था। 18वें आक्रमण में जरासंध ने भगवान शिव का वरदान प्राप्त अजय योद्धा कालयवन को भी साथ ले लिया। कालयवन को युद्ध में हराना असंभव था क्योंकि उसे वरदान था उसे कोई अस्त्र या योद्धा नहीं मार सकता। ऐसे में अनावश्यक रक्तपात और प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा युद्ध क्षेत्र ना बने इस कारण से रणनीतिक रूप से पीछे हटने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय का बड़े भाई बलराम ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस निर्णय से दुनिया हमें डर के कारण रण से भागा हुआ कायर रणछोड़ कहेगा। तब हमारे युवा साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सबसे पहले अपनी प्रजा मथुरा वासियों के प्राणों की रक्षा करना है। इस प्रकार ऐसे अनावश्यक रक्तपात और प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण युद्ध भूमि से रण छोड़कर आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण भाई बलराम के सहित रणभूमि से भागकर एक गुफा में गए जहाँ राजा मुचुकुंद तप कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर राजा मुचुकुंद पर डाल दिया जिससे कालयवन ने उन्हें श्री कृष्ण समझकर लात मार दी और राजा मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही उनके तपोबल से कालयवन जलकर भस्म हो गया। यह सब देखकर वहां से जरासंध वापस मगध भाग गया और फिर कभी मथुरा पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। बाद में श्री कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध का वध कराया। युवा साथियों, इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ भी पड़ गया। यह नाम गुजरात में बहुत प्रचलित है। मित्रों, कुछ याद आया, फिल्म थ्री इडियट में आमिर खान का नाम रणछोड़ दास छाछड़ था। युवा साथियों, मैंने यह कहानी क्यों सुनाया, इसलिए कि जब भी आप कोई बड़े

0: लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, तब उसको इसी प्रकार परिस्थितियों के अनुसार अपने अहंकार ईगो को किनारे रखकर रणनीतिक रूप से कार्य करें। युवा साथियों, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं। युवा साथियों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: बहुत ही खूबसूरत। जन्माष्टमी के दिन कर्मयोगी श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित ये वार्ता निश्चित रूप से प्रेरित करने वाली रही।
2: एक फिर दीपांशा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हूँ, पर आई नोटिस कि इस त्यौहार पर क्रिएटिविटी हर फॉर्म में निखर कर आती है। आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए, डांस के जरिए
1: और गीत गुनगुनाने के जरिए

0: कि मुझे मोहन नहीं मुझको मोहन का दास कहते हैं, मेरे जीवन को सब ही राम का वनवास कहते हैं। मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या मतलब, भजन का शौक रखती हूँ, मुझे सूरदास कहते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा अभी आपने राम जी और श्री कृष्ण का जिक्र सुना, तो मेरा एक और सवाल है मेरी को होस्ट अनुषा से। द्वापर के कृष्ण और त्रेता के राम में क्या अंतर है, और इस कलयुग में हमें कैसा होना चाहिए, मतलब जीवन की प्रेरणा श्री राम या फिर श्री कृष्ण?
1: मुझे लगता है हम कलयुग में जी रहे हैं तो हमें घर पे राम और बाहर कृष्णा जैसा होना चाहिए।
0: और वो किस लिए?
1: राम ने धर्म का साथ निभाया था लेकिन सीधे मार्ग पे चलकर, लेकिन कृष्णा ने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलकर सच्चाई का साथ दिया। कम शब्दों में बताऊं तो कलयुग में हमें घर पे राम और बाहर कृष्णा की तरह होना चाहिए। इस कलयुग में राम की मर्यादा से ज़्यादा कृष्णा की लीला की ज़रूरत है। और अब आपको सुनाते हैं मुख्य आजम मूवी से एक प्यारा सा गीत मोहे पनघट पे।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से युववाणी में। मैं आपके साथ दीपांशु और यहाँ पर मौजूद है हमारी को होस्ट अनुषा। और अब वक्त है क्विक बस का। देखते हैं जन्माष्टमी के साथ साथ दुनिया में और क्या खास हो रहा है।
1: क्या आप लोग जानते हैं टुडे इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस EOS-05, इंडियाज फर्स्ट एवर इमेजिंग सैटेलाइट फ्रॉम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, बूस्टिंग नियर कॉन्टिन्यूस अर्थ ऑब्जर्वेशन केपेबिलिटीज। नाउ कमिंग बैक टू जन्माष्टमी, आज का स्पेशल ओकेशन 18वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है और शुरुआत वहाँ से जहाँ कृष्ण की कहानी की जड़ है, मथुरा। और इस साल जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस को और ग्रैंड बनाने के लिए मथुरा में एक 500 ड्रोन शो प्लान किया गया है। सोचिए, 1000 साल पुरानी कल्चरल मेमोरी और आसमां, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी इंटरेस्टिंग संगम होने वाला है। अब सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: कृष्ण सदा सहाय दे। ब्रेक से पहले हम क्विक बस की बात कर रहे थे। जन्माष्टमी का रंग सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं है, गोकुल, वृंदावन और देश के अलग अलग हिस्सों में झांकियां, रासलीला, भजन और दही हांडी अपने अपने रीजनल अंदाज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं।
1: और एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, एक ही कृष्णा की कहानी भारत में कितने डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में सुनाई जाती है। कहीं क्लासिकल डांस में कृष्णा, कहीं मिनिएचर पेंटिंग्स में, कहीं भजनों में कृष्णा, और कहीं एनिमेशन और डिजिटल आर्ट में।
0: मतलब कहानी पुरानी जरूर है,
1: लेकिन उसे कहने का तरीका बिल्कुल नया।
0: OMG, क्या बात है।
1: OMG से याद आया, क्या कभी किसी ने कल्पना भी करी थी कि उमेश शुक्ला 2012 में ओ माय गॉड फिल्म लेकर आएंगे, जिसमें अक्षय कुमार एज कृष्णा हमें नजर आए। और इस फिल्म को अगर यूथ एंगल से देखें तो डोंट जस्ट फॉलो एवरीथिंग ब्लाइंडली, अंडरस्टैंड व्हाट यू बिलीव इन एंड लेट योर एक्शंस रिफ्लेक्ट इट।
0: वेल एक्सप्लेन्ड अनुषा। और मेरे प्यारे युवा साथियों, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ऐसा महसूस हो कि मैं ठीक तो जा रहा हूँ, आगे क्या होगा, तो आपके सभी सवाल

0: और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टुडे इन हिस्ट्री। वैसे तो पांचा, आज का दिन अपने आप में हिस्ट्री और माइथोलॉजी का कितना खूबसूरत संगम है। एक तरफ जन्माष्टमी और दूसरी तरफ 4 सितंबर से जुड़ी भारत के इतिहास की कुछ बहुत प्यारी पर्सनालिटीज।
1: बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं 1825 से। 4 सितंबर 1825 को गुजरात के नवसारी में जन्म हुआ था दादा भाई नौरोजी का, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
0: और उनकी कहानी यूथ के लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। एक इंडियन थिंकर, एजुकेटर और पॉलिटिकल लीडर जो आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इलेक्टेड होने वाले पहले इंडियन बने। कभी कभी हिस्ट्री की सबसे बड़ी जर्नीज एक इंडिविजुअल आवाज से शुरू होती है।
1: और बॉलीवुड डे है तो सिनेमा लवर्स, आपके लिए भी 4 सितंबर एक खास तारीख है। 1952 में इसी दिन जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा के लेट लेजेंडरी बिलवड एक्टर ऋषि कपूर का।
0: और उनकी फिल्म्स की लिस्ट देखने तो लिटरली जनरेशन को कवर हो जाती है, बॉबी से लेकर चांदनी और फिर कपूर एंड सन्स तक। एक एक्टर जिसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और हम तीन अलग अलग जनरेशन अलग अलग रोल्स के लिए याद कर सकते हैं।
1: और शायद इसी वजह से सिनेमा भी कल्चरल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है।
0: बिल्कुल। और आज 4 सितंबर 2026 को जब देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, तो हिस्ट्री के इन पन्नों के बीच एक और खूबसूरत रिमाइंडर मिलता है। समय बदलता रहता है, जनरेशन्स बदलती रहती हैं, लेकिन कहानियाँ, कला और यादें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सफ़र करती रहती हैं।
1: सफर से याद आया, आपके सफर को और बेहतरीन बनाने का जिम्मा हमारा है। हम हैं साथ तो फिक्र की क्या है बात। इसी के साथ हम सुनते हैं आगे बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के इस जन्माष्टमी स्पेशल सफर के आखिरी पड़ाव पर। उम्मीद करते हैं मनोरंजन के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा।
1: आज कृष्णा को हमने कभी बचपन की यादों में ढूंढा, कभी बांसुरी के सुरों में, कभी पेंटिंग्स और कहानियों में, और कभी उन सवालों में जो शायद आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। और मुझे लगता है कृष्णा की कहानी की खूबसूरती भी यही है, हर उम्र में वो हमें कुछ अलग कह जाती है।
0: कृष्णा नॉट जस्ट अ नेम बट अ थॉट हु टीचेस अस दैट व्हाट एवर द सिचुएशन इज ऑलवेज कीप स्माइलिंग। रास्ता कितना भी कठिन हो कर्म करना मत छोड़िए। इसी खूबसूरत नोट के साथ हमें दीजिए इजाजत।
1: मैं हूँ अनुषा।
0: और मैं हूँ दीपांशा। जन्माष्टमी के इस खास मौके पर अगर आपके पास है कोई फीडबैक, कोई सजेशन, तो हमें जरूर लिखिए। राइट टू अस एट yuvvanifeedback@gmail.com। दैट्स yuvvanifeedback@gmail.com।
1: बिकॉज योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप सुन रहे थे युववाणी, आकाशवाणी इन द प्रेस।
0: और बस जाने से पहले इतना कहेंगे कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है।
1: आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्या सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुँच चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वाल्व संबंधी और संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वाल्व्स 2026 में भाग लेंगे। वे चेन्नई के गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका का शुभारंभ भी करेंगे। पूर्वोत्तर में सीमा पार से होने वाली कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB की अगरतला क्षेत्रीय इकाई ने लगभग 17,84,00,000 रुपए मूल्य की करीब 22 किलो मेटमेफेटाइन माइन की गोलियां जब्त की हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में 2 अलग अलग अभियानों में म्यांमा के एक नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स का रूप रस्मुवना से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग की ली चेक्यू से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगुआ, बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो
1: और
0: प्रियंका,
1: भाई नमस्कार के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी हम अपने श्रोताओं को देते हैं।
0: बिल्कुल, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि आज का सबसे हर्षोल्लास त्यौहार है और सब आनंद से मनाते हैं, हर घर में पूजा होती है, भगवान कृष्ण के जन्म की तैयारी ऐसे की जाती है कि जैसे कोई, मतलब बहुत धूमधाम से सबको बुलाया जाता है और खूब तरीके के पकवान बनते हैं और खूब नाच गाना भजन सब होता है।
1: बिल्कुल मनाते तो हैं, लेकिन देखिए कृष्ण की अगर जन्म से हम कुछ सीख पाए तो अंधेरी रात में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और फिर उनको सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके पिता ने ली और उफनती हुई नदी को पार किया और घने अंधियारे में उनको लेकर वो सुरक्षित मथुरा से गोकुल की ओर पहुँचे। और इसी से संबंधित आज सबसे पहले लोक रंजनी में आपको ये लोकगीत सुनवाते हैं और कलाकार रहेंगे प्रवीण कुमार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कलाकार प्रवीण कुमार से जन्म की ये गाथा। बहुत ही खूबसूरत सी, और किस तरह से वासुदेव भगवान और उन्होंने सुरक्षित हमारे कृष्णा को, कान्हा जी को गोकुल तक कैसे पहुंचाया, और वहां पहुंचकर कैसे धूमधाम से उनकी बधाई और उनके आगमन की तैयारियां हैं। ये तो सुनते हैं अगला एक और भजन
1: आशा भार्गव और कृष्णा भार्गव की आवाज़ में।

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आशा भार्गव और कृष्णा के बहुत ही सुंदर जुग जुग जीवे, जो कि उनके आने की आगमन की बहुत सारी बधाइयाँ मिली।
1: बिल्कुल, और फिर बालपन की जो नटखट लीलाएं हैं उनको भी भजन के द्वारा जरूर अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, और कलाकार रहेंगी पुष्पा गोसाई।
2: मेरी मट्टी।

भाई यशोदा तेरे लाला ने मटकी फोड़ी, ऐसी अटखेलियाँ हमारे कृष्ण कन्हैया करते रहते हैं, और इसके साथ साथ गोपियों के साथ जो उनका एक रास का भी एक दृश्य होता है जो कि मन को मोह लेता है, जिसमें वो बांसुरी सुनने की फरमाइश करती हैं और एकदम बावरी सी हो जाती हैं। तो सुनते हैं बबीता और पूनम त्यागी की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: तो श्रोताओं, भगवान कृष्ण की कृपा से आपका घर हर कोने में स्नेह और भक्ति से भर जाए। हमारे पूरे सेक्शन की तरफ से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही आज का लोक रंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत और हर संघर्ष के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संचित जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। आज देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश में उत्साह और उमंग दोनों का माहौल है और खेल जगत भी आज कई बड़ी खबरों और रोमांचक मुकाबलों के साथ तैयार है। आज के खेल खिलाड़ी में विमेन्स T20 एशिया कप में भारत और हांगकांग मुकाबले से लेकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन और US ओपन 2026 तक की बड़ी खबरें शामिल होंगी। PSA लंदन क्लासिक, सुब्रोतो कप अंडर 15 बॉयज और AFC अंडर 20 एशियन क्वालिफायर से लेकर इंडियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक युवा और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों की हलचल पर रहेगी हमारी खास नजर। वहीं डायमंड लीग फाइनल्स, एशियन गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम और WTT कंटेंडर अल्माटी से जुड़े अहम अपडेट्स भी होंगे आज इस खेल खिलाड़ी का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विमेन्स T20 एशिया कप भारत और हांगकांग के बीच कल खेले गए मुकाबले से।

0: एक तरफ रिकॉर्ड बनते रहे तो दूसरी तरफ हांगकांग के विकेट लगातार गिरते रहे और पूरे मुकाबले में भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आया। बल्ले से भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया तो गेंदबाजों ने हांगकांग की पारी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा रहा 137 रन की शानदार जीत और सेमीफाइनल में भारत की जगह पक्की। महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम का शानदार अभियान जारी है। हांगकांग के खिलाफ ये मुकाबला भारत के लिए अहम था क्योंकि जीत के साथ टीम के पास सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने का मौका था। भारतीय खिलाड़ियों ने इस मौके को सिर्फ भुनाया ही नहीं बल्कि एक तरफा अंदाज में मुकाबला अपने नाम करते हुए अपनी दावेदारी और भी मजबूत कर दी। दुबई में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 193 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में हांगकांग की पूरी टीम 16.2 ओवर में सिर्फ 56 रन पर सिमट गई। भारत की पारी की शुरुआत से ही इरादे साफ थे, टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली स्मृति मंधाना ने। मंधाना ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और हांगकांग के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने महज 64 गेंदों में 124 रन की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 14 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। मंधाना की बल्लेबाजी में सिर्फ तेजी ही नहीं बल्कि पूरे मैच पर उनकी पकड़ दिखाई दी। एक के बाद एक बाउंड्री लगाते हुए उन्होंने भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इसी दौरान अपने T20 इंटरनेशनल करियर का एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। ये शतक मंधाना की शानदार पारी का सबसे खास पल रहा। रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने के बाद अब सुनते हैं स्मृति मंधाना ने अपने प्रदर्शन और टीम की इस बड़ी जीत पर क्या कहा।
1: Yeah, I mean, till I was batting, I didn't know like what record because I didn't know what's the exact runs or all of that. But looking back, a very good day for Indian cricket, I would say. Of course, Mithali has been such a legend and a role model, and I mean, go past her in the tally of runs is I definitely never imagined to do that. But happy that you know there are Indians at the top too. Going past the international record of the centuries, 18 is a good number to go past. Firstly, I will say that. But again, I mean, two of the legends of women's cricket, Meg Lanning and Mithali Raj, I mean, genuinely, these are the two people who have grown up watching a lot of my cricket, tried to take a lot of things from them as batters. So really happy that I could go past them in whatever ways. But yeah, again, it's just a start, I would say. See, I mean, it's not, I wouldn't say that it's easy conditions to bat out there. We know it can be a little tricky. And Dubai, again, with the Dubai heat and the humidity, it can get a little tougher. But I was lucky I got few fours and sixes and I didn't have to run a lot of twos on the field. But yeah, definitely, I would say

0: a little testing conditions to be logging, batting for a long time.
1: मंधाना की इस पारी के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी उनके नाम जुड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके रनों की संख्या बढ़कर 10,889 हो गई और इस आंकड़े के साथ उन्होंने मिताली राज को भी पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मंधाना के शतकों की संख्या भी बढ़कर 18 हो गई है। यानी एक शानदार पारी ने भारत को बड़ा स्कोर देने के साथ साथ मंधाना के रिकॉर्ड बुक में कई नई उपलब्धियां भी जोड़ दी। T20 इंटरनेशनल में भी मंधाना ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की। उनके नाम अब 95 छक्के हो गए हैं। इस आंकड़े के साथ उन्होंने हरमनप्रीत कौर के 89 छक्कों को पीछे छोड़ दिया और भारत की महिला क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना की शानदार पारी ने भारत को 193 रन तक पहुंचाया, लेकिन मुकाबला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की और उन्होंने भी बल्लेबाजों के बनाए दबाव को पूरी तरह कायम रखा। हांगकांग की पारी की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने रन बनाने के मौके बेहद कम कर दिए, लगातार विकेट गिरते गए और हांगकांग की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गई। कोई भी साझेदारी बड़ी नहीं हो सकी और पूरी टीम 56 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा सबसे सफल रहीं और उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं नंदिनी शर्मा, श्रीचरणी और प्रेमा रावत ने 2-2 विकेट लेकर हांगकांग की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। भारत की यह 137 रन की जीत सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं रही, बल्कि T20 इंटरनेशनल में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत भी बन गई। इससे पहले भारत ने 2018 में मलेशिया को 124 रन से हराया था। इस मुकाबले में श्रीचरणी के लिए भी एक खास उपलब्धि सामने आई। साल 2026 उनकी T20 इंटरनेशनल विकेटों की संख्या 31 हो गई है। वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। अब श्रीचरणी के सामने अगला बड़ा आंकड़ा है पूनम यादव के रिकॉर्ड का। पूनम यादव के नाम 35 विकेट हैं और श्रीचरणी इस रिकॉर्ड से सिर्फ 4 विकेट दूर हैं। यानी आने वाले मुकाबलों में उनके पास इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का मौका भी रहेगा। हांगकांग के खिलाफ मिली इस बड़ी जीत के साथ भारत महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। लेकिन टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 सितंबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होना है। सेमीफाइनल में जगह पहले ही पक्की हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए अहम रहेगा। इस मैच में टीम अपनी लय को बरकरार रखने के साथ साथ बड़े मुकाबलों से पहले अपनी तैयारियों को भी परखना चाहेगी। हांगकांग के खिलाफ भारत ने जिस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अपना दबदबा कायम रखा, उसने टीम के प्रदर्शन की पूरी तस्वीर सामने रख दी। तो क्या यही लय भारत को सेमीफाइनल से फाइनल और फिर खिताब तक पहुंचाएगी? एशिया कप 2026 की ट्रॉफी पर कौन अपना नाम लिखेगा, इसका जवाब मिलेगा आगे आने वाले मुकाबलों में।

चलिए, ये तो हुई क्रिकेट की बात। जहाँ भारत के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने हांगकांग के ऊपर जीत हासिल करी, अब आपको ले चलते हैं चाइना, जहाँ पे चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है।

चलिए अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां शेंजिन गुआंगडोंग चाइना में खेले जा रहे चाइना मास्टर्स 2026 में बहुत रोमांचक मैच खेले गए। मेन सिंगल्स की बात करें तो आज सुबह दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। फ्रांस के क्रिस्टो पॉपोव, जो कि नंबर दो सीड हैं, उन्होंने जापान के कोडाई नारोका को 21-10, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करी। वहीं हांगकांग के ली चुंग यू ने भारत के किदाम्बी श्रीकांत को 21-16, 21-16 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करी। बाकी दो मैच आज शाम को खेले जाएंगे, जहां डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन थाईलैंड के कुनलावुट विटिटसान के साथ खेलेंगे। वहीं दूसरा मैच चाइना के वेंग हॉन्ग यांग हांगकांग के जेसन गोनावन के साथ खेलेंगे। विमेन सिंगल्स की बात करें तो आज चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। कोरिया की नंबर वन सीड एन से यंग ने कोरिया की ही किम गा इन को 21-11, 21-10 से हराया। वहीं जापान की नंबर थ्री सीड अकाने यामागुची ने सुपिंदा केटे थोंग को 21-18, 21

2016 से हराया। जापान की टमोका मिजियाकी ने कलोयाना नालबंटोवा को 21-12, 21-11 से हराया। वहीं चाइना की वैंग जीयी ने जापान की नाजोमी ओकुहारा को 21-6, 21-10 से हराया। एक और रोमांचक मैच खेला जाएगा मेंस डबल्स में, जहां भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि नंबर 4 सीड है, डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स रास्मुसन के साथ खेलेंगे। ये मैच आज शाम को खेला जाएगा।

0: मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि सात्विक और चिराग का मैच अभी चल रहा है और भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-13 से जीत लिया है। अभी दूसरा सेट चल रहा है, तो देखते हैं भारत कैसा करेगा। अब चलते हैं लंदन आपको स्क्वॉश की तरफ।
1: लंदन स्क्वॉश क्लासिक में भारत की युवा स्टार अनाहत सिंह ने अपने प्रदर्शन के साथ एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। अलेक्जेंड्रा पैलेस में खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में 18 साल की अनाहत वर्ल्ड नंबर 8 नेले गिलेस को हराकर गोल्ड लेवल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ये मुकाबला PSA स्क्वॉश टूर के गोल्ड लेवल इवेंट का हिस्सा है और अनाहत के सामने थी टूर्नामेंट की 8वीं सीड नेले गिलेस। पिछले साल लंदन स्क्वॉश क्लासिक की फाइनलिस्ट रह चुकी गिलेस के खिलाफ अनाहत के लिए चुनौती बड़ी थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ लिया। पहला गेम बेहद करीबी रहा और अनाहत ने 3-11 से बढ़त हासिल की। गिलेस ने दूसरे गेम में वापसी करते हुए 11-4 से स्कोर बराबर किया। निर्णायक गेम में अनाहत ने फिर से नियंत्रण हासिल किया। बैक कोर्ट में गिलेस को बनाए रखने और फ्रंट कॉर्नर में सटीक शॉट्स लगाने की रणनीति काम आई और अनाहत ने तीसरे गेम में 11-8 से जीत दर्ज कर ली। इस तरह 39 मिनट चले मुकाबले में अनाहत ने 3-11, 4-11 और 11-8 से जीत दर्ज की। ये PSA स्क्वॉश टूर के गोल्ड लेवल टूर्नामेंट में उनका पहला क्वार्टर फाइनल है। साथ ही वो 2021 में जोशना चिनप्पा के बाद गोल्ड लेवल इवेंट के अंतिम 8 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अनाहत के लिए उपलब्धि उनके शानदार वर्ष में एक और बड़ी कामयाबी है। जुलाई में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा था और अब सीनियर सर्किट में भी दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं।
2: It's my first time playing on this court. I think it's the same one as the British Open as well. And I watched it, and I didn't do too well in that tournament last, you know, a couple of months back. But yeah, I was really excited to get to play on this court, and I'm happy that I got a chance to play here and against, you know, such a great player as well. Yeah, I mean, that was always been my dream to win that event. But I think it's just, you know, one tournament ahead of, you know, a lot more that I really want to win on the PSA tour. And I think just that's really helped me, you know, get a bit more confidence to play events like this and coming into the new season as well. Yeah, I mean, of course, I trained with Siva a lot back in Prague. So, I mean, the dynamic is very different than in comparison to playing any other opponent. But of course, just, you know, go back, recover as well as I can. And of course, just watch a few of her matches and try to regroup as well as possible, practice, and, you know, just like any other match, and just come in and do the best I possibly can.
1: अब लंदन में अनाहत की अगली परीक्षा और भी बड़ी है। आज यानी 4 सितंबर को शाम 6:45 पर क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मलेशिया की 3 नंबर सीट सवांगसरी सुब्रमण्यम से होगा। सवांगसरी ने दूसरे दौर में इजिप्ट की नार्डिन गरास को सिर्फ 17 मिनट में 11-5 और 11-5 से हराया था। सवांगसरी इस टूर्नामेंट की पूर्व चैंपियन भी हैं। उन्होंने 2024 में लंदन स्क्वॉश क्लासिक का खिताब जीता था। उस अभियान में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल हमामी, 8 बार की वर्ल्ड चैंपियन नूर एल शेरबिनी और नेले गिलेस जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को हराया था। ऐसे में अनाहत के सामने अब एक ऐसी खिलाड़ी की चुनौती है जो इस टूर्नामेंट के मंच और दबाव दोनों से अच्छी तरह परिचित हैं। अनाहत और सवांगसरी की भिड़ंत आने वाले एशियन गेम्स के लिहाज से भी दिलचस्प होगी। दोनों इसी महीने एशियन गेम्स में अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगी और वहां होने वाली प्रतिस्पर्धा लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में स्क्वॉश की शुरुआत के लिहाज से भी बेहद अहम रहेगी। और श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां चल रहा है US ओपन 2026।
0: लॉन टेनिस की चर्चा करें तो न्यूयॉर्क के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में US ओपन 2026

खेला जा रहा है। ये प्रतियोगिता 30 अगस्त को शुरू हुई थी और ये 13 सितंबर तक चलेगी। देश विदेश के मशहूर लॉन टेनिस खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। कल के दिन बहुत से रोमांचक मैच खेले गए। मेन सिंगल्स की बात करें तो अभी सेकंड राउंड चल रहा है और इसमें इटली के 13वें सीड मुसेटी 4 सेट्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वही नंबर 3 सीड फ्रांसिस ऑगर एलिसमैन, जो कि कनाडा के हैं, वो रशिया के खाचनोव से 6-7, 6-3, 6-2, 6-2 से हारकर यूएस ओपन 2026 से बाहर हो गए हैं। वही नंबर 6 सीड ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स टीमेनोर भी 3 सेट में हारकर यूएस ओपन 2026 से बाहर हो गए हैं। महिलाओं की बात करें तो रिजल्ट्स कम हैरान कर देने वाले रहे। नंबर 1 सीड सबेलंका, नंबर 2 सीड रबिकिना, नंबर 4 सीड कोको गॉफ और नंबर 8 सीड ईगा स्वीटेक सब अपना सेकंड राउंड मैच जीतकर थर्ड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि ये टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ता है और यूएस ओपन 2026 का खिताब कौन ले जाता है।

आईटी नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 के लिए भारत की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ रही हैं। एशिया के सबसे बड़े बहु खेल आयोजनों में शामिल इन खेलों में भारतीय एथलेटिक्स टीम से भी मजबूत प्रदर्शन और पदकों की उम्मीद होगी। इस कड़ी में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI ने 77 सदस्य अंतिम ट्रैक एंड फील्ड टीम की घोषणा की है। इस दल में देश के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा और उभरते हुए एथलीट शामिल हैं। टीम में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। स्टार जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टखने के लिगामेंट चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले यशवीर सिंह को टीम में शामिल किया गया है। वहीं लंबी दूरी के धावक अभिषेक पॉल को टीम से बाहर कर दिया गया है। 110 मीटर हर्डल धावक तेजस शिर से भी राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लगी चोट के कारण एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पुरुष वर्ग में स्प्रिंट और रिले 100 मीटर 200 मीटर एंड 400 मीटर के लिए गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, विशाल पी के, राजेश रमेश, मनोत एस, धर्मवीर चौधरी, मोहम्मद अशफाक, जय कुमार और प्रणव गौरव को टीम में शामिल किया गया है। मध्यम एवं लंबी दूरी 800 मीटर से 10,000 मीटर में मोहम्मद अफसल पी, कृष्ण कुमार, यूनुस शाह, गुलवीर सिंह, अविनाश साबले, सावन बरवाल और कार्तिक करकेरा भारत की चुनौती पेश करेंगे। इनमें अविनाश साबले 3,000 मीटर स्टीपल चेस और सावन बरवाल तथा कार्तिक करकेरा मैराथन में हिस्सा लेंगे। बाधा दौड़ यानी 400 मीटर हर्डल्स में यशस्वी पी और संतोष तमिल अरसन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्प स्पर्धाएं भी भारतीय दल की अहम ताकत रहेंगी। लंबी कूद में श्रीशंकर एम और शाहनवाज खान, ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और कार्तिक उन्नीकृष्ण, पोल वॉल्ट में देव मीणा और कुलदीप कुमार तथा ऊंची कूद में सर्वेश, अनिल कुशारे और आदर्श राम उतरेंगे। वहीं थ्रो स्पर्धाओं में गोला फेंक के लिए करणवीर सिंह और तेजिंदर पाल तूर, भाला फेंक में यशवीर सिंह और रोहित यादव तथा हैमर थ्रो में दामनीत सिंह और प्रवीण कुमार को जगह मिली है। डीकैथलॉन में तेजस्विन शंकर और तौफीफ एन भारत की चुनौती संभालेंगे। महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में प्रिंट और रिले के लिए हरिता भद्रा, उन्नति बोलंदा, प्राची, किरण पहल, सर्बानी नंदा, नित्या गांधे, सुदेशना शिवांकर, अभिनया राजराजन, स्नेहा एसएस, तमन्ना, रशदीप कौर, अंसा बाबू, नीरू पाठक, पुवम्मा आर और सलोनी नागर टीम का हिस्सा है। मध्यम और लंबी दूरी में गौतमी जयारमन, पूजा पारुल चौधरी, सीमा और अंकिता को शामिल किया गया है, जबकि मैराथन रेस वॉक में मंजू रानी और प्रियंका गोस्वामी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बाधा दौड़ 100 मीटर्स एंड 400 मीटर हर्डल्स में ज्योति याराजी, नंदिनी के, विद्या रामराज और अन्नू आर उतरेंगी। जंप स्पर्धाएं में लंबी कूद के लिए एनसी सोजन और शैली सिंह, ट्रिपल जंप में आई आशा इलांगो और निहारिका वशिष्ठ, पोल वॉल्ट में सिंधुश्री और बर्निका एलन गोवन तथा ऊंची कूद में पूजा और सुप्रिया बी को टीम में जगह मिली है। महिलाओं की थ्रो स्पर्धाओं में गोला फेंक के लिए मनप्रीत कौर और कृष्ण जया शंकर, भाला फेंक में अनुरानी, डिस्क थ्रो में सीमा और साइना यादव तथा हैमर थ्रो में अनुष्का यादव और तान्या चौधरी भारत की चुनौती पेश करेंगे। हेप्टेथलॉन में पूजा और नामिका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है।

लेकिन 77 सदस्यीय इस दल में कई अनुभवी और प्रतिभाशाली एथलीट्स मौजूद हैं। अब निगाहें आईची नागोया एशियाई खेलों पर होंगी, जहां भारतीय ट्रैक एंड फील्ड टीम दौड़, छलांग और थ्रो की विभिन्न स्पर्धाओं में देश के पदक अभियान को और मजबूती देने के इरादे से उतरेंगी।

0: 1 से 3 सितंबर 2026 तक आयोजित 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश भर से लगभग 650 अंडर 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन में युवा एथलीट्स ने 36 स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का प्रदर्शन दिया। प्रतियोगिता के दौरान कुल 26 फाइनल मुकाबले खेले गए, जिनमें 78 पदक वितरित किए गए। ट्रैक और फील्ड पर युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ कई नई राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड भी देखने को मिले। टीम चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 14 पदक और 94 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र 3 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कर्नाटका ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। रिकॉर्ड की बात करें तो पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में तमिलनाडु के नील सम्राज आर ने 10.46 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड अपने नाम किया। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र के मानसी शिंदे ने 21.51 सेकंड के समय के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। वहीं 110 मीटर बाधा दौड़ में महाराष्ट्र के यश मुलिक ने 13.40 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड कायम किया। महिला 100 मीटर में तमिलनाडु की टीम नृथिका ने 11.78 सेकंड के समय के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया। मध्यम दूरी की स्पर्धाओं में भी युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। पुरुषों के 1000 मीटर दौड़ में राजस्थान के साहिल ने 2:25.25 सेकंड का समय निकालकर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। 3000 मीटर और 5000 मीटर रेस वॉक में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। फील्ड स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश के कृष्णचंद्र ने पुरुषों के 700 ग्राम जैवलिन थ्रो में 79.92 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर नया मीट रिकॉर्ड बनाया। बिहार के प्रेमराज ने लॉन्ग जम्प में 7.58 मीटर की छलांग के साथ नया मीट रिकॉर्ड दर्ज किया। हाई जम्प में झारखंड के हिमांशु कुमार सिंह और असम के जुबिन गोहेन दोनों ने 2.09 मीटर का प्रदर्शन करते हुए नया मीट रिकॉर्ड कायम किया। शॉर्ट पुट और डिस्क थ्रो में भी नए रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए। महिलाओं के हेप्टाथलन स्पर्धा में केरल की अनामिका अजेश ने 4,641 अंक हासिल कर नया मीट रिकॉर्ड बनाया, जबकि हरियाणा की मुस्कान 4,535 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। चैंपियनशिप में व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र के यश मुलिक को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और कर्नाटक की नुपुरा होला को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। 21वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप न सिर्फ नए रिकॉर्ड दर्ज किए बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के आने वाले सितारों की एक झलक भी पेश की। चलिए एथलेटिक्स से अब आपको ले चलते हैं फुटबॉल की तरफ।
1: चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां भारत के प्रसिद्ध अंतर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप का 65वां संस्करण नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेला जा रहा है। अंडर 15 बॉयज प्रतियोगिता के तीसरे दिन खेले गए मैचेस में वेस्ट बंगाल ने एयरफोर्स स्कूल को 8-0 से हरा दिया। वहीं चंडीगढ़ ने आईपीएससी को 10-0 से हराया। हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 6-1 से हराकर जीत हासिल करी। वहीं छत्तीसगढ़ ने सिक्किम को 2-1 से हराया। त्रिपुरा ने जेएनके को 4-0 से हराया। बिहार ने श्रीलंका को 8-0 से हराया। सीबीएसई ने दमन एंड दीव को 10-0 से हराया। वहीं असम ने गोवा को 2-1 से हराया। केरला ने आर्मी पब्लिक स्कूल को 1-0 से हरा दिया। आज खेले जाने वाले मैचों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मुकाबला आईपीएससी से होगा, वही सीबीएसई का मुकाबला मेघालय से, असम महाराष्ट्र से खेलेगा और दिल्ली त्रिपुरा से, उत्तराखंड का मुकाबला श्रीलंका से और गुजरात का मुकाबला केरला से होगा।

फुटबॉल की बात चल ही रही है तो आपको एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स के बारे में भी बता देते हैं। 2027 में होने वाले एएफसी अंडर 20 एशियन कप का अभी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चल रहा है। ये टूर्नामेंट 31 अगस्त से 6 सितंबर तक खेला जाएगा। कल भारत का मैच उज्बेकिस्तान के साथ हुआ और भारत ये मैच 4-0 से हार गया। उज्बेकिस्तान ने मैच में शुरुआत से ही कंट्रोल बनाए रखा और फर्स्ट हाफ में मैरिटोव और अब्रेव ने 2 गोल दाग दिए। सेकेंड हाफ में भारत ने मैच में वापसी करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस कोशिश के बावजूद 2 गोल और खा लिए और मैच 4-0 से हार गए। हार के चलते भारत को निराशा तो जरूर होगी, लेकिन ग्रुप बी में अभी भी वो दूसरे स्थान पर है। भारत अपना पहला मैच सीरिया के साथ एक

से जीत गया था और उसका अगला मैच 6 सितंबर को बांग्लादेश के साथ होगा। अगर भारत बांग्लादेश को हरा देता है तो वो AFC Under-20 एशियन कप 2027 में अपनी जगह पक्की कर लेगा। हर ग्रुप से पहली दो टीम्स एशिया कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और मैं सभी श्रोताओं को ये भी बता दूं कि बांग्लादेश अभी अपने दोनों मैच हार चुका है और अभी ग्रुप बी में चौथे स्थान पर है। हम भारतीय टीम से पूरी पूरी आशा रखते हैं कि वो बांग्लादेश को हराए और AFC Under-20 एशियन कप में अपनी जगह बना ले। कहा था।

0: बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के किंग बोडोएन स्टेडियम में 4 और 5 सितंबर को डायमंड लीग 2026 का फाइनल होगा। सीजन की इस आखिरी प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष एथलीट्स 32 डायमंड लीग खिताबों के लिए मुकाबला करेंगे, जिनमें 16 पुरुष और 16 महिला स्पर्धाएं शामिल हैं। इस साल एलेनियास मेमोरियल वैन डैम का 50वां संस्करण भी आयोजित हो रहा है। फाइनल में कई बड़े नाम मैदान पर होंगे। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में ओब्लिक सेवेल और क्रिश्चियन कोलमैन, 200 मीटर में केनेथ बेंडारेक और लेटसाइल तेबोगो, जबकि 110 मीटर हर्डल्स में जैकाबी थार पर नजर होंगी। महिलाओं की 100 मीटर में शाकेरी रिचर्डसन और 100 मीटर हर्डल्स में मसाई रसेल तथा टोबी अमुसान प्रमुख दावेदारों में हैं। मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस में पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एमैनुएल वान योनी, 1500 मीटर में यारे नुगुसे और जेकब इग्ब्रिस्टन, जबकि 3000 मीटर स्टीपल चेस में सूफियान एल बक्काली मुकाबले में होंगे। फील्ड इवेंट्स में पॉल वोल्ट में मोंडो डुप्लांटिस, लॉन्ग जंप में मिलिटियालिस टेंगटांगलू, हाई जंप में यारोस्लावा महुस्चिक और डिस्क थ्रो में माइकोलिस अलेकना जैसे एथलीट आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 4 सितंबर को शॉटपुट, डिस्क, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, 100 मीटर, 200, 400, 800 और 15 मीटर सहित 16 फाइनल होंगे। वहीं 5 सितंबर को जैवलिन, शॉटपुट, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर समेत बाकी 16 स्पर्धाओं के विजेता तय होंगे। हर स्पर्धा का विजेता 2026 का डायमंड लीग चैंपियन बनेगा और उसे डायमंड ट्रॉफी दी जाएगी। भारत की ओर से इस फाइनल में कोई एथलीट हिस्सा नहीं ले रहा है। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा टखने की लिगामेंट चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर है। नीरज ने 2022 में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग जैवलिन खिताब जीता था। ऐसे में इस बार फाइनल में भारतीय प्रशंसकों की नजरें दुनिया के शीर्ष एथलीटों के प्रदर्शन पर रहेंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं WTT कंटेंडर जो चल रहा है अल्माटी कजाकिस्तान में। मेन सिंगल की बात करें तो राउंड ऑफ 16 मैच में दुनिया के 43rd नंबर के खिलाड़ी मानुषा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्हें क्वालिफायर और दुनिया के 258वें नंबर के रूसी खिलाड़ी डेनिस इवोविन ने हराया। मैच का नतीजा 8-11, 6-11, 6-11 रहा। इसके साथ ही पुरुष सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। विमेन सिंगल्स में की बात करें तो महिला सिंगल्स में उभरते हुए भारतीय खिलाड़ी और 73 रैंकिंग वाली पेडलर यशस्वी घोरपड़े ने दुनिया की 18वीं नंबर की खिलाड़ी और 24 साल की जापानी स्टार मियो नागासाकी के खिलाफ जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाफी रही और वे WTT कंटेंडर अल्माटी से बाहर हो गई। रोमांचक चौथे गेम में उनके पास 3 गेम पॉइंट थे, लेकिन वह उन्हें भुना नहीं सकी। मैच का नतीजा 8-11, 9-11, 11-8, 13-15 रहा और स्वास्तिका घोष ने जापानी पेंडर मियो कोरा के खिलाफ शानदार जीत हासिल की है और आज उनका मुकाबला राउंड ऑफ 16 की रूस वलाडा वोरिना से होगा।
1: श्रोताओं, खबरें तो बहुत है, लेकिन अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के निर्माता शहनवाज खान के साथ मैं संचित जैन और मेरी सहयोगी प्रेरणा शर्मा आपसे विदा लेते हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्म

0: अष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुलसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने एक एक गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05 इंडियाज फर्स्ट एवर इमेजिंग सैटेलाइट

सा आकाशवाणी दिल्ली अस्ति, कृपया गुरु गोविंदौ दौ स्थितौ विषये वार्तालापं श्रणुत। वार्ताकारः डॉक्टर गोपाल लाल मीना अस्मि, संस्कृत एवं प्राची विद्या अध्ययन संस्थानम नूतन देहली। अध्येतने अस्मिन् गुरु महत्वम् उपस्थापयामि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संस्कृत वार्ता। आइए जान ले आपसे थोड़ी ही देर में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनेंगे। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार। इसके बाद 7 बजे हिंदी समाचार के बाद कार्यक्रम होगा कृषि जगत। गजल कव्वाली का प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:35 पर। 7:45 पर प्रादेशिक समाचारों के बाद 8 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका का। 8:45 पर सुनिए हिंदी समाचार और इसके बाद आपके लिए प्रसारित करेंगे अंग्रेज़ी और उर्दू में समाचार। 9:30 का समय रहेगा प्रोग्राम करंट अफेयर का।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो वीनस बहन, सबसे पहले कार्यक्रम में जन्माष्टमी की हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो पर्व है बाल स्वरूप की, तो हम पूजा करते ही हैं भगवान की, इसके साथ साथ कृष्ण भगवान से हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और सबसे बड़ा ज्ञान जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, जिसमें हमें हमारी सभी समस्याओं के हल मिल जाते हैं, हर प्रश्न का जवाब उसमें मिल जाता है। और उसका सार भी यही है कि हम अपना निष्कर्म कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, फल तो देने वाला भगवान है। हमें अपने पूरे भाव से, भक्ति से और ईमानदारी से अपने काम करने चाहिए, और कर्म की प्रधानता को ही भगवान ने हमें बताया है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खास दिन है, बहुत ही महत्व इस दिन का। हर साल भद्रपाद माह के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार यानी कि आज के दिन बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है। और कहते हैं कि इसी दिन 8वें अवतार के रूप में उन्होंने धरती पे जन्म लिया था। तो ये भी है कि हमारा ये जो त्यौहार है इस जन्माष्टमी पे, इस साल की जो जन्माष्टमी है, बहुत आज तो बहुत सुबह से घनघोर वर्षा भी हो रही है, तो जन्माष्टमी वाले दिन बारिश ना हो, वर्षा ना हो, तो ऐसा लगता है कि हमने वो दृश्य नहीं देखा जब
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: गोकुल तक उनको बहुत ही मुश्किलों से लेके जाया जाता था वासुदेव भगवान जी के थ्रू।
0: बिल्कुल। और देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी है तो इस पे विस्तृत आपको एक वार्ता भी सुनवाते हैं, जिसका विषय है जन्माष्टमी, भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का पर्व। और वार्ताकार हैं पंडित रमेश चंद शर्मा। तो सुनते हैं ये वार्ता।
2: जय श्री कृष्ण। संपूर्ण देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, प्रागट्य उत्सव के ऊपर कोटि कोटि बधाइयां हो। आज ये महान पर्व जो हमें भक्ति प्रदान करता है, हमारी संस्कृति को सुरक्षित करता है, और सबसे बड़ी सामाजिक एकता का जो पावन पर्व है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर द्वापर युग में भगवान का प्रागट्य हुआ है। और भगवान कब आते हैं? प्रथम बार नहीं आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत में, जब जब विश्व में धरती पर भार बढ़ जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म बचता नहीं है, जहां धर्म बचेगा ही नहीं तो धरती भी भार वहन करती नहीं है। इस पावन पर्व के पूर्व जो महीना गया है उसको श्रावण का महीना कहा जाता है। करण सुनो भगवत कथा, करण करो कछु दान, नाही तो या करणी को औंधो होई विधान। कानों से भगवान की कथा सुने, कर यानी हाथों के द्वारा जो भी हम धन उपार्जन करते, अपना 10% दान में दें, उसे समाज को एकीकरण मिलेगा, हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति आएगी, हमें दूसरों को दुख में सहलाने का शुभ अवसर मिलेगा। तो करण सुनो भगवत कथा, कथा सुनने का फल ही हाथों के द्वारा दान दिया जाता है। ना ही तो या करणी को, नहीं तो इस जीवन में संग्रह ही संग्रह करते रहोगे, औंधो होए विधान, कर न का उल्टा कर दो, नर्क बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भूमंडल पर आकर के इस संसार में हमें सबको भक्ति प्रदान करी। भक्तों ने ही भगवान को बुलाया है, भक्त ही नहीं तो भगवान कैसे प्रकट होंगे। ये महान पावन पर्व कृष्ण जन्माष्टमी का, जो भगवान का प्रागट्य उत्सव है, भगवान कारागृह में जन्म लिया है, विषमताओं में जन्म लिया है, तो भी भगवान प्रसन्न है। भगवान धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा जो विरचित ग्रंथ है, जो भगवान ने स्वयं गाया है, जिसको महाभारत के अंदर अर्जुन को जो सुनाया है, उसका नाम गीता है। और गीता का शुभारंभ धर्म से ही होता है। जो धर्म, संस्कृति और भक्ति का जो समन्वय है, वो ये गीता ग्रंथ है। भगवान का प्रागट्य जेल में हुआ, और जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ है, सारे बंधन खुल गए। उसी समय वसुदेव जी कंपित थे, मैं अपनी संतान को कैसे बचाऊं।

0: लेकिन परमात्मा कहते हैं नैमे भक्ता प्रणश्यति, आप मेरे पिता हैं, उसी सारे सारे बंधन खुल गए। और भगवान को लेकर के रात्रि काल में गोकुल के लिए जब प्रस्थान किया तो यमुना जी में बड़े वेग से प्रवाह चल रहा था, भगवान के चरणों को स्पर्श करके यमुना जी शांत हो गई और जाकर के गोकुल के अंदर नंद यशोदा के यहाँ भगवान को लिटा दिया गया और भगवान की साक्षात माया को लेकर के वसुदेव जी महाराज पुनः कारागृह में आ गए। और जब माया आ गई सारे बंधन फिर से लग गए। इस संसार में माया में बंधन ही बंधन है और भगवान जहाँ प्रकट होते हैं वहां मोक्ष ही मोक्ष है, कोई बंधन रहता ही नहीं। भगवान पले कहाँ पर? वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन नंद बाबा के जाकर के अपना बाल्यकाल निकाला है, यशोदा के हाथों में पालन पोषण हुआ है। प्रश्न यह है, भगवान को प्रकट करने वाली विभूति भले ही कोई भी हो, लेकिन भगवान कहाँ जाएंगे, किसके घर में रहेंगे? तो जो दूसरों को आनंद देता है वो नंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो दूसरे को सुखी करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, 900,000 गऊ नंद बाबा के, गायों का पालन होता है, विशाल साक्षात गौ माता जो भारत का प्राण है, उन गोवंश की वृद्धि करी भगवान के पिता ने, नंद बाबा ने। यदि हम भी कृष्ण को चाहते हैं तो याद रखना, समत्वम योग उच्चते, समाज में एकीकरण स्थापित करना, यही कृष्ण भगवान का सर्वोपरि उद्देश्य रहा है। भगवान कृष्ण ने हमारी संस्कृति को बचाया, उसके पूर्व उन्होंने हमारी धरोहर को बचाया। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन वन को संरक्षित किया। भगवान कृष्ण जब जन्म लिया उस वक्त यमुना जी का जल विषाक्त हो गया था, काल्य नाग के दहन विष के कारण। जो भी गौ पानी पीती थी, कोई भी मनुष्य पानी को पी ले, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती थी। भगवान ने कहा मेरा जल तो जीवन है सबका, जल ही प्रदूषित हो गया तो जीवन प्रदूषित हो जाएगा। उस नाग को वहां से हटाया, जल को शुद्ध बनाया, जमीन को शुद्ध बनाई, वन को उत्पन्न किया और यही नहीं पर्वतों की पूजा करी। आज भी ब्रज धाम के अंदर 7 कोस के ब्रज की परिक्रमा जब की जाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए आज भी भाव विभोर होकर के भक्ति के साथ में समान चित्त होकर के, कोई वर्ण व्यवस्था का कोई भेद नहीं है, सामाजिक अखंडता एकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जिनके इशारे से ब्रह्मांड का क्षय हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, जो सृज पालई हरई बहोरी, वही भगवान अहिर के कन्याओं के गोपिकाओं के हाथ से ताई अहिर की छोहरिया छछिया भर छाच पे नाच नचावे, ग्वाल बालों की झूठन खाते हैं, समाज में भिन्नता को मिटा दिया। भगवान कृष्ण एक है, जब तक कृष्ण नहीं है तो कोई कैसे चल सकता है, कोई कैसे फिर सकता है, कोई कैसे बोल सकता है, मेरा कृष्ण ही तो सब में है। जब कृष्ण सब में ही है तो भेदभाव समाज का आ कहां से गया? इस सामाजिक अखंडता को एकता को दूर करने के लिए भगवान ने रास लीलाएं करी, समाज को एकजुट जोड़ दिया, समाज की अखंडता को बरकरार रखने के लिए भगवान ने एक संदेश दिया, निज गुण तुम्हार समझही निज दोषा। जो परमात्मा के भक्त होते हैं वो अपने अंदर तो दुर्गुणों को देखते हैं, लेकिन संसार में कहीं भी दुर्गुण दिखाई देता नहीं है। और वृंदावन की गोपिका कहती है जित देखूं तित श्याम मई, मैं जहां भी देखूं मुझे तो श्याम ही श्याम दिखता है और श्याम रंग के सिवा कुछ दिखता नहीं है। भगवान कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म ही मेरा है। और धर्म क्या है? दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया मत छोड़िए। जब तक घट में प्राण और मम से गीता का समापन होता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाथोर धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जब धर्म बचेगा, दया होगी, तो धर्म अपने आप बच जाएगा, तो समाज की अखंडता और एकता का प्रागट्य हो जाएगा। और जब हमारा सारा समाज एकत्रित होकर के गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए जा रहे हैं, अपने अपने घर से सभी समाज के लोग भगवान का प्रसाद ले जा करके भगवान गोवर्धन नाथ के ऊपर चढ़ा रहे हैं और भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और सभी जने मिलकर के नौमी के दिन नंदोत्सव मना रहे हैं, जय श्री कृष्ण। ये पावन पर्व आप सभी को आनंदमय हो, भक्ति रस से परिपूरित करे, और हमारे समाज में जो खंड खंडता हो रही है वो एकता में परिवर्तित होकर के हम सब मिलकर के श्री भगवान का ये जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ ही मैं विराम दे रहा हूँ, जय श्री कृष्ण।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति संस्कृति एवं सामाजिक एकता का पर्व जन्माष्टमी के ऊपर, बहुत ही भावपूर्ण व्यक्त था और हमें ये सब सुना रहे थे बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित रमेश चंद्र शर्मा।
2: बिल्कुल, और देखिए जो कृष्ण जी का बाल स्वरूप है ना, वो इतना प्यारा है, इतना मनमोहक है कि हम सब उसको देखने के लिए मंदिरों में भी जाते हैं। छोटे छोटे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी कृष्ण स्वरूप में देखकर बड़ा ही आनंद होता है। और ऐसे ही कृष्ण लला से जुड़ा एक भजन आपको सुनवाते हैं जो कलाकार होंगी राजबाला।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे ये कृष्ण भजन और कलाकार थी राजबाला।
1: अभी देखिए, अगर आज के दिन की बात करें तो आज दादा भाई नौरोजी की जयंती है, जो कि 4 सितंबर को हर साल मनाई जाती है, और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय इन्होंने ये बात बताई थी कि किस तरह से ब्रिटिश नीतियों के द्वारा भारत के धन को ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति लगातार कम होती जा रही थी और गरीबी का दौर बढ़ता जा रहा था।
0: बिल्कुल, आज बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि हमारे दादा नौरोजी भाई का जयंती भी है और उनकी उनको भारतीय सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रवादी आंदोलन में उनके लंबे और प्रभावशाली योगदान के कारण लोगों ने उन्हें भारत के महान बुजुर्ग का नाम भी दिया था। वे ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रारंभिक सबसे पहले वाले भारतीय नेताओं में से एक थे। उनके आर्थिक तर्कों पे, जैसे कि बात की, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप में कई चीज़ों पे उन्होंने मार्गदर्शन दिया।
1: बिल्कुल। और देखिए, अगर कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो जहाँ कृष्ण लीलाओं का हम जिक्र करते हैं, वहीं कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती है उसकी भी मिसाल दी जाती है, क्योंकि कृष्ण तो राजा थे लेकिन सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण था, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने अपने दोस्त को हमेशा वही मान सम्मान दिया, प्रेम दिया, क्योंकि जो दोस्ती होती है ना, वो ऐसा बंधन है जो कि प्रेम से जुड़ा रहता है। तो सुनते हैं ये कृष्ण और सुदामा की रागनी, और कलाकार होंगे जयवीर सिंह।

0: तो शायद आप सुन रहे थे कलाकार जयवीर सिंह से कृष्ण सुदामा की ये बहुत ही खूबसूरत सा जो अंतर बंधन था, प्रीत से बंधा था, जहाँ पे कोई कोई एक दूसरे से कोई चाह नहीं थी, सिर्फ प्यार का बंधन था। तो इसी के साथ ही आगे एक और हम सुनाने वाले हैं, माखन चोर नंद किशोर की मीठी बांसुरी से बांधी जो कान्हा जी ने सबके साथ प्रीत की डोर, इसी को सुनते हैं हम एक और भजन राधा कृष्ण के।
1: और कलाकार रहेंगे जयप्रकाश शर्मा।

धीरे से झोटा देओ गिरधारी जी, धीरे से झोटा देओ।

0: हमें तो तुम प्यार से प्यारी जी, हमें तो तुम प्राण से प्यारी जी, हिंडोरा कुंज बन डारो जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी, झूलन आई राधिका प्यारी जी।
1: तो भाइयों, जयप्रकाश शर्मा के गाए हुए इस कृष्ण भजन के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
2: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुने हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्यक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कभी कभी व्रत तो सब लोग करते हैं और व्रत करना ज़रूरी भी है। तो व्रत करते हैं ना, जब हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हम फलों का सेवन करते हैं जिसमें कि फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो व्रत के बहाने ही सही हम फल, ताज़े फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, प्रसाद के रूप में हम पंजीरी खाते हैं जिसमें कि तरह तरह के मेवा पड़ी रहती हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ दूध के उत्पाद हैं, चाहे वो दही हो, ताज़ा दूध हो या देसी घी हो, सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं क्योंकि प्रोटीन की मात्रा दूध से बने उत्पादों में होती है। तो एक तरफ व्रत भी हमारा हो जाता है और साथ साथ जब हम प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो उससे हमें पोषण भी खूब मिलता है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम त्योहारों पे, अवसरों पे, पर्व पे मतलब सब कुछ बनाते हैं जो हमारे मन की इच्छाएं होती हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भूल जाते हैं कि हमारे लिए कहीं वो हमें नुकसान ना दे दे, वो हमारे लिए आनंद का समय ना हो, कि कहीं मुश्किल वाला प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम ये सोचें कि हमें हमें उस दिन वो खाना है जिससे फल, जैसे फल खाएँ तो उससे आपको पौष्टिकता मिलती है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको मतलब हर तरीके के त्यौहार वाले दिन हर तरीके की चीज़, जैसे दूध से बनी चीज़ें खाएंगे तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलता है ना।
0: बिल्कुल, और कृषि जगत जो कार्यक्रम है उसमें हम किसान भाइयों के लिए खास जानकारी भी लेकर आते हैं। और अगर बागवानी की बात करें तो बागवानी से जुड़े जानकारी आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं और उसका विषय है इस महीने में बागवानी में होने वाले कार्य। इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान भाई अनाज वाली फसलें उगाते हैं निश्चित तौर पे वो शिकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो सब्जी है, फूल है, फल है, बागवानी फसलें उगाते हैं, तो उनको भी समय समय पर कृषि कार्य करने पड़ते हैं जिससे इन फसलों से वो अधिक उत्पादन ले सकें। और इस माह में कौन कौन से बागवानी कार्य किए जाएं इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, इस समय की जो सब्जियां हैं लगी हुई हैं उनके बारे में, और जो हमारे किसान भाई आगे लगाना चाहते हैं तो उसके नर्सरी प्रबंधन के बारे में।
3: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि किसान भाई जो भी खेती करते हैं और खेती से पहले किसान भाई को अपने आसपास के किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर रखें कि कौन सी बीज ले, कौन सा प्रमाणित सोर्स है, इन सारी चीज़ों की आगे बीजों का हम लगाने का तरीका क्या है, आगे हम कैसे उसकी देखभाल करते हैं, इसके लिए विशेष ध्यान दें। क्योंकि किसान भाई लगाने के बाद अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी आती है फसलों का नुकसान भी होता है, उपज के पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये जरूरी होता है कि किसान भाई को ध्यान देना जरूरी है, एक समय का जरूर ख्याल रखें। और इस समय जैसे सितंबर का माह का महीना चल रहा है, कुछ सब्जियां जो बरसात वाली सब्जियां हैं जो कंटिन्यू चली आ रही है, जैसे हम बेल वाली सब्जियां मुख्य तौर पे है, तो बरसात के मौसम में उन सब्जियों को आप मचान सिस्टम पे लगाएंगे तो एक तो बीमारी भी कम आएगी, साथ ही साथ उसका फल जो होगा दाग भी नहीं रहेगा और स्वस्थ होगा। अभी आगे समय है, जैसे हम कुछ किसान भाई अगेती फूलगोभी की खेती करते हैं तो उनकी पौधे अगर तैयार हो गई है तो उसको लगाएं और ये ध्यान रखें उसको मेड़ों पे लगाएं क्योंकि अभी भी बरसात की संभावना रहेगी इस पूरे महीने में, क्योंकि प्लेन में लगाएंगे तो जल भराव की समस्या होगी तो फसल खराब होने की संभावना रहती है। तो अगेती अगर पौधे तैयार है तो उसको अच्छे तरीके से मेड़ बना के उसकी रोपाई करें। साथ ही साथ जो सितंबर माह है ये मुख्य रूप से जो अक्टूबर से रबी मौसम की शुरुआत होती है उसकी तैयारी करते हैं। तो जैसे रबी मौसम में जितनी भी सब्जियां लगाई जाएगी, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य तरह से फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, गांठ गोभी है, इनके किसान भाई इस मौसम में नर्सरी की तैयारी करें। और नर्सरी की तैयारी करने के लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, क्योंकि बीज बहुत कॉस्टली होता है, जितने भी आजकल सब्जियां लगाई जा रही है ये देखा जा रहा है कि जो भी सब्जियां हैं वो है जो बहुत कॉस्टली बीज आ रहे हैं, तो उसको अगर हम परंपरागत तरीके से डालते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो किसान भाई को ध्यान देना होगा उन बीजों का महत्व देखते हुए, उसकी कीमत को देखते हुए ऊंची उठी हुई बेड बना के, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर रखते हैं और लंबाई जो है 15 मीटर रखते हैं, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर का रखें, और बेड के ऊपर जो हम लाइन बनाते हैं वो जो है 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाइन बने, और उन लाइन में बीज को आप सावधानी से डालें दूरी का ध्यान रखते हुए, फिर उसको आपने अच्छी तरीके से ढक के, और ये ध्यान दे कि बीज लगाने से पूर्व किसान भाई बीज का उपचार और भूमि का उपचार अवश्य करें। तो हमने इसका विशेष ध्यान देना है और उसकी रख रखाव करते हुए और ये लगभग 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, तो आगे चल के हम उसकी रुपाई कर देते हैं। हम बात करते हैं जड़ वाली सब्जियों की, जो कि जड़ वाली सब्जियां अगेती कुछ किस्में हैं जिसको किसान भाई, जैसे पूसा की पूसा वृष्टि वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको किसान भाई आसानी से इस माह में लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने लगा भी चुके हैं, क्योंकि हम अगस्त सितंबर से बात करते हैं तो इसकी टाइमिंग होती है, और ये किसान भाई लगाएंगे तो फायदा ये होगा क्योंकि बेमौसम में अगर गाजर आएगा तो उसको कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए अच्छी तरीके से आप पूसा से बीज ले और जो प्रमाणित स्रोत है वहां से बीज लेके इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा हम मूली की बात करते हैं, मूली की भी कुछ अर्ली वैरायटी है, मिनू अर्ली करके वैरायटी है, पूसा की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, उसको लेके आप लगा सकते हैं और उसको मेड़ों पे लगाना है। आजकल किसान भाई पहले परंपरागत तरीके से करते थे कि बीज को छिड़क के और मेड़ बना देते थे, लेकिन अब तकनीकी के साथ साथ बदलाव हुआ है और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर चालित यंत्र आ गए हैं जो कि बीज को उसमें डाल के और बहुत अच्छे तरीके से कम बीज में, जैसे हम बात करते हैं कि अगर 1 एकड़ गाजर की बुआई करते थे या 1 एकड़ मूली की बुआई करते हैं तो उसमें बीज करीब डबल से ट्रिपल बीज लगते थे, लेकिन अब जो है बीज कम से कम में 1 से 1.5 किलो में गाजर का बुआई हो जाता है, नहीं तो ये 3 से 4 किलो लगते थे। वैसे ही मूली की हम बात करते हैं कि 4-5 किलो बीज लगते थे, लेकिन अब 2 से 3 किलो में इसकी बुआई हो जाती है। तो इसका किसान भाई जरूर ध्यान दें कि हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमें कम से कम लागत में, क्योंकि विशेषज्ञ का किसानों का ये उद्देश्य होना है कि कम लागत लगा के हम अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा बात करेंगे कि आगे आने वाली जो सर्दियों की सब्जी में पत्तेदार सब्जी भी मुख्य रूप से सर्दियों में ही की जाती है, जैसे मेथी की बात करते हैं, पालक है, धनिया है, सरसों साग है, इन चीजों के भी हम किसान भाई कुछ अक्टूबर नवंबर तक जाते हैं लगाने के लिए, लेकिन कोशिश करें बीज का उपचार करके भूमि का उपचार करते हैं और इसको देख रेख प्रॉपर केयर में करेंगे तो अभी जो किसान भाई इन चीजों को लगाएंगे तो बाजार में जब आएगा तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि हमने किसान भाई को ध्यान देना होगा कि सभी किसान एक साथ करते हैं, जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि मार्केट में सभी किसान भाइयों का एक साथ प्रोडक्ट आता है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे किसान भाई को रेट नहीं मिलता, तो पालक है, जैसे पालक की हम बात करते हैं, मूली की बात करते हैं, तो इनकी जुताई भी कर देते हैं क्योंकि उनको लागत वापस होने की संभावना नहीं रहती। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि जो भी हम सब्जियां लगा रहे हैं इस मौसम में, अगर हम अगेती करें वैसे ही, जैसे हम मेथी लगा लेते हैं, पालक लगा लेते हैं, धनिया लगा लेते हैं, सरसों साग लगा लेंगे, तो इनको बहुत अच्छा आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और सर्दियों की मौसम की सब्जियां हैं, इस मौसम में ही हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिसकी हम बीज द्वारा सीधे बुआई करते हैं और बहुत सारी सब्जियां ऐसे हैं जिसकी हम पौध का तैयारी करते हैं, तो अगले माह में जो लगाई जाएगी उसकी भी तैयारी हमें इस माह में करनी होगी।
2: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया किस तरीके से जो हमारे किसान भाई आने वाले समय में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या नर्सरी लगाना चाहते हैं उसके बारे में आपने बताया, लेकिन आगे आने वाला जो मौसम है, इस मौसम में काफी हमारे त्योहार भी पड़ते हैं और जब त्योहार पड़ते हैं तो वहां पर फूलों की भी मांग होती है, जो हमारे फूल वाले पौधे हैं तो उनकी किसान भाई किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि समय पर जब मांग हो उस समय बेच करके अच्छा दाम कमा सके।
3: जी, हम जो परंपरागत तरीके से लोग धान गेहूं और इसमें खेती कर रहे हैं उससे हट के, क्योंकि किसान भाई को, क्योंकि हमारा दिनों पर दिन जो है वो उसका आकार छोटा होते जा रहा है, तो हमें भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ किसान भाई जो परिनगरीय क्षेत्रों में हैं, जहां ड्रेन के माध्यम से खेती कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी किसान भाई इस फसल का लाभ उठा सकते हैं। हम बात करते हैं गेंदे की फसल की, कि जहाँ पे ड्रेन के माध्यम से सब्जियों की खेती हो रही है ऐसे जगहों पे किसान भाई को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स और रासायनिक तत्व होते हैं जो कि सीधे तौर पर मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने किसान भाइयों को इससे थोड़ा सा हट के, हम अनाज वाली फसलों में जहाँ आय कम हो रही है और जहाँ पे ऐसे पानी की व्यवस्था है जहाँ से किसान भाई अगर सब्जी लगा के उसका इस्तेमाल करता है तो उसको नुकसान हो सकता है और उसका वातावरण और उसकी जमीन भी नुकसान हो रही है, तो इस दशा में किसान भाई ऐसे में बहुत ही एक अच्छा फसल है जो है, फूलों की फसल में हम बात करते हैं तो गेंदे की फसल है, और गेंदे की फसल लगाने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। जिन किसान भाइयों ने गेंदे के पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए हों तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा, कि आगे आने वाले जो भी हमारे त्योहार होते हैं, खासकर हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं जिसमें दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे हमारे पर्व होते हैं जिनमें इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और उस टाइम किसान भाई को लगभग 150 से 200 रेट तक भी किलो के हिसाब से, कभी कभी तो देखा गया है कि 300 रुपए किलो तक भी गेंदे के फूल बिकती है। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका रहता है। तो किसान भाई को हमेशा ध्यान देना होगा, हमें समय को टारगेट करना है, फसल को टारगेट करना है कि कौन से मौसम में हम कौन सी फसल लगाएंगे। उसी तरह से जो गेंदे की फसल है ये अभी बहुत ही उत्तम समय है, और मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से उनको बताना चाहेंगे कि हम ये देखें कि लगाने के 45 से 50 दिन पे बड बनना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखें दशहरा कब है, दिवाली कब है, उसके हिसाब से उस गैप अंतराल पर एक तो हमने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जो हमें दशहरा में लेना है उस दशहरा को टारगेट करेंगे, जो हमें दिवाली में लेना है उसको दिवाली में टारगेट करेंगे, और अन्य पर्व है उसके तारीख के हिसाब से आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, और यह अंतर मात्र 10-15 दिन का होता है। और एक और चीज इसमें तकनीकी रूप से आप कार्य जरूर करें जो आमतौर पर किसान भाई नहीं करते, और वो है पिंचिंग का कार्य। हम पिंचिंग बोलते हैं कटाई करना। उसमें क्या होता है कि जब हम गेंदे की फसल लगाते हैं तो एक ही तना जो है सीधे बढ़ते रहता है, लेकिन अगर हम 30-40 दिन के आसपास जब बड बनने से पहले उसको 1 से 2 फीट छोड़ के पूरी कटाई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि साइड से ब्रांचेज निकलते हैं, और जिससे क्या होगा कि आपको जितना ब्रांचेज हो गया उतना बड होगी, और जब बडों की संख्या और फूलों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी नेचुरली ये होगा। एक और इसमें फायदा ये होता है, मान लीजिए बड बनना शुरू हो गया और फूल बन जाएगा और टाइम 10 दिन के बाद होगा, तो आप 10 दिन का समय जो है किसान भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने क्या करना है कि उसकी पिंचिंग कर देंगे तो ये जो बडों की संख्या है ये भी 10 से 15 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा किसान भाई को एक तो समय को भी आप टारगेट कर सकते हैं, इससे साथ ही साथ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए आप ख्याल रखें बीजों का ख्याल, जो क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभी देखने को मिलता है किसान भाई गेंदे लगा देते हैं लेकिन फूलों का उसमें आकार, साइज, रंग सब अलग अलग बनता है। तो ज्यादातर जो हमारे भारतवर्ष में गेंदे की ज्यादा डिमांड होती है वो है नारंगी, जो कलर होते हैं उसकी डिमांड होती है, और इसके लिए पूछा कि नारंगी वेरायटी बहुत अच्छी वेरायटी है, पंजाब गेंदा नंबर 1 की बहुत अच्छी वेरायटी है, और भी वेरायटी है, लेकिन वेरायटी किसी विश्वसनीय संस्था से लेने का पर्पज ये होता है कि उसमें जो वाइल्ड टाइप का जो फूल गेंदे का आता है वो नहीं आएंगे, और इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती। और किसान भाइयों से भी कहूंगा कि ये एक ऐसी फसल है कि ये ट्रैप क्रॉप के रूप में भी आप सब्जियों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गेंदे की फसल से एक तो फूल की उत्पादन होगा ही होगा, साथ ही जैसे हम बात करते हैं गोभी की बात करते हैं, पत्ता गोभी की बात करते हैं, ब्रोकली की बात करते हैं, तो आप 5 लाइन ब्रोकली लगाते हैं, 5 लाइन फूल गोभी लगाते हैं, 2 लाइन गेंदे की भी लगाइए, और चारों तरफ से जो बाउंड्री है उस पे 2-2 लाइन गेंदे की लगा देंगे तो एक तो बाहर से कीट नहीं आएंगे, साथ ही साथ इसमें एक केमिकल एल्थ्रिन छोड़ती है जो कि निमेटोड से भी राहत देती है। एक तो फायदा होगा कि हम उसके फूल बेच के पैसा कमा लेंगे, साथ ही हमें जो जमीन में निमेटोड की एक समस्या आती है उसे भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आपका बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व जो हम रासायनिक स्प्रे करते रहते सब्जियों में वो ट्रैप कर लेगा, कीड़ों को बाहर आने नहीं देगा, जिससे कि आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से सब्जी और फूलों की बात करी, क्योंकि ये बरसात का जो मौसम होता है इस मौसम में बहुत से हमारे बागवान भाई फल वाले पौधे लगाते हैं, कुछ अपने सजावटी पौधे भी लगाए जाते हैं, तो ये पौध रोपण का भी महीना माना जाता है, इस समय क्या कुछ कर सकते हैं?
3: जी, इस समय जिन किसान भाइयों ने जैसे पौध रोपण वैज्ञानिक तरीका है कि गर्मी के मौसम में हम मई के मौसम में गड्ढे खोद के छोड़े हुए हो, जिसे गड्ढा खुदाई करने का पर्पज ये होता है, सॉयल का जो गड्ढे की है सोलराइजेशन द्वारा ट्रीटमेंट हो जाता है जिसमें हानिकारक फंगस कीट बीमारी वगैरह उसमें नहीं आते, उससे फायदा हो जाता है। दूसरा क्या होगा, अब जो बारिश के मौसम में गड्ढे भरने का टाइम होता है तो उसमें विशेष ध्यान दें कि जो गड्ढे से आपने मिट्टी निकाला उसको वापस नहीं डालना है। सबसे पहले तो जहाँ पे भी आपने बगीचे लगाने हैं वहाँ की मिट्टी और पानी की आप जांच जरूर करावें, जिससे कि ये पता चल जाए कि हम उस जगह पे कौन सी फल वाले वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरी चीज, गड्ढे में जो हम मिट्टी निकालते हैं बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी को वापस वही डाल देते हैं खाद मिला के, लेकिन हमने वो नहीं करना क्योंकि हमारा मिट्टी जो है 5 से 6 इंच का ही उपजाऊ है, तो जो हमने गड्ढे से मिट्टी निकालना वहीं पर आप फैला दें, और 5-6 इंच की मिट्टी पे आपने जितनी मिट्टी है उतनी ही बराबर मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद और आप जिप्सम और नीम की खली का जरूर इस्तेमाल करके और मिक्स करके अच्छी तरह से आप गड्ढे को भर दीजिए। अगर बारिश हो रही है तो उससे मिट्टी बैठ जाएगी, अगर नहीं हो रही तो आप थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को बैठाना जरूरी होता है, क्योंकि हम पौधे जब लगाते हैं अगर थोड़ा सा भी उसमें एरेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पौधे की सूखने की या जाने की संभावना रहती है। तो एक तो पानी लगाएंगे तो मिट्टी बैठ जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, फल वृक्ष जो होते हैं, हम अन्य फसल की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने में उसकी क्रॉप साइकिल होती है, लेकिन अगर हम फल की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। जैसे हम घर बनाते हैं कि 100 साल तक चलता है, वैसे ही हमारा पौधे भी जो 25 से 30 साल का लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो उस अवस्था में हमें ये ध्यान देना होगा कि जहाँ पे वैरायटी की हम बात करते हैं, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बाजार से किसान भाई लाते हैं और कलम वाले पौधे बता के लाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वैरायटी बेचने वाले को नहीं पता होता है, तो हमें वैरायटी का, क्योंकि वैरायटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए कि खेतों का साइज जो है छोटा है, और पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े देसी पौधे लगाए जाते थे जिसकी संख्या करीब बहुत कम होती थी। हम 1 एकड़ में लगभग 60 से 62 पौधे लगा लेते हैं, लेकिन अब ऐसी तकनीकी आ गई है वैरायटी के साथ 1 एकड़ में किसान भाई 1500 तक पौधे लगा सकते हैं दूरी कम करके, क्योंकि उसका फैलाव कम होता है और हाइट कम होता है। तो ऐसी चीजों का हमने ध्यान देना है और विशेषज्ञों के आप संपर्क में रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको इन चीजों की जानकारी मिलती रहेगी समय समय पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एक तो प्रमाणित स्रोत रखना है, वैरायटी का जरूर ख्याल रखना है, और लगाते समय विशेष ध्यान देना है कि जो आप कहीं संस्थान से लाते हैं तो आपने देखा होगा काले जो प्लास्टिक के पन्नी में उसके पिंड होते हैं, उस पिंड को बहुत सावधानी से उसकी तेज धारदार कोई भी ब्लेड से या चाकू से उसको हटा के, और बहुत अच्छे बच्चों की तरह जैसे हम पालते हैं बहुत मासूमियत से रखते हैं, कि उसका पिंड जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर पिंड ब्रेक होता है तो पौधे सूखने की 100% संभावना रहती है। तो आप उसका विशेष ध्यान देने कि लगाते समय पिंड ना टूटे, सावधानी से हटा के, और जितनी पिंड की साइज है उतने ही आप जो गड्ढे में है उसके सेंटर में उसकी मिट्टी निकाले और पौधे को रोपित कर दे। और विशेष ध्यान देना, ज्यादातर देखा जाता है किसान भाई के दिमाग में ये होता है कि जहाँ पौधे लगाया है वो एरिया गड्ढा रहे, उसे गड्ढा नहीं रखना है। उसको जमीन के सतह के बराबर पौधे लगाने के बाद मिट्टी और खाद मिक्स जो अपने मटेरियल है उसको भर के बराबर रखना है, मिट्टी के सतह पर मेड़ बनाइए। नहीं तो क्या होता है कि पानी हम डालते रहते हैं गड्ढे में और तने के संपर्क में हमेशा पानी रहता है, और तने के संपर्क में रहेगा तो रूट रोटिंग की और तना जो गलन की बीमारी आएगी और पौधा वो चला जाता है। किसान भाई इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि बोलते हैं हम तो पानी और खाद समय से डालते हैं फिर भी पौधा सूख गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें हमारी कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से पौधे सूखते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि लगाने के बाद जो मिट्टी के सतह के बराबर आपको पौधे का जड़ क्षेत्र भी रखना, थोड़ा सा ऊंचा ही रखिए जिससे कि तने के पास पानी न पहुंचे, और चारों तरफ से आप डोल बना के और उस डोल के अंदर में ही पानी देंगे, पौधे का विकास अच्छा होगा। और समय समय पे जो है कीट और बीमारियों और खादों का व्यवस्था करते रहे और पानी लगाते रहे। साथ ही साथ आप ये भी कोशिश करें कि पानी के लिए आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे पौधा कम से कम पानी और पानी की बचत भी हो जाएगी। तो आपको अच्छा फल का भी आप खेती कर सकते हैं और आप मुनाफा कमा सकते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अगर अपनी फसल जो भी लगाते हैं उसमें उन्नत किस्म लें और समय का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर उसकी निगरानी अवश्य करते रहें। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, निश्चित तौर पर किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो भाई आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी, और विषय था इस माह की ये जाने वाली बागवानी कार्य, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि किसान विज्ञान केंद्र
0: उजवा। देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने, बागवानी की तो बात की, साथ साथ सब्जियों के और फूलों के बारे में भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसमें ध्यान रखने योग्य जो उन्होंने बातें बताई कि एक तो सही वेराइटी का आप चयन कीजिए, और जो भी आप वृक्षारोपण कर रहे हैं मेड़ बना के करें ताकि उनकी जड़ों में अधिक पानी ना जाए, और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग की भी बात की, और अगेती खेती करके आप कैसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये तो थी जानकारी। और अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना, जो कि हमारे किसान भाई, अधिकतर किसान भाई इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उससे जुड़े हुए भी हैं, जिसमें कि प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सहायक राशि मिलती है जो कि 2,000 की किश्तों में 4 महीने के गैप पर आती है। और अगर अभी बात करें 23वीं किश्त जो है जून के महीने में हमारे किसान भाइयों को जारी कर चुके हैं और 24वीं किश्त का इंतज़ार किसान भाइयों को है। इसमें मुख्य जो ध्यान रखने वाली बात है कि योजना का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आपका EKYC और आधार लिंक हो, तो आधार लिंक ज़रूर करवाएं।
1: और ये भी है कि ज़मीन का जो हक है किस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। किसान के नाम पर खेती योग्य ज़मीन होना ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी और जानकारी और किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं ये आप पोर्टल पे जाकर आपको सब कुछ पता लग जाता है और आप वहीं पर ही रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं ऑनलाइन। और क्या आपको पत्राचार साथ में इसके साथ जोड़नी है।
0: और अब कार्यक्रम में करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मस्तराम यादव से ये कृष्ण भजन।

0: तो भाई आप सुन रहे थे मस्त राम यादव की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।
1: और भाई याद दिला दें कि कल है शनिवार और शनिवार को हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जो कि फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप हमें अपने पसंद के कलाकार और अपने पसंद के गीतों के बारे में बताते हैं, हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं और हम आपकी पसंदों को अधिक से अधिक कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

गज़ल के इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास के गाए खूबसूरत गज़ल। आइए अब सुनते हैं आवाज़ जगजीत सिंह की।

0: जगजीत सिंह की इस खूबसूरत गज़ल के साथ इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरक्रिया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। भारत दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा, जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 का और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: I am very happy to announce that GSLV.
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GSLV-F17 के माध्यम से EOS-05 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू समकालिक कक्षा से भारत के पहले चित्रण उपग्रह का प्रक्षेपण देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक और ऐतिहासिक छलांग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और भारतीय उद्योग मिलकर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि परिषद द्वारा सम्मेलन स्थल, VIP और प्रमुख मार्गों, बाजारों तथा ब्रिक्स प्रतिनिधियों के ठहरने वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता, हरित सौंदर्यीकरण, रखरखाव, ब्रांडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है।
6: सम्मेलन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 17 प्रमुख गोल चक्करों, 11 होटल परिसरों और 10 एनडीएमसी भवनों पर सजावटी रोशनी की जाएगी। एनडीएमसी ने बताया कि सभी कार्य आगामी बुधवार तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं 15 स्थानों पर पुष्प सज्जित बोर्ड, 9 स्थानों पर फूलों के फव्वारे और 15,000 से अधिक गमलों से हरित सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए डिजाइन के अनुसार 309 स्थानों पर सम्मेलन की ब्रांडिंग पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने तथा धूल और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 प्रमुख स्थानों पर विशेष मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों पर विशेष स्वच्छता, गहन धुलाई, यांत्रिक सफाई और जलभराव से निपटने की 100% तैयारी कर ली गई है। श्री चहल ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, नेतृत्व क्षमता और विश्व के प्रमुख देशों के साथ मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अशोक रोड, रिंग रोड सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन

0: की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सभी लोगों और उनके परिवारों पर सदैव बना रहे। वहीं श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मुरलीधर श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, कर्तव्य और धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस सिखाता है। दिल्ली सहित अक्षरधाम मंदिर परिसर में आज बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को श्रद्धा, भक्तिभाव और हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत, प्रार्थना, संतों के प्रेरक उद्बोधन और बाल तथा किशोरों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गईं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज गांधीनगर, कृष्णानगर, ईस्ट आजाद नगर, झील खुरंजा, गीता कॉलोनी और रामनगर सतनाम पार्क सहित कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें धार्मिक कार्यक्रम, रासलीला और मटकी फोड़ जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण इन क्षेत्रों में यातायात धीमा रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज मटकी फोड़ लीग सीजन 2 का आयोजन किया गया।
2: दिल्ली में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंदिरों तथा प्रमुख स्थानों को भव्य आयोजन के लिए सजाया गया है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस प्राचीन परम्परा को आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं बिरला मंदिर, पूर्वी कैलाश और पंजाबी बाग स्थित इस्कॉन मंदिर तथा द्वारका स्थित इस्कॉन द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। दिन भर और देर रात तक भजन कीर्तन तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों जैसे गोकुल तथा वृंदावन में उनके बाल जीवन को दर्शाती झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर, रामलीला मैदान और रोहिणी के जापानी पार्क सहित कई जगहों पर यातायात प्रभावित रहेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है तथा कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। प्रख्यात उद्योगपति सर श्रीराम द्वारा 1926 में स्थापित इस महाविद्यालय ने एक से बढ़कर एक विद्वान, पेशेवर, प्रशासक, उद्यमी, नीति निर्माता और राष्ट्र निर्माता दिए हैं। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के दिन मनाया जा रहा है, जिससे ये

0: अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्र कल समाज की नींव मजबूत करने में शिक्षकों और शिक्षाविदों के सहयोग को सम्मानित कर रहा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी 39 उपमंडलों में पहली बार विशेष प्रक्रिया से उपपंजीयकों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों की नियुक्ति सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव की उपस्थिति में पूरी की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर राष्ट्र सेवा में समर्पित सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज में आत्मबोध, एकात्मकता और स्वाभिमान का भाव जागृत करना, सनातन संस्कृति की जीवन परंपराओं को सशक्त करना तथा सेवा को राष्ट्र कार्य का माध्यम बनाना परिषद की मूल प्रेरणा है। राजधानी में आज सुबह के समय हल्की धूप रही, वहीं दोपहर बाद राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल आमतौर पर बादल छाए रहने के और गरज तथा चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा, जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का, और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत। तो तलत का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से सफ़र की एक बहुत ही बेहतरीन भजन के साथ। आज है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव, जिसे पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व धूमधाम से मना रहा है। आकाशवाणी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: जी, जब स्थिति विकट हो जाती है तब बना स्थिति यही कहती है कि आप अपने इष्ट को पुकारें, और जब ऐसा कोई खास दिन हो तब बहुत दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से अपने इष्ट को याद किया जाता है।
1: सुनो सुनो है कृष्ण।

जी कृष्ण कन्हैया आंखों का है वो तारा। और अब सुनते हैं हम अगला गीत। हमारा उम्मीद है कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे होंगे और गीत आपको अच्छे लग रहे होंगे।

करें, लेकिन हाँ मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि किसी से भी किसी को हो सकती है। और जब बात हो कृष्ण जी की, तो फिर मोहब्बत की जो सीमा है ना, वो पार हो जाती है।

0: पलके झुकें और प्रणाम हो जाए, पलके झुकें और प्रणाम हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कान्हा, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कान्हा कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए।
1: प्राण प्राण प्राण धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन न झनन न झनन न न न न कान कान कान धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन न झनन न झनन न न न मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया मुरलिया।

लहराए रही, सिगिदात सिगिदात सिगिदात सिगिदात सिगिदात शर्माए रही, सिगिदात सिगिदात सिगिदात सिगिदात शर्माए रही, सिगिदात सिगिदात सिगिदात सिगिदात शर्माए रही, पलखाए रही।

अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया।

और बहुत ही खूबसूरत, मुझे मतलब सबसे प्यारा ये लगता है, कितना खूबसूरत ये फिल्माया गया है और कितना प्यारा ये लिखा गया है। और एक ये जो है फिल्म वीर से, ये भी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा गीत।

और अब वक्त हो चला है कि आपसे विदा लें, और जन्माष्टमी के तौर पर और इस मौके पर अगर हम बांसुरी ना सुने तो फिर कुछ अधूरा सा रह जाता है। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ मैं यहीं इस बांसुरी धुन के साथ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज़ आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और

0: अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
7: We have extended our solidarity and support to the government.

0: पीपल ऑफ नेपाल,
1: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी

0: जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तन्हु में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान दो और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के तीन बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत तीन लोगों को हिरासत में लिया।
3: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में

0: कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
1: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervor across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
3: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: Italian Prime Minister Giorgia Meloni today thanked Prime Minister Narendra Modi for his wishes on a government becoming the longest serving in the history of the Italian Republic. in association.

0: was greeted teachers across the country on the eve of Teachers' Day. In a message, the president said that Teachers' Day was observed to mark the birth anniversary of former president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a great author and philosopher. Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of GSLV F-17 carrying EOS-05, India's first ever imaging satellite from the geosynchronous orbit. In a social media post, Mr. Modi called the successful launch a reflection of the excellence, innovation, and growing capabilities that define India's space sector. He also termed it an outstanding achievement by ISRO and a proud moment for the nation. The Indian Space Research Organization has successfully launched the EOS-05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in Shenzhen this evening. Earlier, the Indian pair defeated Francis Thomas Junior Popov and Christoph Popov 21-17, 22-24, 21-9 last night to make it to the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोज़ा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, जुनूबी अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दो तरफ़ा मीटिंगें कीं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फोरम के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अदालती तआवुन को मजबूत बनाने, अदालतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तेज़ रफ्तार अदालती अमल के ज़रिए अवाम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तकम करने और मुख्तलिफ ममालिक के बेहतरीन कानूनी तरीक़ों पर बातचीत की गई। तीन रोज़ा इस फोरम ने मुख्तलिफ ममालिक की अदलिया को इंसाफ की फराहमी, बैनुल अक्वामी तनाज़ात के हल, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका फराहम किया। इसके अलावा इस फोरम के ज़रिए مختلف ممالک کے عدلیہ کے

0: सरबराहान ने अपने अपने ख्यालात और तजुर्बात का भी एक दूसरे से इश्तराक किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिक़ वुस्ता यूरोपीय इक़्तिसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्द अमल वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज़्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह कामयाबी इतालवी अवाम के उनकी क़्यादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के दरमियान खसूसी स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के अवाम की खातिर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए करीबी तआवुन जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की और आने वाले बरसों में मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं।
2: 275 भारतीय नागरिक लापता हैं। इसमें 275 में 49 वो लोग हैं जो चीन में भी उनके लिस्ट पे मिसिंग है, जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर 275 हैं उसमें, लेकिन 49 लोग हैं जो चीन की तरफ भी इसी में है।
1: उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी राबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुकाम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासरा नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ज़रूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वज़ीर खारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों के नज़रिए पर मबनी होनी चाहिए। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हम मनसब आंद्रेई सिबिहा और सदर विलोदमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वज़ीर खारजा ने लगातार भारत के इस मौक़िफ़ को दोहराया कि ये जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें चितवन में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मशरक़ी नवलपरासी ज़िले में 218 अमवात हुई हैं। इस दौरान मजीद 2 अफराद की मौत काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। भारत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों में मदद के लिए नेपाल को मजीद 2 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों C-130 तैयारे मजमूई तौर पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर काठमांडू पहुँच गए हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तश्वीशनाक बनी हुई है। तमाम बड़ी नदियाँ जिसमें गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी में तुगयानी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: पटना, भोजपुर, भागलपुर और मगरबी चंपारण समेत शुमाली वस्ती और जुनूबी बिहार के 16 जिले सैलाब की जद में हैं। साहिली और नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुतासिरा इलाकों में कुदरती आफात से निपटने की अथॉरिटी की जानिब से जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमें तैनात की गई हैं। मुतासिरा खानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि महकमे सेहत की टीमें मुतासिरा इलाकों में सरगर्म हैं। इस दौरान वजीर आला सम्राट चौधरी और नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, जो कि आबी वसायल के भी वजीर हैं, ने आज सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया। वजीर आला ने पटना में हुक्काम के साथ एक आला सतह की जायजा मीटिंग की,

0: जिसमें उन्होंने सैलाब से बचाव के तरीके के साथ साथ राहत और इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी गई। पटना से सविता पारीक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले सैलाब का एताब झेल रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी समेत रियासत के 26 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सैलाब से मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक 3.5 लाख से ज़्यादा की आबादी के सैलाब से मुतासर होने के बावजूद राहत और बचाव निज़ाम के सरगर्म अमल होने की बदौलत सभी मुतासर अफराद में राहती किट्स और खुराक के पैकेट्स तकसीम किए गए। इसके अलावा 17,000 से ज़्यादा अफराद को सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मकामात समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई मकामात पर कल शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयाँ और खाने पीने की दूसरी चीज़ें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल और गणपतियार मंदिर से लाल चौक तक जुलूस निकाला। मर्दों, खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल अकीदतमंदों ने मजहबी नारे लगाते हुए और भजन गाते हुए तकरीबात में शिरकत की। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बार्टिवेयर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफ्द को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो आज भारत यूरोप यूनियन आज़ाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बार्टिवेयर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फिजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F-17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क के आला तालीमी इदारों में एक मुमताज़ नाम है और कॉमर्स, माशियात और मैनेजमेंट के शोबों में तालीम और तहकीक का अहम मरकज है। अर्ज़ियाती साइंसेज़ के मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत तलबा पर मरकूज़ प्रोग्रामों के ज़रिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने, उनमें बुनियादी साइंसी सोच पैदा करने और नौजवान जहनों को अर्थ सिस्टम साइंसेज़ मुताला कराने की तरगीब देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रियासतों को अदालती अफसरान की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल को अपने मुतालिका सर्विस कवानीन में तरमीम करके रिटायरमेंट की उम्र बाज़ाबता तौर पर 62 साल करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने यह भी वाजे किया है कि 60 साल की उम्र को पहुंचने वाले अदालती अफसरान को 62 साल तक खिदमात जारी रखने की इजाज़त देने से पहले मुतालिका हाईकोर्ट की जानिब से उनकी कारकर्दगी और मजूनीत का जायज़ा लिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलोचिस्तान के जियारत और सराब ज़िलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेज पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दिगर कई जख्मी हुए। BLA

0: also mentioned manufacturing services 10%, manufacturing 9%, etc. are there. Then economy has become more diversified. And the diversification actually matters enormously during an oil shock. If one sector gets hit by high energy costs, the other sectors can continue expanding. For example, the fertilizer sector was impacted there. And the third is the energy shock doesn't pass through one-on-one to consumers, right? This is a very important Indian characteristic. Petrol and diesel prices are not only influenced by crude prices, but also by taxes, refining margins, exchange rates, and pricing decisions. And over this time, while in some other countries there was even rationing of petrol, India managed this price management for the petrol and diesel very well and the availability of diesel well. And I think we have built external buffers. We have foreign exchange reserves, more diversified export base. And this was actually put in the economic survey. So actually, an oil price shock does not automatically translate into that kind of balance of payment prices that could severely constrain growth. And of course, as we discussed earlier, services exports are providing a natural kind of hedge against this.
1: Listeners, 7.8% growth is more than just a number. It is a reflection of confidence, resilience, and opportunity. Mr. Sharad Kohli and Mr. Dilip Chinoy, thank you, gentlemen.
0: Thank you, Sabji.
2: Thank you. It was a pleasure.
3: You were listening to a discussion on India's economic growth amidst global economic headwinds. The participants were Sharad Kohli and Dilip Chinoy, economic analysts. The moderator was Sarabjit Kaur.
4: Current Affairs.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
6: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरी कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा का केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने बताया कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वर्षों में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर

0: ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पतन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर ने आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
1: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और छप्पन भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरल में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल के गणपतियार मंदिर में लाल चौक पर शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के विस्तु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स का रूप रस्मुएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts, and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
3: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
2: Italian Prime Minister Giorgia Meloni today thanked Prime Minister Narendra Modi for his wishes on a government becoming the longest serving in the history of the Italian Republic. In a social media post, Mr. Meloni expressed confidence that India and Italy will continue to strengthen the bond between the two continents and work together to develop the India-Middle East-Europe economic corridor. Ms. Meloni's response came after Prime Minister Modi congratulated her on becoming the longest continuously serving Prime Minister in Italy's post-war history. The External Affairs Ministry today said that 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighbouring nation. Briefing media in New Delhi today, spokesperson in the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said 275 Indian nationals remain missing. He said India continues to be in close touch with the Nepali government. He said India deeply appreciates the efforts of the Nepalese authorities in this regard. The spokesperson said the ministry has been regularly releasing the names of Indians who have been rescued. Mr. Jaiswal said 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. He said there are no Indian travelers who are stranded in the Tibetan Autonomous Region in China. Regarding India's support of flood-ravaged Nepal, Mr. Jaiswal said India will continue to provide assistance as per the requirements of the government of Nepal. He said in the coming days, India is planning to send more forensic kits, Bailey bridges and other materials that are requested by the government of Nepal.
4: In the wake of this tragedy, we have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. As a close friend and partner, India responded promptly and we will continue to support rescue, relief, reconstruction and recovery efforts in the country.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे राग रागेश्री मैती मजुमदार से। आइए सुनते हैं राग रागेश्री।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ठीक 11 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता

के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Seated with Krishna are prepared and offered to Lord Krishna. Devotional songs and chanting is performed through the day and often late into the night. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings on the occasion of Janmashtami. The National Testing Agency NTA has released admit cards for candidates appearing for UGC NET June 2026 in English, Commerce and Sociology on the 9th and 10th of this month. Candidates can download their admit cards from ugcnet.ta.nic.in using their login credentials. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter their fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Astrup and Anders Kvarup Rasmussen in Shenzhen this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे एक विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से सुनवा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। आइए सजीव प्रसारण के लिए मथुरा चलते हैं।
2: वंदे कृष्ण की लीला स्थली ब्रज धरा धाम को शत शत नमन वंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पावन पवित्र मोक्षदायिनी मथुरा नगरी के जगत विख्यात श्री द्वारिकाधीश मंदिर से मैं डॉक्टर मीनू खरे अपने साथी कमेंटेटर्स डॉक्टर नृत्य गोपाल और कृष्ण जन्म स्थान से श्रीयुत श्री कृष्ण व देश दीपक मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ, अशेष मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। तीनों लोकों से न्यारी मथुरापुरी में आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का 5253वां जन्म उत्सव। इस अवसर पर मथुरा नगरी कुछ यूं सजी है मानो कोई नववधु अपने प्रियतम का स्वागत करने जा रही हो। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत दोनों बाहें फैलाकर करती हुई ये वही नगरी है जिसके स्थापना भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने आततायी लवणासुर के वध के पश्चात किया था और कालांतर में द्वापर युग में इसी नगरी को चुना। भगवान श्री कृष्ण ने आततायी कंस के नाश और सत्य मूल्यों की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन सभी को प्रतीक्षा आगत के स्वागत की अजन्मे के जन्म की। कृष्ण का जन्म इस संसार का सुंदरतम क्षण है। मेरो मन आनंद भयो ब्रज राज ही याचन आयो अपने अपने मन की मतो कही सब परिवार पठायो। अधर्म के नाश हेतु साक्षात परम ब्रह्म विष्णु स्वरूप वासुदेव जनार्दन रसेश्वर सर्वेश्वर ब्रिजेश्वर योगेश्वर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतरण से इस धरा को धन्य किया। आज उसी दिव्य और अलौकिक घटना की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति के साक्षी बनने को उत्सुक आज यहाँ उपस्थित हर जन हर भक्तगण कण कण से प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। यशोदानंदन नंद दुलारे कन्हैया के आवन की घड़ी जो है महोत्सव चारों ओर है। परमानंद आज यहाँ साक्षात बरसता हुआ उल्लास और उमंग में सराबोर श्रद्धा का सागर आज भक्तों के मन में उमड़ता हुआ। सभी कंठों से राधे कृष्ण की वाणी गुंजायमान होती हुई आज की रात याद दिलाती है द्वापर युग की उस विलक्षण और अलौकिक घटना की, जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र सूर्य नारायण सिंह राशि में और चंद्र वृष राशि में अवस्थित थे, तभी कान्हा ने जन्म लेकर इस धरा को धन्य किया। यूं तो आज श्री द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं ऋतुराज के दर्शन के लिए, परंतु हर किसी की प्रतीक्षा मध्य रात्रि की, जब कान्हा प्रतीकात्मक रूप से एक बार पुनः प्रकट होंगे, एक बार पुनः ब्रज की ये धारा धन्य होगी कन्हैया के अवतरण से। कान्हा रे नंद नंदन परम निरंजन हे दुख भंजन। श्री यमुना महारानी के विश्राम घाट और अस्कुंडा घाट के बीच बसे श्री द्वारिकाधीश मंदिर में आयोजित कान्हा के जन्म का ये उत्सव अद्भुत विलक्षण और अलौकिक प्रतीत होता है। रंगीन प्रकाश में नहाया हुआ ये प्रांगण मानो किसी और दुनिया में ले जाता प्रतीत होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर मथुरा नगरी ही मात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्म और शक्ति एक साथ प्रकट हुए। गीता के पुरोधा लीलाधारी कृष्ण और अष्टभुजा माँ योग माया की प्राकट्य भूमि होने के कारण आज इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक है। ब्रज की महिमा को कहे को बरनई ब्रज धाम, जहां बसत हर सांस में श्री राधे घनश्याम। और अब आगे का हाल आंखों देखा हाल सुनाने के लिए डॉक्टर नृत्य गोपाल।
3: धन्यवाद डॉक्टर मीनू खरे। नमस्कार, मैं नृत्य गोपाल राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से बोल रहा हूँ। आज के मंगल उत्सव में आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई। धन्य धन्य ब्रजभूमि जहाँ प्रगटे वनवारी। जी हाँ श्रोताओ, यह ब्रज धरा वंदनीय है, पावन मथुरा नगरी अभिनंदनीय है, जहाँ पर हमारे ब्रजराज लाडले कृष्ण कन्हैया ने यहाँ इस धरा पर जन्म लिया। ब्रजराज श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में आज यह मथुरा नगरी, यह द्वारकाधीश मंदिर दिव्यता और भव्यता की अद्भुत संगम बना हुआ है। और इस संगम में जहाँ से हम आपको आंखों देख रहे हैं और बहुत सुंदर सा पीत वर्णीय ये जो पर्दा आया हुआ है, जिसमें झिलमिल सितारे लगे हुए हैं, जिसकी आभा से ये पूरा भवन, ये पूरा प्रांगण आलोकित हो रहा है। और ठीक द्वार के बाहर जगमोहन में कुछ हिस्से को बहुत सुंदर सी रेलिंग से घेरा हुआ है। इस परिधि के भीतर सेवायत जन, जो सिर्फ उन्हीं का प्रवेश यहाँ पर वांछनीय है, वही इसमें भीतर है। सेवायत जन अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक यहाँ पर इतने सुंदर हल्दी के थापे रखे गए हैं और सेवायत जन जिस तरीके से जैसे इधर उधर अपने कार्यों में तल्लीन है, वह अद्भुत है, देखने योग्य है। और पुष्टि मार्ग में एक विशेष जो परंपरा है, जिस परंपरा को अपरस सेवा कहा जाता है, इसके तहत वे सभी किसी बाहर के व्यक्ति से स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं और अंदर श्री विग्रह और श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में एक एक पल को लगा

0: उन्हें कृष्ण की लीलाएं दिखती हैं, कटआउट लगे हैं, झांकियां सजी हैं, ध्वनि और संगीत के प्रभाव से वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर रही हैं, मोह रही हैं। माखन चोरी है, रासलीला, नाग नथैया, कृष्ण जन्म, गौचारण जैसे तमाम प्रसंग हैं जो कि वहां पर अंकित हैं। और ये सब कुछ दिव्य है। 11 बजे से यहाँ पर पूजन, जो विशेष पूजन है वो चल चुका है। 1008 सहस्त्रार्चन से करते हैं, पुष्प कमलों को चढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह का पूजन हुआ और सहस्त्रार्चन चल रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं, सहस्त्रार्चन के साथ साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह भी अनवरत हमारे बाईं तरफ से निकलता है और दाहिनी तरफ से चला जा रहा है। ये जो दिव्य शोभा है, ये जो अद्भुत वातावरण है, इसे शब्दों में व्यक्त करना नितांत असंभव, लेकिन फिर भी मैं श्रीयुक्त श्री कृष्ण जी को ये माइक्रोफोन देता हूँ आगे का विवरण देने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देशदेव दीपक जी। एक बार पुनः श्री कृष्ण स्थान से स्वीकार कीजिए श्री कृष्ण का सादर प्रणाम और आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज इस समय यहाँ भागवत भवन में जहाँ ठाकुर जी अपनी आलादरी शक्ति श्री राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और इस समय भक्तों का आने का सिलसिला एकदम अचानक से बढ़ गया है। बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से, उल्लास से, उमंग के साथ राधे राधे का जय घोष करते हुए भागवत भवन की ओर बढ़ते चले आ रहे और यहाँ पर उनकी वेशभूषा से प्रतीत होता है कि देश के सुदूर प्रांतों से अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और वर्ष पर्यंत उनके मन में बस एक ही भावना रहती है कि कब वो अद्भुत पल आए, जब वो भगवान के प्राकट्य उत्सव का, अपने लाला के आगमन की दीक्षा के लिए उनके यहाँ पर भागवत भवन में अपने प्रभु के दर्शन करने आए। जब अजन्मे का जन्म होता है, पालनहार प्रकट होते हैं, उस समय भागवत भवन में रहना अपने आप किसी पुण्यों के संचित लाभ से प्राप्त करने से कभी भी कम नहीं होता है। और इस समय जो भक्त आ रहे हैं, जैसे ही भगवान के सामने आते, हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राधे का जय घोष करते हैं। और यहाँ पर भगवान जैसा नाम है कृष्ण, सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार जो उनकी ओर देख लेता है, बस उनका होकर रह जाता है, पांव ठिठक जाते हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। लेकिन जो सेवायत है, सुरक्षा प्रहरी है, बड़े ही अनुनय विनय के साथ, विनम्रता के साथ उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है, उन्हें अपने स्थान पर रुकने भी नहीं देता है। और न केवल भागवत भवन, अगर मैं बात करूं श्री का जन्म स्थान में, यहाँ पर मुख्यतः 3 मंदिर और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ठाकुर केशव जी का मंदिर है भागवत भवन के अलावा, और वो गर्भगृह क्रूर कंस के कारागार का वह भाग जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, और उस कारागार को आज इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है, बिल्कुल कारागार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। और कारागार के प्रवेश द्वार के पास योग माया मंदिर है, जहाँ पर आज योग माया ने एक विशेष स्वर्ण और रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। और उस कारागार में जहाँ पर भगवान के अवतरित हुए थे, धन्य कंस का कारागार, हर ने लिया जहाँ अवतार, ये बंदी वसुदेव देव की स्तुत करते उन देव देव की। और यहाँ पर आज भागवत भवन में इस समय भजन गाया जा रहा है, तमाम श्रद्धा तालियां बजा बजा कर मंजीरे की धुन में, शंख के साथ में, जान मंजीरे के साथ में भजन गा रहे हैं। और यहाँ आज बड़े सवेरे मंगल आरती हुई शहनाई नगाड़ों के साथ, और उसके बाद सुबह 8 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक किया गया ठाकुर जी का, और पवित्र श्लोकों का पाठ किया गया, और करीब 8 बजे के आसपास पुष्पार्चन हुआ। और इस बार पुष्पार्चन में गौ रक्षा के साथ देश रक्षा का संकल्प लिया गया। इसके बाद मंगलार्चन, वेद मंत्रों के मध्य युगल सरकार के शिष्यों में पुष्पांजलि यहाँ पर की गई, और उसके आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश पूजन और नवग्रह पूजन के साथ यह पूरा जन्मोत्सव कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ है। और भागवत वन के ठीक सामने जो यहाँ पर एक लीला मंच बना हुआ, आज वहाँ पर प्रयोजन लीला आयोजित की जा रही है कि भगवान ने किस कारण से यहाँ पर अवतार लिया था, उसका यहाँ पर आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित हैं। और जो सामान्य दिनों में यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन व गीता को उपदेश दे रहे हैं, आज वहाँ से निकासी है। और जो सामान्यतः जो दूसरा दरवाजा होता है प्रवेश द्वार, वहाँ से प्रवेश ले रहे हैं, और साथ साथ इस पूरे मथुरा नगरी को बहुत ही आकर्षक ढंग से रंग बिरंगी विद्युत झालों से, रंग बिरंगी पताकाओं से, और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कहीं माखन चोरी की लीला है, कहीं गाल ग्वाल बालों के साथ माखन

0: सजाया गया है और अनेक सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं। उन सांस्कृतिक मंचों में यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और जैसे द्वापर में जब भागवत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो स्थितियाँ बनी थी, आज वही स्थिति यहाँ बन रही है। आज बारिश भी हुई है, यहाँ पर बिजली भी चमकी है, काली अंधेरी रात भी है, लेकिन उस समय गहन अंधकार था। आज मथुरा नगरी का कण कण प्रकाशवान है। ऐसा प्रदृश्य, शायद अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है और पूरी मथुरा नगरी पे एक बड़े मेले जैसा आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और जो कान्हा की नगरी है तो कोई भी श्रद्धालु भूखा कैसे रखता है। जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे लगाए गए हैं जहाँ पर विभिन्न तरह के पकवान बड़े अनन्य विनय के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को परोसे जा रहे हैं। उनसे विनती की जा रही है, हे लाला साथ को ले लो। और जैसे ही यहाँ पर लोग भागवत भवन की ओर प्रवेश करते हैं, वे मंदिरों की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि हर मंदिर, हर मठ, हर घर में आज कान्हा की विशेष झांकी सजाई गई है। आज कान्हा का जन्म होगा और उस जन्म में पूरा ब्रजमंडल ही नहीं, जहाँ जहाँ भी यहाँ पर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे सभी अपने लाला के प्राकट्योत्सव पर बड़े आनंद से, बड़े उत्साह के साथ लाला का जन्मदिन मना रहे हैं। और इस समय श्री द्वारकाधीश मंदिर में क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है, आइए और दृश्यों के लिए चलते हैं डॉक्टर मीनू खरे के पास।
1: धन्यवाद श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ये रात्रि मोह रात्रि कही जाती है। कान्हा के रूप ने मोह लिया इस ब्रह्मांड का, दीप मालाएं ऐसे जगाती है और देखिए राजाधिराज की जय बोली जा रही है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये मंदिर, इसका नाम श्री द्वारिकाधीश मंदिर यूं पड़ा क्योंकि श्री कृष्ण द्वारिका के स्वामी हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इस मंदिर के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल था, जिसे हरिग्रह कहा जाता था। और आज इसी हरिग्रह में हरि के चरणों में बैठकर आंखों देखा हाल जन्मोत्सव का आप तक पहुंचाने का ये सौभाग्य आकाशवाणी की तरंगों का और उसकी पूरी टीम का। ब्रज की रज जाको मिल गई बाकी चाह न शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ पर राधे राधे कृष्णा कृष्णा की गुंजार होते हुए ध्वनि एक मंत्र जैसा सभी भक्ति भावना में लीन। चारों ओर भक्तजन अब उत्सुकता बढ़ती हुई। श्री यमुना जी के तट पर बसे द्वारिकाधीश मंदिर का सौंदर्य आज अनुपम छटा बिखेर रहा है। असंख्य रंग बिरंगे पुष्पों, तोरणों, रंग बिरंगी झालरों, कुमकुमों, बंधन वारों से सजे स्तंभ द्वार और झरोके मानो पुष्प बगिया के स्वर्गीय द्वार हो। इस क्षण का सौंदर्य शब्दों से परे है, मानो शब्द भी प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए हो। तीतर पाखी बादलों की झूमती हुई छटा और बयार की इटलाती लहरियां और आज झूमती हुई लहराती हुई बादलों की ये घटाएं और बारिश अनायास ही याद दिला देता है वो लोकगीत। और देखिए एक बार पुनः राजाधिराज की जय। भादो मास रैन अंधियारी, जन्मे कृष्ण मुरारी ना। आज प्रकृति स्वयं बाहें फैलाकर मानो कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। वातावरण में आध्यात्मिकता है, दिव्यता है। उस अलौकिक पल की आहट आज हर बीतते पल में मानो उत्तेजना, उत्सुकता और अधीरता उत्पन्न करती प्रतीत होती है। अजन्मा आज जन्म लेगा, अनंत अपरिमेय आज समा जाएगा माँ की गोद में। जग के अश्रु पोछने वाले का शिशु क्रंदन सुनकर आज हर श्रद्धालु की आंखों में होंगे अपरिमित आनंद के अश्रु। जग का पालनहार आज स्वयं पालने में होगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई जोई कछु गावे। मध्य रात्रि का घना अंधकार है लेकिन गोकुल में उजियारा फूटने ही वाला है। श्री यमुना महारानी भी अपनी लहरों में नेह के मोती बरसाती प्रतीत होती हैं। चारों ओर उल्लास, आनंद और भक्ति का अद्भुत समागम आज यहाँ चारों ओर व्याप्त दिखता है। यमुना महारानी

0: अद्भुत श्रृंगार में सजी हैं। उनकी लहरों पर चांदनी का रेशमी आभूषण मानो झिलमिला रहा है। लहरों की तरंगे वीणा की झंकार जैसी प्रतीत होती हैं। आज वे स्वयं को सजाकर खड़ी हैं, क्योंकि ब्रज का नन्हा नंदलाल स्वयं नटनागर उनकी गोद से पार होकर गोकुल जाने वाला है। यमुना महारानी आज केवल नदी नहीं है, उनकी व्यग्रता उफन कर शिशु कृष्ण के चरण छू लेने की है। देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, देखो तो घनश्याम से एक नदी का नेह, चरणों को छू भर लिया हुई सांवरी देह। और अब अगली आवाज डॉक्टर नृत्य गोपाल की।
1: डॉक्टर मीनू खरे, आप इस समय देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ हम जिधर देख रहे हैं, चारों ओर श्रद्धालु अपार जन समूह इस समय श्रद्धावनत होकर के अजन्मे के जन्मोत्सव की पावन घड़ी का पल पल बाट जो रहा है और हम देख रहे प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे कन्हैया के प्राकट्य की घड़ी पास आती हुई, वैसे वैसे जय घोष से गूंजों से मंदिर परिसर ऐसे गुंजायमान हो रहा है जैसे कि गगन भेदी ये स्वर यहाँ पर सबको आह्लादित उमंगित कर देता है। इस उल्लास के वर्णन करना हम इन शब्दों में जैसे जैसे आप तक पहुंचा पा रहे हैं। राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर का यह आंगन, द्वारकाधीश की जय, वसुदेव नंदन की जय, देव की नंदन की जय, नंद नंदन की जय, यशोदा नंदन के जयकारों के साथ गूंज रहा है। ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फरचंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस कन्हैया लाल की जयकारे के साथ ये माखन चोर कृष्ण आज जब इस मथुरा भूमि पर यहाँ पर पधार रहा है तो यहाँ पर भक्तों का ही जो समूह है इनका नृत्य देखने लायक है। और बहुत सुंदर देखने लायक यह भी है कि देश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं कैसे कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये जो सामने से एक टोली जा रही है लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए हैं, और इन्होंने कितने सुंदर मोर पंख धारण किए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए, वो कभी बांसुरी को देखते हैं कभी मोर पंख को देखते हैं, और कैसे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। और क्या है, कृष्ण जन्मभूमि का मथुरा, क्रीड़ा स्थली गोकुल, लीला स्थली नंदगाम, बरसाना दिव्य महाराज की पावन धरा वृंदावन की छवि आज अलौकिक है। और जनमानस भावातिरेक में बार बार यही गाए जा रहा है, बड़ो भाग नंद रानी तेने पायो, तेरो पुत्र जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो। आस्था और संस्कृति के इस जीवंत आज के सु अवसर पर जहाँ पर सदियों पुरानी परंपराओं का जिस तरीके से निर्वाह और उसको लोक में उतारने का अद्भुत जो एक क्रम द्वारकाधीश मंदिर से, और यहाँ के सेवायत धन्य है, देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास आ रहा है कुछ कुछ यहाँ पर हलचल होने लगी है। कुछ सेवायत इस समय थालों में भर करके बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री ला रहे हैं। और आज हमने प्रातःकाल यहाँ के सेवायतों से बात की, एक विशेष भोग यहाँ पर आता है धनिये की पंजीरी के साथ सौंठ के लड्डू, ये यहाँ का, और सीरा जो कि ब्रिज का अपना ही प्रसाद है उस सीरा का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। और देख रहे हैं कि धीरे धीरे कितने सुंदर सजे हुए हमारे ये जो यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ इनको मुखिया जी कहा जाता है, और बड़ा बड़ा सुंदर क्रम यहाँ पर सेवायतों का, लेकिन सुंदर सुंदर वस्त्रों में थाल लिए हुए यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि संभवतः इसमें दधि दूध मक्खन घृत शर्करा ये सब अभिषेक के लिए लाया जा रहा है। और प्रातः काल भी यहाँ पर अभिषेक हुआ, श्री कृष्ण की जन्मपत्री का वाचन हुआ, और अब इस समय जब कन्हैया के जन्म की घड़ी पास आ रही है तो जैसे जैसे ये जैसे पर्दा हिलता तो भीतर हम देख रहे हैं कि इस प्रांगण में हमारे श्रद्धालुओं में ऐसा उत्साह आ जाता है, उन्हें लगता है कि पर्दा खुलने वाला है, लेकिन वो देखते हैं कि वहां तो भीतर से कुछ ना कुछ सामग्री लाई जा रही है। और इस सामग्री में कौन कौन सी सामग्री होगी हम थोड़ी देर में बताएंगे। डॉक्टर मीनू खरे, आप देख रहे हैं कितनी हलचल होने लगी है श्रद्धालुओं में,
0: मानो अब अपने चरम पर पहुंचता हुआ। आज इस समय श्री द्वारिकाधीश मंदिर में, जो कि जहां पर वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के संरक्षण में पूजा अर्चना की जाती है, पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अंतर्गत आज भाव भोग श्रृंगार की प्रधानता है। यहां पर बाल भाव की सेवा की जा रही है, भगवान का यहां पर ध्यान मुद्रा में है, और यहां पर जय जयकार के नारे भगवान के लोग

0: उनसे प्रतीक्षा के पल बहुत भारी हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई दीर्घाओं में, दर्शक दीर्घाओं में बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए उनके वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्थान पर खड़े हो जाएं जहाँ से कम एक बार वो देख तो लें। आप श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। एक आकाशवाणी द्वापर युग में भी हुई थी जब कि हे कंस, देवकी का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा, लेकिन एक के बाद एक 7 पुत्रों को मारा गया, पर जिसे भगवान बचाए। जब भगवान स्वयं अवतार ले तो फिर किसकी क्या विसार। चारों ओर अंधकार था पर प्रकाश का अद्भुत संचार होने वाला था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। संकादि ऋषि स्तुति करने लगे, वासु सर्व निवास परम पुष्प वासुदेव। देवकी वासुदेव विस्मित माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी संतान के इस दिव्य रूप के आभा सहने की नेत्रों में क्षमता नहीं है। और देखते देखते चतुर्भुज रूप नीलमणि सी कांति वाले द्विभुज बालक के रूप में बदल कर बाल रूप में रुदन करने लगे। ऐश्वर्य का विस्मरण हुआ और वात्सल्य उमड़ पड़ा। वसुदेव ने शिशु को गोद में उठाया, पांवों की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए और एक नई यात्रा की ओर चल पड़े वासुदेव कृष्ण को लेकर। मानो अपने यमुना नदी ज्योति उफान पर थी वो धीमे धीमे। और अब यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हो गए हैं, चारों ओर जिधर भी देखिए आपको भक्तगण दिखेंगे। उनके अंदर अद्भुत सामंजस्य है, भीड़ होने के बाद भी उनके अंदर सामंजस्य है और वो एक दूसरे को किनारे होकर जगह दे रहे हैं खड़े होने की। और हमारे बीच में ब्रज संस्कृति साहित्य के विशेषज्ञ और समालोचक आशुतोष शुक्ल जी हैं। अगली आवाज आप सुनेंगे आशुतोष शुक्ल।
1: अब वह घड़ी निकट है जब लाला का अवतार होने वाला है। अवतार ऐसा क्षण है जो बड़ा ही भक्तिपूर्ण होता है। यह अवतार का क्षण भावनाओं का चरम शीर्ष होता है, भक्ति का चरम शीर्ष होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्य का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। भागवत कहता है, निशीथे तम उद्भूते जाय मने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्यम दिश इंदु इव पुष्कलः। जिसका भावार्थ है, मध्य रात्रि के उस दिव्य समय में जब भगवान जनार्दन का प्राकट्य हुआ, तब सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। इसी बीच मंदिर के पट खुल गए हैं, पर्दा हट गया है और श्री द्वारिकाधीश जी महाराज के दर्शन सबको सुलभ हो रहे हैं। और हम इसी के साथ ही मां भागवत के उस क्षण पर चलते हैं जब माता देवकी और पिता वसुदेव ने अपने दिव्य बालक के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि वह साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। भागवत कहता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि युदायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। इसका भावार्थ है, वसुदेव ने उस अद्भुत बालक के दर्शन किए जिसके नेत्र कमल के समान थे, वे चार भुजाओं वाले थे, उनके हाथों में दिव्य आयुध थे, उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी, वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनका स्वरूप वर्षा के गहरे मेघ के समान अत्यंत मनोहर था। ऐसे अलौकिक स्वरूप को देखकर देवकी और वसुदेव का हृदय आनंद आश्चर्य और भक्ति से भर गया। वे समझ गए कि जिन परमात्मा की उन्होंने आराधना की वही आज पुत्र रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की कि प्रभु अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपाकर सामान्य बालक का रूप धारण करें ताकि कंस के इस दिव्य प्राकट्य का ज्ञान न हो। श्रीमद्
2: तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ पर मुक्ताहार, मणियों की मालाएं, कलाइयों में कंगन, सुंदर करधनी युक्त आभा, पर बस अपनी ओर आकर्षित।

0: शिक्षित कर रही है, खींच रही है, जो जहाँ खड़ा है वहीं पर ठगा सा रह गया है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मनमोहन के साथ मनमोहक भी लग रहे हैं और संभवतः यही वह श्रृंगार है, यही वह सौंदर्य है, यही वह आकर्षण रहा होगा जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टक में लिख दिया, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वसनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज लोकमानस, जनमानस का उत्साह, उमंग और श्रद्धालुओं में इस समय बहुत तीव्रता से हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत आगे जाऊं और अपने कन्हैया को, अपने द्वारकाधीश को, उनके बगल में विराजित रुक्मणी जी को यहां जा करके निकट से देख लूं, दर्शन कर लूं, या मुरली मनोहर की अद्भुत छवि उसका दर्शन कर लूं। और कभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, कभी सामने पर्दे पर नाचते हुए मोरों की छवि देख रहे हैं, और लेकिन पुनः सभी की दृष्टि अपने अपने द्वारकाधीश के चरणों में लगी हुई है। और पुष्टि मार्ग में यही कहा जाता है, चरणों से ऊपर की ओर जैसे जैसे दर्शन किए जाएं, कुंडल की छवि अद्भुत है, क्या ही सुंदर ये मुकुट की छवि। आप जिस अंग को देखें, जिस जगह से देखें, मेरे कन्हैया को यहाँ पर देखना, और ये देखते देखते यहाँ पर आतुरता से बाट जो रहे बाहर जो श्रद्धालु खड़े थे, अब वो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। और धन्य है ये ब्रजवासी, और धन्य है ये सेवायत। आप अद्भुत देखेंगे, जिसको भी किसी को कष्ट ना हो, जो यहाँ पर सेवक लगे हुए हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, सिर्फ सबसे यही कहते हैं, राधे राधे राधे जरा आगे चलो। और ये ब्रज में जैसे जैसे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, इसकी गूंज के संग ये ब्रजवासी आगे आ रहे हैं, ये यहाँ पर श्रद्धालु आगे आ रहे हैं। और किसी को असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे ये जो व्यवस्था में लगे हुए सेवक हैं, इनका भी कहना क्या, इनको धन्यवाद। और इस समय चलते बहुत सुंदर झांकी के लिए, वहां पर भागवत भवन में श्री कृष्ण जन्म स्थान से क्या दृश्य, क्या मनोरम छवि है, इसके लिए चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान भागवत भवन।
1: अद्भुत है हमारे कन्हैया के जन्मोत्सव की ये छटा। ये संपूर्ण अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सप्तपुरिया ही नहीं, स्वर्ग से देवता भी लालायित होकर इस दृश्य का साक्षात्कार करने के लिए एकत्र हो गए हैं। और सबकी दृष्टि समय पूरे ब्रजमंडल पर है, जहां हर घर में कृष्ण जन्म के आनंद की बधाइयां गाई जाने लगी हैं, क्योंकि वो क्षण अत्यंत निकट आ गया है जब परमात्मा एक बार पुनः अवतरित होंगे प्रतीक रूप में इस धराधाम पर, हम सभी को आश्वस्त करने के लिए। यहाँ भागवत भवन के जो विग्रह है, वहां पर सहस्त्रार्चन पूर्ण हो चुका है, वहां पर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं भगवान के जन्म के समय उनके विशिष्ट पूजन की। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अनवरत बढ़ता चला जा रहा है, वो बाई तरफ से प्रवेश करते हैं, तालियां बजाते हैं, गाते हैं, और अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा विविध रूपों में परिलक्षित हो रही है। बच्चों को उन्होंने कान्हा बना रखा है, कोई राधिका बनाए हैं, उन्हें जब लाते हैं विग्रह के सामने तो अपने कंधे पर बैठा ले रहे हैं, ठिठकते हैं, लेकिन एक बार पुनः विवशता है, क्योंकि पीछे से प्रवाह भगवती यमुना के समानांतर चला आ रहा है। परसों से ही लगातार जब श्रद्धालु इस धराधाम पर आ रहे थे, तो देखकर लगता नहीं था कि कैसे इतने श्रद्धालु इस ब्रज मंडल में समाएंगे, लेकिन ममता मई माँ की तरह इस पूरी धराधाम ने सभी को समाहित कर लिया है। सामने छोटे जगमोहन में पुजारी विराजमान हो चुके हैं, वहां पर पूजन की तैयारियां चल चुकी हैं, जो स्वर्ण और रजत के चौकियां हैं वो लग गई हैं, जहां पर कुछ ही पलों के बाद, प्राकट्य के बाद भगवान की आरती होगी, वहां पर वो अपने दर्शन देंगे। और जो बड़ा जगमोहन कह सकते हैं, जिसे आज घेर कर विशेष रूप से बनाया गया, कुछ विशिष्ट जन बैठे हैं, तालियां बज रही हैं, वहां पर इस समय भजन चल रहा है और लोग भजन में नृत्य भी कर रहे हैं, आह्लादित है कि कृष्ण जन्म का ये उत्साह है। यहाँ पर आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई।

0: इन तीनों को स्थलों को जोड़कर एक विविधता की गई है। यहाँ पर जब आते हैं तो मुख्य विग्रह के ठीक दाहिनी तरफ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के विग्रह भी विराजमान हैं और उनके ठीक सामने हनुमंत लाल उनके दर्शन करते हैं, जबकि मुख्य विग्रह के बाईं तरफ बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जी हैं, जो कि ब्रज की संस्कृति और पुरी के उड़ीसा की परंपराओं का एक वैशिष्ट्य पालन है। सामने एक शिवलिंग है और उसके ठीक सामने भगवती दुर्गा जी हैं, यानी कि वैष्णव, शैव और शक्ति तीनों ही परंपराओं का अद्भुत पालन यहाँ पर होता है। बात हम करें भागवत भवन की, तो भागवत भवन की विशिष्ट विशेषता इसकी है जो दृश्य कथा वाचन की परंपरा है। इस भवन के स्तंभों, दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की कथा चित्रित है। बाल रूप के कहीं प्रसंग है तो कहीं गोप गोपियों के साथ लीला है, कहीं कान्हा का प्रेम है तो कहीं कृष्ण का ज्ञान। यहाँ की दीवारें भी कथा कहती हैं और स्तंभ मात्र भार नहीं उठाते, उनकी लीलाओं के साक्षी भी बनते हैं। और अचानक बड़े जोर से एक हलचल सी हुई है, कोलाहल से हुई है, ये माइक्रोफोन से आवाज भी जा रही होगी। श्रद्धालु उत्साहित हो गए हैं क्योंकि वो क्षण आने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को क्या कहा जाए। उन्हें लगता है कि पुजारी जी थोड़ा सा भी पर्दा हिलाते हैं तो लगता है प्राकट्य हो गया है, जबकि वो क्षण है। और उनके उत्साह में उत्साह मिलाते पूरे जगमोहन में लोग खड़े हो गए हैं, अबीर गुलाल उड़ाकर नृत्य करने लगे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब एहसास होता है कि वो घड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी तो फिर वो शांत हो जाते हैं। लेकिन ये अद्भुत वातावरण रोमांचित कर देने वाला है। लोग यहाँ ठिटकते हैं, खड़े होते हैं, ठाकुर जी को निहारते हैं, राधा रानी को निहारते हैं, उनकी छवि आंखों से आंखें मिलती हैं तो अपलक उन्हें देखते रहते हैं और अश्रु बहने लगते हैं, स्वयं रोमांच हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। और देशी और विदेशी पुष्पों से सज्जित सुगंधित ये पूरा वातावरण आज अपने परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, जहां पर विशिष्ट पूजन अर्चन अपने अंतिम आयाम पर पहुंचेंगे और प्रकटेंगे एक बार फिर आठवें अवतार के रूप में हमारे परमात्मा श्री कृष्ण। हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने चुना है इस ब्रज धाम को, जहां आकर सभी लोग आनंदित हैं, उल्लसित हैं, उमंगित हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। शास्त्रीय और लोक कलाकारों ने मंच बनाए हुए हैं पूरे मथुरा में, जहां पर वो गीत संगीत से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, ये वो धराधाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे। यहाँ की रज भी मोक्षदायिनी है, इसे देवता भी पूजते हैं और पूजे भी, क्यों ना, क्योंकि ये वही रज है जिसमें हमारे लाला ने जब कभी माता यशोदा से बिलख कर कोई जिद पूरी नहीं की तो उनके आंसू इसी रज में है। हमारे नंद बाबा की गऊओं को चराते समय या फिर सखवा के संग खेलते हुए उनके जो पसीने की बूंदे गिरी तो वो भी इसी रज में है। और एक बार फिर श्रद्धालुओं का प्रवाह फिर जोर से उत्साह से बढ़ गया है, तालियां बजती हुई, उत्साह अपने चरम पर पहुंचता हुआ, भावनाएं ऊंची पड़ते हुई। और अब जबकि वो प्राकट्य का समय नजदीक आने वाला है, आगे का विवरण देने के लिए श्री कृष्ण जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देश दीपक की। भक्तों के आने का क्रम अचानक से बढ़ गया है और ये मुख्य मंदिर का पर्दा गिरा दिया गया है और भक्तों में एक उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, दोनों पैरों पर उछल उछल कर, दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे जय श्री राधे कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवायतों ने मुख्य मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। शास्त्रोक्त विधि से जो भगवान के जन्म की प्रक्रियाएं होती हैं, जो परंपराएं, उनका पालन किया जा रहा है। और जो मंदिर के ठीक सामने जो विशेष स्थान बनाया गया है, जहाँ पर विशेष जन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, सभी हाथ ऊपर कर उठा कर नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं। बस प्रतीक्षा उस पल की कि जब ये कपाट खुलते हैं। और जो भक्तों का आने क्रम था अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कपाट खुलने की प्रतीक्षा है। यही तो वो पल था जिसको प्रतीक्षा वर्ष पर्यंत करते हैं और आज इस विशेष मौके पर उस पल को कैसे गवा दें। सुरक्षा प्रहरी सेवायतों ने बार बार निवेदन कर रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि भक्तों का आने क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, संभालना मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन भक्तों का उत्साह कहीं कम नहीं हो पा रहा है। और ये पट सब बंद है, जो यहाँ पर सेवायत है पट के बाहर खड़े हुए हैं, उसमें दो मयूर बने हैं और जो कास्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें पीतल से मोर और नीचे दो मोर नाचते हुए अद्भुत दृश्य है। ये वो बेसब्री घड़ियां है जिनको इंतजार करना हर एक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बस किसी भी पल ये पट खुलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं अपलक निहार रहे हैं, कि कब वो घड़ी आए।

0: और जब वो लाला का प्रथम दर्शन करें, प्राकट्योत्सव के बाद जब लाला बाहर आते हैं, उस घड़ी को देखने के लिए, निहारने के लिए सभी एकजुट, और ये कपाट खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी पर्दा नहीं खुला है। भक्तों में उत्साह है, अचानक जैसी राधे का जय घोष हो रहा है, और ये सुंदर पर्दा जिसमें गौ माता बनी है, दो हाथी बने हैं, उसमें एक वृक्ष है, बहुत ही रंग बिरंगे झिलमिल सितारों से ये पर्दा जिसके हटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जो यहाँ पर भक्त लोग भजन गा रहे थे, अचानक उनके भजन गाने में ढोल झांझ मजीरा मृदंग, और यह पर्दा खुल चुका है। प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर एक रजत कमल है, यंत्र चालित एकदम धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां खुलती हुई, क्रमशः पंखड़ियां खुल रही हैं, और ये लड्डू गोपाल के प्रथम दर्शन आम भक्तों को सुलभ हो रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, यही दृश्य ऐसा जो सभी अपने नजरों में नेत्रों बसा लेना चाहते हैं। वहाँ पर जो दूसरे सेवा आए थे वो आरती कर रहे हैं, और इसमें प्रथम कल से यहाँ पर पुष्पों की वर्षा हो रही है, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी स्वर्ग से यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और सुगंधित द्रव्य भी वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, गुलाब जल की वर्षा हो रही है, पूरा वातावरण सुगंधित हो चुका है, और ढोल झांझ मजीरे मृदंग शंख इनका संदेश्वर अद्भुत रोमांच पैदा कर रहा है। भक्त का ऐसा समूह और शायद कहीं प्रतीत नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग अपने मोबाइल लेकर आए, जैसे जन है, सभी के मोबाइल ऊपर उठे हुए हैं, और यहाँ के दृश्य अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मोहल्ले में, टोले में, अपने जनपद में यहाँ के दृश्य वहाँ पर प्रेषित कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, और इसी दृश्य को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर पधारते हैं। और ये कमल जो रजत कमल था उसकी पंखुड़िया खुल चुकी है, वहाँ पर चल विग्रह लड्डू गोपाल के विराजमान है, उन्होंने पीले वस्त्रों से अपने आप का श्रृंगार किया गया है, और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं वे सब तालियां बजा बजा कर उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं, और सभी का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक समय तक लड्डू गोपाल को निहार सके, लेकिन जो पीछे से आने वाले भक्तों का प्रवाह है उन्हें अपने स्थान पर रुकने नहीं दे रहा है। और इस समय आरती हो रही है, और इस आरती के बाद यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो यहाँ पर सेवाएं हैं बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्त के भाव के साथ अपने शीर्ष पर रखकर बाहर यहाँ पर एक मंच बनाया गया है, जहाँ पर एक रजत स्वर्ण मंडित एक कामधेन व्रत की गई है, जिनके पैदलों से निकली दुग्धधार से प्रभु का यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। और इस समय जो आरती क्रम है वहाँ पर चल रहा है, और भक्त लगातार आके आते आ जा रहे हैं, और यहाँ पर व्यवस्था की गई ध्वनि विस्तार केंद्रों से, जो ढोल मंजीरे शंख की जो अद्भुत ध्वनि है पूरे जन्म स्थान में ही नहीं बल्कि जन्म स्थान के आसपास जो जितना क्षेत्र है सभी जगह पर यहाँ पर ये ध्वनियाँ बिखर रही हैं, और जगह जगह यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, जो भक्त जहाँ भी हैं ये अद्भुत दृश्य देख पा रहे हैं। ये मथुरा नगरी जहाँ पर देवता भी आने के लिए लालायित रहते हैं, आज तो अद्भुत दृश्य है, अचानक भक्तजन उछल उछल नृत्य कर रहे हैं, और जितने विशेष जन हैं उन्होंने अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कहीं भीड़ में भगवान का ये अद्भुत दृश्य देखने से वंचित न रह सकें। कुछ यहाँ पर दृश्य आए, कुछ ऐसे भी भक्तजन हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल को एक पालने में टोकरे का रूप दिया, उन पर लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर दृश्य करा रहे हैं। और जो कृष्ण के विविध रूप हैं, जो राधे राधे का अभिवादन है, चाहे गीता का पठन पाठन हो, युद्ध भूमि में हो, कृष्ण हमारे बीच अनेक रूपों में आते हैं। और आइए चलते हैं देश दीपक मिश्र के साथ आगे के दृश्यों के लिए।
1: जब सांसों में यमुना बहे और मन वृंदावन हो जाए, जब भीतर का कंस सो जाए और कृष्ण जाग जाए, अंधियारे की कोख से जब उजियारा मुस्काए, समझो उसी क्षण हृदय में कृष्ण का जन्म हो जाए। हो गया है जन्म प्रतीक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का, हमारे लाला का, हमारे कान्हा का, और उनके इस जन्मोत्सव का साक्षी बनते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ भागवत भवन इस समय पर्याय बन चुका है। प्रेम का, भक्ति का, उल्लास का, उत्साह का, आनंद का, माधुर्य का, उछलते कूदते पीत वस्त्र

धारण किए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा का कोई अंत नहीं है। इस समय थोड़े से शिथिल हो गए हैं हमारे प्रशासन के लोग भी, वो शायद वो भी लीन हो गए हैं अपने परमात्मा की उस आराधना में जो इस समय मुख्य पुजारी जी कर रहे हैं। और हालांकि इस शिथिलता में भी वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मैं बहुत ही आसानी के साथ देख सकता हूं, बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हमारे प्रशासन की एक कर्तव्य विवशता दोनों एक से बने हुए हैं। और इस समय कहते हैं कि इस पूरे भवन में एक अद्भुत वातावरण है, और ये वातावरण सिर्फ यहाँ नहीं, भागवत भवन में नहीं, मथुरा में नहीं, हर घर में नहीं, गोकुल, बरसाना, वृंदावन और नंदगांव में नहीं, संपूर्ण सृष्टि में हो रहा है। क्योंकि अभ्युत्थान आए अधर्मस्य संभवामि युगे युगे का जय घोष करने वाले हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है। लाला ने हमें आश्वस्त किया है कि इस धराधाम पर मेरी उपस्थिति है। तालियां हाथ उठाकर, दोनों हाथों से तालियां बजाकर, करतल ध्वनि करके अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए एक लय में, एक ताल में, एक धुन में, क्योंकि यहाँ संगीत की लहरियां भी हैं और हमारे परमात्मा गीत संगीत और नृत्य के भी गुणी हैं। यहाँ भगवान के जो विग्रह हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, यानी कि तीन कोण से हल्के से तिरछे हैं, जो भगवान बताते हैं कि लचीला होना जीवन में कितना आवश्यक है। और ये शैली उनकी ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य में भी मिलती है। भगवान की आंखों से बरसती हुई करुणा, राधा रानी का प्रेम, उनकी निश्चलता, उनका आनंद अभिभूत कर दे रहा है। कहते हैं कि इस धरा पर आने के बाद जन्म सफल होना क्या होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है, ये गूंगे का गुड़ की तरह है। लेकिन जो आज मथुरा नगरी में है, भागवत भवन में है, हमारे इस युगल सरकार के विग्रह के सामने है, वो रोमांचित हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि जन्म सफल होना किसे कहते हैं। क्योंकि कृष्ण प्रेम भी हैं, सखा भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं और निष्काम कर्म योगी भी हैं। संपूर्ण पुरुष की व्याख्या करते हुए यहाँ पर सभी उनके सामने आनंदित हैं, क्योंकि आज वो संपूर्ण पुरुष नहीं, वो कर्म योगी नहीं, वो एक लाला है, हमारे लाल है, हमारे शिशु है, जिनके आगमन से सभी आह्लादित हैं। इस भागवत भवन की दीवारों के स्तंभों पर विविध प्रसंग भी अंकित है, कहीं राम जटायु प्रसंग है तो कहीं सती के कटे मस्तक पर दुखी शिव भगवान है। तालियों की गूंज, संगीत के धुन के साथ श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता हुआ कृष्ण जन्म का भी प्रतीक बड़े गूढ़ है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं गूढ़ अर्थों को भी लेके आती है। आधी रात को जन्मते हैं कृष्ण जब चारों ओर अंधेरा होता है, और क्रोध का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का जब भीतर भर जाता है तो अंधेरा होता है, और जब चेतना जन्म लेती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही कृष्ण बनता है। और इस समय पुष्प वर्षा की जा रही है, जहां से हम ये विवरण दे रहे हैं हमारे ठीक थोड़ी दूर पर जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, और ये आगमन है अपनी अपनी खुशियों को। ये जो पुष्प वर्षा हो रही है, ये गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां हैं, श्रद्धालु इन्हें पकड़ रहे हैं, हाथों में ले रहे हैं और मुट्ठी में बांध रहे हैं, आंचल में बांध रहे हैं, इससे भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ले जा रहे हैं। वो अपने घर ले जाएंगे, धराधाम ले जाएंगे, जहां पर उन्हें लगेगा बाहर से वो कमल आ गया है, रजत कमल, जिस पर कुछ ही देर में विराजमान होंगे हमारे लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल बाहर निकलकर आने की तैयारी करते हुए, क्योंकि जो रजत कमल है वो यंत्र चलित है, उसे बैठाया जाता है, बनाया जाता है। इस बीच धुन तेज हो गई है, उत्साह फिर अपनी भावनाओं का उभार आ गया है, अश्रु बहते हैं, रोम पुलकायमान है, आत्मा आनंदित है। लड्डू गोपाल सूप में बैठकर शेषनाग की छत्र छाया में आएंगे और यहाँ पर उनका अभिषेक होगा, जल के बाद दुग्ध अभिषेक होगा, और उसके बाद पंचगव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद महाआरती होगी। ये सब कुछ व्यवस्था यहाँ चलती हुई, लेकिन श्रद्धालुओं का जो एक आनंद है, उस आनंद की कोई और छोर, कोई सीमा नहीं। सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो उन्हें दिखते हैं भागवत भवन की दीवारों पर कहीं वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण, तो कहीं नंद बाबा को अजगर से छुड़ाते हुए श्री कृष्ण। अपने कान्हा की लीलाओं को देखकर सब आनंदित हैं। कृष्ण जन्म के प्रतीकों की बात हो रही थी, तो कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, आत्मा रूपी कारागार में जब आ जाती है, शरीर के रूप में आ जाती है आत्मा, तो कारागार होता है जहाँ उसे अपने प्रारब्ध का हिसाब करना होता है। कृष्ण को जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किसे भय नहीं होता है, ये संदेश बेहद सरल किंतु उतना ही गूढ़ है। हम सबके जन्मते ही मृत्यु का भय होता है, किंतु हम खुद को अमर समझने की भूल कर बैठते हैं, और यही सभी दुखों का मूल है। कृष्ण कहते हैं कि आनंद में रहो, निष्कलंक रहो, निष्कपट रहो,
हमें निश्चलता पसंद है।

0: और तभी कृष्ण को आप प्राप्त कर पाओगे। वासुदेव जी की उफनती यमुना में लाला को लेकर जाना भी एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा संकेत है जिसे समझना होगा। उफनती लहरें हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, सुख की लहर दुख का बहाव, किंतु जब सर पर सत्य यानी परमानंद की कृपा हो तो समस्त परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तालियों की गूंज में श्रद्धालु बढ़ते हुए रुकते हुए पीत वस्त्रों में, यहाँ पर पुजारी यहाँ पर हैं और वो पूजन की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कुछ ही क्षणों में लड्डू गोपाल का आगमन होगा जो कि शिष्य रूप में है, सूप में बैठकर आएंगे और शेषनाग की छत्र छाया में जो कि रजत कमल में विराजित होंगे, यंत्र चलित है, और वहां पर जो कुछ भी होगा विशिष्ट पूजन अर्चन आगे का विवरण देंगे साथी श्री कृष्ण।
1: धन्यवाद देशभक्त। इस समय भगवान कृष्ण का जो चल विग्रह है उसको बाहर लाया गया, जहां पर एक कामधेन स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर के बाहर दो मंच बनाए गए हैं, एक दाहिनी ओर मंच है, एक बाईं ओर। दाहिनी ओर मंच पर ये कामधेन विराजित है जो रजत स्वर्ण मंडित और उनके पैदलों से निकली दुग्धधार से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बाईं ओर मंच है वहाँ पर एक रजत निर्मित विशाल कमल पुष्प, उसके ऊपर जो पंखुड़ियां खुली थी वो पुष्प विराजमान है। अभी यहाँ पर दुग्धाभिषेक के बाद भगवान कृष्ण को इस मंच पर स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ पर आज प्रकट होते हैं तो भगवान कृष्ण के विविध रूप हमारे सामने आते हैं। कहीं प्रेमी के रूप में आते हैं, कहीं भक्त केंद्र रूप में आते हैं, एक महान योगी रूप में, नटखट माखन चोर के रूप में आते हैं और ये बाल लीलाएं करते हैं। ये मन को आनंदित करने वाली तो है ही, साथ ही साथ इनसे महान दार्शनिक संदेश भी प्राप्त होते हैं। अगर वो गोप गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं, झूमर चराने जाते हैं, वो भले ही राजा के बेटे थे कुलीन से, लेकिन आम जनमानस के साथ मिलकर कैसे समाज में संदेश देना है, सहजता, निश्चलता, आत्मीय प्रेम, ये सभी संदेश उनके साथ मिलता है। समरसता की बात होती है। और अगर वो काली नाग का दमन करते हैं तो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। और वहीं साथ ही साथ आजकल किस तरह से नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है इसका भी कहीं ना कहीं संदेश देता है, और ये उतना ही आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला की थी तो प्रकृति, पशुधन, कृषि, जीवन संरक्षण, सहकारिता, सामूहिक एकजुटता का प्रमाण है कि किस प्रकार से अगर कोई संकट आता है, भले ही देव इंद्र क्यों ना हमारे विपरीत हो, लेकिन हम सबके साथ मिलकर सबके सामूहिक सहयोग से हम इस विपत्ति से पार पा सकते हैं। ये संदेश देना भगवान के कृष्ण का जो उन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया था, जो उन्होंने दर्शन दिया है, वो हम सब के लिए एक तरह से प्रसाद हो सकता है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पंचाभिषेक की तैयारी हो रही है। इसमें पंचामृत बनेगा, दूध, घृत, शक्रा, शहद और इन सब के साथ गंगा जल। और यह अभिषेक के उपरांत यहाँ पर रात में 12:40 तक ये होगा, उसके बाद 12:50 पर श्रृंगार आरती हो, और उसके बाद 1:25 से 1:30 तक शयन आरती हो, और प्रातः यहाँ पर नंदोत्सव होगा। इस समय कान्हा की नगरी में भक्त की हिलोरें उफान पर हैं, और न केवल भागवत भवन में बल्कि पूरी मथुरा नगरी में हर जगह, हर मठ में, मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस समय जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर जो भक्तजन भजन गा रहे थे उनके साथ साथ तालियां बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं, हाथ उठा कर रहे हैं, और ये अत्यंत भावुक क्षण है जब भगवान का, प्रभु का अभिषेक चल रहा है। और यहाँ पर जो विसर्जन बैठे हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वे भी हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कुछ यहाँ पर ऐसे भक्तजन हैं, इनकी आंखों में आंसुओं का प्रवाह है, अत्यंत भावुक हैं। मैं बात कर रहा था अनेक श्रद्धालुओं से बात की जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने परिवारजनों के साथ में आते हैं, और यही मान्यता रहती है कि पिछले कई वर्षों से कुछ आने वाले श्रद्धालु हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रभु उन्हें अपने पास बुला लें। कम से कम आज के दिन जब प्रभु का प्राकट्य होगा, अजन्मे का जन्म होगा, पालनहार का जन्म होगा, वो यहाँ पर आए। और इस भक्ति के सागर में मैं श्री कृष्ण आप सभी को प्रभु के आगमन की, अजन्मे के जन्म की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। और इसी के साथ मैं श्री कृष्ण अपने साथी कमेंटेटर देश दीपक मिश्र, डॉक्टर बीनू खरे और डॉक्टर नित्य गोपाल के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ।

अभी आप मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और श्री द्वारिकाधीश मंदिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। श्री कृष्ण जन्म स्थान से आंखों देखा हाल सुना रहे थे श्रीयुत श्री कृष्ण और श्री देश दीपक मिश्रा। श्री द्वारिकाधीश मंदिर से आंखों देखा हाल सुना रहे थे डॉक्टर मीनू खरे और डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा केंद्र के सौजन्य से आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 12:15 हो चुके हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम सुरों का, सफरनामा का, और इस कार्यक्रम में मैं संजय सावण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिन्होंने अपनी कला के जरिए हम सबके दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। यही नहीं, वो एक अदाकारा तो थी ही, इसके अलावा वो एक गायिका भी थी, और उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत हमें दिए जिन्हें हम आज भी सुनते हैं, सराहते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनकी फिल्म से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, साजन की सहेली फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की। जी हाँ, तो अब आपने समझ ही लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे अभी मैंने हिंट तो आपको दे दिया, अब मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ गायक थे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हम आज जिस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं वो अभिनेत्री थीं और साथ ही साथ वो गायिका भी थीं। जी हाँ, तो अब आप सबने बिल्कुल सही सोचा, आज हम बात करने जा रहे हैं सुलक्षणा पंडित के बारे में। जी हाँ, उनका जन्म 12 जुलाई 1954 को हुआ था और वो भारतीय पार्श्व गायिका और फिल्म अभिनेत्री भी थीं, जिन्होंने मुख्य रूप से 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया और खूब नाम भी कमाया। इसके अलावा वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख घराने मेवाती घराने से जुड़ी हुई भी थी। सुलक्षणा पंडित संगीत निर्देशक जोड़ी जतिन ललित, जी हाँ जतिन ललित के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही जतिन ललित जिन्होंने कई सारी फिल्मों में बहुत सारे हिट गाने दिए हैं और जाहिर तौर पर आप सब उनसे परिचित होंगे। तो सुलक्षणा उनकी बहन थी और इसके अलावा अभिनेत्री विजेता पंडित की वो बड़ी बहन भी थी। तो ये तो हो गया उनका पूरा परिचय, लेकिन अब आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने फिल्मी करियर या फिर अपने गायन करियर की शुरुआत की और किस तरह से अपने आप को इस तरह से सजाया संवारा, इस तरह से अपने आप को हम सब के सामने पेश किया कि हम सब उनके दीवाने बनकर रह गए, उनके फैन बनकर रह गए। चलिए, उनके बारे में और भी बातें होंगी, लेकिन पहले सुनते हैं उनकी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावर्ण। और दोस्तों, अभी अभी जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम सुलक्षणा पंडित के बारे

बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कब से की थी। जी हाँ, तो सुलक्षणा पंडित ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1975 में संजीव कुमार के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म उलझन से की थी। और 1970 के दशक में उन्होंने कई बड़े शीर्ष अभिनेताओं जैसे जितेंद्र, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने अनिल गांगुली की संकोच, जो कि 1976 में आई थी और ये फिल्म परिणीता उपन्यास पर आधारित थी, इस फिल्म में उन्होंने लोलिता का किरदार निभाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें सुलक्षणा पंडित की प्रमुख फिल्मों की, लोकप्रिय फिल्मों की, तो उसमें हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्मकांटा और वक्त की दीवार जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 1978 में एक बंगाली फिल्म बंदी में भी काम किया था, जिसमें उनके अपोजिट उत्तम कुमार थे। यानी सुलक्षणा पंडित ने 1970 और 80 के दशक में बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया और एक से बढ़कर एक हिट फिल्में भी दी।

जी हाँ दोस्तों, जाना कहाँ है, फिलहाल तो कहीं नहीं जाना। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल के साथ, क्योंकि इस वक्त चल रहा है आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त संजय सावन, और बातें हो रही है फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित के बारे में। चलिए इन बातों के बीच आपको बता दें, वक्त हो चला है 12:42 और ये पूरे हो गए 45 सेकेंड, और इसके साथ ही साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सब हमेशा अपने जीवन में खुशी पूर्वक रहें, यही हमारी दुआ है, यही हम प्रार्थना करते हैं, और हमेशा खुद का ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, और जीवन में ऐसे काम बिल्कुल भी मत करें जिससे किसी दूसरे का बुरा हो, और भगवान श्री कृष्ण का भी कुछ ऐसा ही मानना और कहना था। भगवान कृष्ण ने हमेशा ही अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई, शस्त्र उठाया, और हमेशा ही उन व्यक्तियों का साथ दिया जो धर्म के पथ पर चलने में विश्वास करते थे या करते हैं, और आज भी भगवान कृष्ण या कोई भी भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जो सत्य कर्म करते हैं, धर्म पर चलने में विश्वास रखते हैं, और अपना कार्य बेहद ईमानदारी के साथ करते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा कर्म करता हो जो अधर्मी हो, जो भी व्यक्ति ऐसा कर्म करता हो जिससे किसी दूसरे का बुरा हो, ईश्वर कभी भी उसके साथ नहीं हो सकते। चलिए ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें, लेकिन फिलहाल बातें हो रही हैं सुलक्षणा पंडित के बारे में। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वो अभिनेत्री तो थी ही, इसके साथ साथ वो गायिका भी थी, और उन्होंने अपने गायन करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी, और 1967 में फिल्म तकदीर के लिए उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक बेहद लोकप्रिय गीत गाया था जिसके बोल थे सात समंदर पार। इसके बाद उन्होंने किशोर कुमार, हेमंत कुमार जैसे

मशहूर संगीतकारों के साथ गाने रिकॉर्ड किए। सुलक्षणा पंडित ने हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया और गुजराती जैसे कई सारे भाषाओं में गीत गाए। 1980 में उन्होंने एक एल्बम भी किया जिसका नाम था जज्बात। और कमाल की बात यह थी कि इस एल्बम में उन्होंने जो भी गीत गाए वो सभी गजल थे, यानी इस कला में भी वो माहिर थी। सुलक्षणा पंडित ने अपने करियर के दौरान किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह, येसुदास, महेंद्र कपूर और उदित राणा जैसे महान कलाकारों के साथ कई युगल गीत गाए। इसके अलावा उन्होंने शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, कनू राय, बप्पी लाहिरी, उषा खन्ना, राजेश रोशन, खयाम, राजकमल और कई अन्य संगीत निर्देशकों के निर्देशन में भी एक से बढ़कर एक गीत गाए। चलिए इनके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, इस गीत में भी अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो सुलक्षणा पंडित थी, और मेल सिंगर तो आप सब पहचान ही गए होंगे, वो किशोर दा थे। तो एक से बढ़कर एक गीत सुलक्षणा पंडित ने हमें दिए। सुलक्षणा की बात करें तो वो हरियाणा राज्य के हिसार जिले, लेकिन अब ये फतेहाबाद में आ गया था, कि पीली मंडोरी गांव के एक संगीत प्रेमी परिवार से थी। मशहूर शास्त्रीय गायक और दिग्गज पंडित जसराज उनके चाचा थे। यही नहीं, राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसंघ नेता वसंत कुमार पंडित भी उनके चाचा ही थे। सुलक्षणा ने 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, और उनके बड़े भाई मंधीर पंडित मुंबई में हमेशा उनके साथ रहे। सुलक्षणा ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों के साथ कई लाइव कंसर्ट किए, और स्टेज पर साथ में परफॉर्म भी किया। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा, और एक जाने माने प्लेबैक सिंगर बनने में इस बात ने बहुत ही अहम भूमिका भी निभाई।

जी हाँ दोस्तों, सुलक्षणा पंडित एक्टर संजीव कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद काम मिलना भी बंद हो गया और उन्होंने काफ़ी मुश्किल दौर का सामना भी किया। 6 नवंबर 1925 को 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों और अपने गायन के जरिए हम सब के दिलों में आज भी जगह बना रखी है। चलिए ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार, और आपको छोड़े जाता हूँ सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में गाए हुए इस गीत के साथ।

0: सुनो का सफरनामा कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। रात्रि के 1 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कामकाज के नियमों को अंतिम रूप देने, आरक्षण को तर्कसंगत बनाने और जन कल्याण व विकास से जुड़े अन्य मामलों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में भी जानकारी दी, जो 7 सितंबर से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन तथा गुजरात के द्वारका में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंदिरों को भी इस अवसर पर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। महिला क्रिकेट में भारत आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करते हुए महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप ए में पाकिस्तान से भिड़ेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम टूर्नामेंट के अपने पहले 2 मैचों में थाईलैंड और हांगकांग चीन के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila.

1:10 और पूरे हो गए 10 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत सुनहरे का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं

0: अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास के में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्रिक्स देशों के प्रमुख मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्यों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विजय मेहरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन के साथ कल पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के लिए डच नेशनल इंस्टीट्यूट का दौरा किया। जुलाई में जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी के वी एल कांता की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नीदरलैंड का दौरा किया था और गुजरात में कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर तकनीकी बातचीत की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में कल हल्की से तेज बारिश हुई। आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वियतनाम के दा नांग में चल रहे पिकबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन भारतीय टीम ने लगातार मैचों में चीन और फिलीपींस को हराकर टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टीम का रिकॉर्ड अब तक अजय रहा है। हर्ष मेहता, अर्जुन सिंह, अनिश फ्रोइलन, अमन पटेल, पर्ल अमल साधीवाला, नाओमी अमल साधीवाला, आली इब्राहिम और मिहिका यादव वाली भारतीय टीम ने पहले राउंड ऑफ 13 के मैच में चीन को 4-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of the judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties,

0: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना, सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां, जहां पानी कम था।

0: गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 3 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में

0: ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के विषयों के पेपर में गलतियां की शिकायत के बाद दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 3-day BRICS Chief Justices Foreigners begin in New Delhi. The foreigners brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and Senior Judicial Leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations at Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will today confer National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion.

0: अभी आप सुन रहे थे गज़लों पर आधारित ये प्रोग्राम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तालावाद्य कचेरी। येल्ला वेंकटेश्वरा कलाकार है, राग है तालामादी।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आपने सुना ताला वाद्य कचेरी और येल्ला वेंकटेश्वरा को, राग आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 बावन सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग, तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रक्रिया।

इसके बाद 5:20 पर प्रसारित करेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। 6:00 हिंदी और अंग्रेज़ी समाचारों के बाद 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिए।

0: का समय रहेगा। इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड। 6:55 पर संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा। और 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लक्ष्मी मधुसूदन के गाए कुछ भजन। गीतों भरे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। 8 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचारों का। और 8:15 पर आप सुनिए इंग्लिश न्यूज़। 8:30 पर उर्दू समाचार सुनेंगे। 8:45 पर सुनिए स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम हमारी सेहत। 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा धरती आकाश। 9:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता अध्यापक राष्ट्र के निर्माता। 10 बजे का समय हिंदी समाचार का और 10:05 पर आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज़। 10:10 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 11:10। इसके बाद आपके लिए प्रसारित करेंगे 11:25 पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट। विज्ञान भवन से महिला कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा 12:10। और 1:05 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे इंग्लिश न्यूज़। 1:10 पर कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है अब्दुल्ला। ये
1: साथ में नवीन सक्सेना। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने, उनके चरित्र का निर्माण करने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से नई तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने तथा विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और जिज्ञासा विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स 2026 में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा वो वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्षों में इस संस्थान ने कई विद्वानों, पेशेवरों और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे

0: रहे, वो कल गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ गोवा से संबंधित मामलों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बाद में वो मादक पदार्थों पर एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। श्री शाह शाम को अटल भवन में नव निर्मित भाजपा राज्य कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। वो पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सोमवार को गृहमंत्री पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और गोवा पुलिस के राष्ट्रपति पुलिस ध्वज सम्मान में शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रखे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरोकी से मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में आज भारत का मुकाबला होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम। आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड

ऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए, अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है, ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे, और यही अनुभव करना विजुलाइज करना देखना फील करना यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है मन भी स्वस्थ होता है दीर्घ श्वास के अभ्यास से, बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आपने सुना योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोपाल कृष्णा का सितार वादन राग ललित।